102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 27वीं तिथि।

तदनुसार 18 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए तीन नाम और तीन मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य।

0: होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। जहां विश्वास होता है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। गणपति बप्पा का आशीर्वाद हो तो मुश्किलों के पहाड़ भी झुक जाते हैं। तो आइए हम भी करते हैं स्तुति विघ्नहर्ता की।

धैर्य बनाए रखिए, कर्म करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ईश्वर का साथ हो तो कोई भी काम करें हम अच्छा ही होता है, सुकून मिलता है, वातावरण शुद्ध होता है, प्रकृति मुस्कुराती है, तो कर्म करते रहिए।

मन जब तक अशांत है, जब तक प्रश्न रहेगा क्यों और कैसे के जाल में, जब तक हम क्यों और कैसे के जाल में उलझे रहेंगे, उसी दिन हम निकल ही नहीं पाएंगे। जिस दिन जो है सो है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, इसे स्वीकार करें। जब हम इसे स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन मन में शांति आ जाएगी। प्रभु का सिमरन करें, प्रभु गुणगान करें, मन हमेशा शांत रहेगा।

हर रूह में अल्लाह तेरा नाम है, हर सच्चाई की राह पर तेरी आन मुकम्मल है। फरिश्ता बनकर आते हो जब बंदा पुकारता है, ये तेरी नजर का सुरूर है या मेरी बंदगी का मान है।

हम भारत माँ की संतानें हैं, हमें गर्व है अपनी मातृभूमि पर। आइए करते हैं अपनी दरा को नमन।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम को आज अपने सुरों से सजाया पुरुषोत्तम दास जलूटा, राजेश मिश्रा, गिरजा देवी, मोहम्मद रफी ने। इन्हीं सुरों के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। चिंतन बिंदु। इस कार्यक्रम में आज का विषय है उत्तम सोच धर्म। आलेख व वाचन नीरज जैन का है।
1: जिस प्रकार क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, उसी प्रकार लोभ के अभाव में शौच धर्म का आविर्भाव होता है। शौच का अर्थ है शुचिता, अर्थात पवित्रता। लेकिन शरीर मात्र की शुचिता होने से ही शौच धर्म प्रकट नहीं होता। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अंतःकरण का मल शोधन करें। इसके लिए हमें अपने अंदर उठने वाले समस्त मनोविकारों को उसी प्रकार धोना होगा जिस प्रकार गंदे वस्त्रों को धोकर उनकी गंदगी दूर की जाती है। तभी वास्तविक शुचिता और पवित्रता का जन्म होगा। महाभारत में आत्मा की शुद्धि का उपाय बताते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि अंतरात्मा पर लगे कर्म रूपी मैल केवल चर्म धुलने से साफ नहीं होते, इसे शील रूपी तट पर सत्य के प्रवाह में धोकर शुद्ध करना पड़ता है। इस प्रकार आत्मा के शुद्धिकरण से संपूर्ण जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के शुद्धिकरण की सर्वप्रथम शर्त है लोभ का त्याग, क्योंकि लोभ ही संसार के समस्त पापों का मूल है। यह लोभ ही आत्मा को मलिन और अपवित्र करता है। इसी लोभ के कारण मोह, माया, मान, काम और क्रोध का जन्म होता है। यह लोभ ही समस्त अनर्थों की जड़ है। लोभी व्यक्ति इहलोक और परलोक सब जगह दुख पाता है। इसलिए लोभ का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। इस लोभ का परित्याग करने से समस्त पापों का स्वयं नाश हो जाता है। इस संदर्भ में कहा भी गया है कि लोभ मूलानि पापानि, रस मूलानि व्याधयः, स्नेह मूलानि शोकानि, तीन व्यक्त्वा सुखी भवेत्। अर्थात पाप का मूल लोभ है, बीमारियों की जड़ गरिष्ठ पदार्थों का सेवन है और शोक संताप का कारण स्नेह है। इन तीनों का त्याग करने वाला मानव ही सुखी होता है। अतः लोभ के कारण सांसारिक पदार्थों की तृष्णा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तृष्णा के अधीन होते हैं वे समस्त संसार के अधीन हो जाते हैं, जबकि तृष्णा को दासी बनाने वालों का दास सारा संसार होता है। लोभी मनुष्य अपने धन को न स्वयं भोगता है और न दूसरों को भोगने देता है। इतना ही नहीं, दूसरों की दानशीलता देखकर भी लोभी मनुष्य का मन उदास हो जाता है। इसलिए हमें लोभ का नाश कर संतोष धारण करना चाहिए। यही सच्चा शौच धर्म है। वीर अर्जुन को यही बात समझाते हुए योगिराज श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थम अंत्योदक्ता शील तटा दयोर्भि तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र

0: न वारिणा शुद्ध्यते चांतरात्मा, अर्थात आत्मा की शुद्धि के लिए संतोष गुण को धारण करना चाहिए, क्योंकि संतोष ही आत्मा का परम हितकारी मित्र है और इस संसार में संतोष के समान कुछ भी सुखकारी नहीं है। इसीलिए कहा भी गया है कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान।
1: चिंतन बिंदु। इस कार्यक्रम में आज का विषय लेकर आए थे उत्तम सोच धर्म। आलेख और वाचन नीरज जैन का था। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। स्वर अनुराधा पोडवाल के हैं, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ से लिए कुछ संगीतबद्ध अंश। स्वर अनुराधा पोडवाल के थे, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:31 पर आप सुन सकेंगे ब्रज माधुरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रेडियो रिपोर्ट बलदेव क्षेत्र स्थित दाऊ जी मंदिर एवं सतोहा ग्राम स्थित शांतनु बिहारी जी मंदिर में बलदेव छठ पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। आलेख वाचन प्रस्तुति सहयोग अनुराग पांडे का होगा। कार्यक्रम के संयोजक होंगे ओपी सिंह। सुबह 9:00 स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुनी गई भेंट वार्ता विषय लेकर आएंगे वायरल बुखार कारण लक्षण और समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, आपसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। सुबह 10:00 विशेष कार्यक्रम में सुनिएगा बरसाने में बजत बधाई कीरत ने राधा जाई। कार्यक्रम की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की होगी, संयोजक होंगे ओपी सिंह। बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनीता लोग दोपहर 1:15 पर।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के संदर्भ में सुनिएगा विशेष श्रृंखला सेवा ही संकल्प है। समय याद रखिएगा रात्रि 8 बजे से। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 6:50 पर।

अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव रखें। इसी के साथ सुनेगा कहानी, शीर्षक होगा मन की जीत। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15।

सुगम संगीत का कार्यक्रम रात्रि 10 बजे से प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे मुकेश बिहारी शर्मा का सरोद वादन राग योग में। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय संध्या 7:31 रहेगा। संध्या वंदन संध्या 6:30।

0: से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर समय रहेगा नवरंग का। 8:35 से एक ही फिल्म से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा दोपहर 2:30। सुबह 9:25 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय लेकर आएंगे ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण। आलेख व वाचन शरद सोनी का रहेगा। 9:30 पर समय रहेगा गांधी चर्चा का। सुबह 9:45 से आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। अब तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय लेकर आए हैं पालतू पशुओं को रेबीज से कैसे बचाएं, जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: हम बात करेंगे कि पालतू पशुओं को रेबीज से कैसे बचाएं। रेबीज कुत्तों का एक प्रमुख रोग है जो कि पागल कुत्ते के काटने से उसकी लार में पाए जाने वाले विषाणु द्वारा पालतू पशुओं तथा मनुष्यों में फैलता है। यह एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें समय पर बचाव का टीका न लगाने पर काटे जाने वाले पशुओं निश्चित रूप से दर्दनाक मौत हो जाती है। अन्य पशु जैसे बिल्ली, बंदर, नेवला, शियार व लोमड़ी आदि के काटने से भी रेबीज रोग होने की संभावना रहती है, किंतु भारत में रेबीज के लगभग 96% मामले कुत्ते के काटने के द्वारा ही होते हैं तथा 4% ही अन्य पशुओं के काटने से होते हैं। यदि दुधारू पशु को पागल कुत्ता काट ले तो उसका दूध पीने या मांस खाने से रेबीज होने की संभावना बनी रहती है। अब चर्चा करते हैं इसके रोग के लक्षणों की। कुत्तों में रेबीज के लक्षणों में मुख्यतः चिड़चिड़ा स्वभाव होना, लकड़ी, कपड़ा, पत्थर या मिट्टी को खाना, रोग की उग्र अवस्था में जो सामने आता है उसे काटने के लिए दौड़ना, आवाज में अंतर आना, मुंह का खुला होना, पूंछ लटक जाना तथा पक्षाघात यानी लकवा हो जाना आदि प्रमुख कारण है। रोगी कुत्ते की मौत लक्षण प्रकट होने के 10 दिन के अंदर ही हो जाती। अन्य पशुओं जैसे गाय व भैंसों में अपचन, अचानक दूध में गिरावट महसूस होना, कान का ऐंठना, अत्यधिक लार गिरना, निगलने की शक्ति नहीं बचना, दांतों को पीसना तथा पानी न पी पाना तथा एक खास किस्म से रंभाने की आवाज निकालना आदि प्रमुख लक्षण है। भेड़, बकरियों, सुअर में भी लगभग इसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। मनुष्यों में यह बीमारी हाइड्रोफोबिया कहलाती है क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति पानी से डरने लगता है, तेज प्रकाश, अत्यधिक शोर व ठंडी हवा सहन नहीं कर पाता, मुंह से लार गिरने लगती है, अत्यधिक पसीना आने लगता है तथा शरीर ऐंठने लगता है। अंत में 2-3 दिन के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। प्रयोगशाला में विभिन्न टेस्ट करने के उपरांत इस बात की पहचान हो जाती है कि पशु इसी रोग से पीड़ित है। अब चर्चा करते हैं कि रेबीज रोग का क्या उपचार है व क्या बचाव हो सकता है। कुत्ते अथवा अन्य जानवरों द्वारा काटे हुए स्थान अथवा खरोंच का उपचार जितना जल्दी हो सके उतना अधिक फायदेमंद होता है। काटे हुए भाग को फिनॉल युक्त साबुन आदि से अच्छी तरह से धोएं और तकरीबन 4-5 मिनट तक पानी की तेज धार के नीचे रहने दें। यह साधारण प्रक्रिया रेबीज को रोकने में अत्यंत मददगार साबित होती है। इसके बाद टिंचर अथवा बीटा इनका लेप लगा लें और किसी योग्य चिकित्सक की सलाह लें। जहां तक हो सके कटे हुए भाग में टांके न लगवाएं। रोग से बचाव के लिए मुख्यतः काटने वाले पशु पर 10 दिन तक नजर रखनी चाहिए। अगर जानवर में रेबीज के लक्षण नजर आ रहे हों अथवा जानवर 10 दिन के निरीक्षण अवधि में उसकी मृत्यु हो जाए तो पागल पशु द्वारा काटे गए पशुओं तथा मनुष्यों में तुरंत बचाव के टीके लगवाने चाहिए। ये टीके बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं। आजकल रेबीज से बचाव के लिए कुल 6 इंजेक्शन का कोर्स होता है। पहला इंजेक्शन काटे गए दिन पर, फिर उसके तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, उसके बाद 14वें दिन, फिर 28वें दिन और अंतिम यानी छठा टीका जो है वो 90 दिनों के बाद लगवाना। किसी जानवर के काटने के तुरंत बाद कम से कम 10 दिनों की अवधि में जितने इंजेक्शन लगते हैं तुरंत अवश्य लगवाने चाहिए, अर्थात 3 इंजेक्शन पहले, तीसरे और 7वें दिन। अगर इस अवधि में जानवर सुरक्षित रहता है तो 14वें दिन अथवा उसके बाद लगने वाले इंजेक्शन आप छोड़ सकते हैं। पालतू कुत्तों में पहले से ही एंटी रेबीज का टीका लगाकर इस खतरनाक रोग के फैलने पर काबू पाया जा सकता है। कुत्तों में एंटी रेबीज टीके की दो डोज।

0: पहली 2 माह की आयु पर और 1 माह के अंतराल पर अर्थात तीसरे महीने तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष लगवानी चाहिए। वयस्क कुत्तों में भी वैक्सीन की 2 डोज 1 माह के अंतराल पर तथा 1 बूस्टर डोज प्रतिवर्ष देना चाहिए। किसान भाइयों, रेबीज बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो जाने के बाद इसका कोई उपचार संभव नहीं है, अतः बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है।
1: खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज का विषय लेकर आए थे पालतू पशुओं को रेबीज से कैसे बचाएं। जानकारी दे रहे थे विजय सिंह नौलखा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह का 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

अभी आपने सुना गीता दत्त मोहम्मद रफ़ी को फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में। मजरू के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी ओपी नैयर ने।

सीआईडी फिल्म से लिया ये गीत। अभी आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज़ में। मजरूह की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने।

0: मन्ना डे गीत दत्त के युगल सुरों में, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म जन्म जन्म के फेरे से। भरत व्यास के शब्द रचना को SN त्रिपाठी ने किया था संगीतबद्ध। इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे

0: बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक की सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत राज्य भर में जलाए गए दिए। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिरवा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से कल सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की कर्मभूमि वाराणसी से उनकी जन्मभूमि गुजरात के वडनगर जाने वाली सेवा संकल्प बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 250 बाइकों पर सवार 500 युवा इस यात्रा को पूरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई मिशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
3: आज भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तमाम यूनिट भारत के अंदर स्थापित करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है, उसका प्रोडक्शन करना प्रारंभ किया है। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहा है। भारत का एआई मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। रोबोटिक के क्षेत्र में भारत की सफलता नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
2: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तकनीक को आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीवन आसान बनाना ही प्रधानमंत्री का विजन है।
4: कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि हर नागरिक तक बैंक की सुविधा पहुंचेगी, लेकिन यह करिश्मा भी भारत में पहली बार जी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। यूपीआई से लेन देन ये हो सकता है, इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं। अब एक सेकंड में यूपीआई के माध्यम से आप यहां से चाहें दूसरे स्थान पर पैसा भेजना सहज तरीके से भेज सकते। साथियों, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को बड़े शहरों और दफ्तरों से निकालकर आज आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने का काम किया है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में हर दिशा में अपनी सोच को स्थापित किया है और आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। कार्यक्रम में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। आयोजन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हुए। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की गई और धाम के पुरोहित, आचार्यों तथा स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री के जनसेवा से राष्ट्र सेवा के 25 वर्षों पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत कल शाम राज्य भर में आशीर्वाद का दिया

0: कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश भर में कल शाम को जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लाभार्थियों ने सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों, घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप जलाकर सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अहिल्याबाई घाट पर 76 बटुकों ने मां गंगा का पूजन किया और मां गंगा को 76 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई। लखनऊ में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने वृहद सफाई अभियान शुरू किया। बस्ती जिले में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने सेवा सुशासन पखवाड़े की शुरुआत की। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भी सेवा संकल्प अभियान में हिस्सा लिया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का 25 वर्ष का राजनीतिक सफर देश के विकास और सुशासन से जुड़ा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत कल शाम प्रदेश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस दौरान गोरखपुर में वहां के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की अगुवाई में कल शाम आशीर्वाद के दिए जलाए गए। एक अन्य कार्यक्रम में वहां के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने मशाल जलाकर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद नगर निगम की ओर से करीब 5100 दिए जलाए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रस्तुत है MyGov प्लेटफॉर्म को लेकर एक विशेष रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
1: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में विश्वकर्मा स्वरोजगार और स्वदेशी मेला 2026 पर आधारित प्रदर्शनी तथा मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के दूसरे चरण के तहत की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और टूल किट भी वितरित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में आयोजित विश्वकर्मा पूजन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।
3: नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सभी हस्तशिल्पी और कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो भी देश अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को अपने आर्टिजन्स का सम्मान करता है वह आगे बढ़ता है।
0: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कल महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करके निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का एक प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनाव के मतदान दिवस पर मशीनों

होने वाली खराबी की आशंकाओं को कम से कम करना है। मथुरा जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के सियारा गांव में कल शाम बोरिंग करते समय हुए एक विद्युत हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आने के कारण बोरिंग मशीन में करंट उतर आया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक की सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत राज्य भर में जलाए गए दिए। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आयोजित किए जाएं। तो आओ एक रेडियो रिपोर्ट सुने यही पर्व के उपलक्ष्य में। आलेख वाचन प्रस्तुति संयोग जो है वो अनुराग पांडे को है और यह कार्यक्रम के संयोजक ओपी सिंह हैं।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को चंद्रा खत्री की जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया दाऊ जी यानी बलराम जी की जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाए है बलदेव छठ, और ये पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाए है। बलराम जी को मुख्य शस्त्र हल है, और याद देना हल की पूजा की जाए है और अन्न धन और कृषि समृद्धि की भी कामना की जाए है। जी बिल्कुल, बलदेव छठ पर बलदेव क्षेत्र स्थित दाऊजी मंदिर और सतोहा ग्राम स्थित शांतनु बिहारी जी के मंदिर में खूब कार्यक्रम

0: रोहिणी पूत ललायदु नंदन रेवत प्रिय तली रजकारी दाऊ महामन शेष ब्रजेश्वर चारुन मार हली बुजधारी श्री वसुदेव ललायदु बालक श्री वसुदेव ललायदु बालक मागद मार छमी गदधारी रेवत प्राण धरोहर रोहिण रेवत प्राण धरोहर रोहिण रेवत सेवत मंगलकारी धार हली गद शंख मणिधर धार हली गद शंख मणिधर कुंडल कान मणि गलधारी चेत यदूतम गोप महाबन गोकुल ग्वाल बनेश बिहारी। गत गुरुवार को बलदेव क्षेत्र स्थित मंदिर श्री दाऊजी महाराज में भगवान श्री कृष्ण के अग्रज भगवान बलभद्र को जन्म को पर्व बलदेव छठ पूरे हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा भाव के साथ पारंपरिक रूप से मनाया गयो। दूर दूर ते पधारे श्रद्धालु ने मंदिर में गलियन में जय घोष कियो। नंद घर आनंद भयो जय दाऊ दयाल की, नंद घर आनंद भयो जय दाऊ दयाल की,
1: जय दाऊ दयाल की। ऐसा जय घोष यहाँ ब्रजवासियों का हो रहा है और कुछ ही पलों में यहाँ पर दर्शन मिलेंगे दाऊ बाबा के सभी श्रद्धालुओं को।
0: एक ओर जहाँ श्रद्धालु भजन कीर्तन बधाई गीतन पे अपने भावन में झूम रहे हते,
1: यह समय यहाँ के सिगरे दर्शनार्थी आज बैंड भजन की धुरन पे नृत्य कर रहे हैं, आनंद उपज रहे हैं, हृदय में ऐसा लग रहे है कि ठाकुर आज कछु ऐसे सही आनंद यहाँ के ब्रजवासीन पे बरसांगे। ऐसी वर्षा है रही है आनंद की, प्रेम की और करुणा की। अरज मोरी सुन लीजिए कृपा सिंधु भगवान दाऊ दीन दयाल के भनक परे निज कान।
0: या अवसर पे पांडे समाज द्वारा बड़े भाव से समाज गायन कियो गयो।

0: वहीं दूसरी ओर ढोर ढप नगाड़े शहनाई की नौबत बाज रही हती।
1: आज ये मंदिर चुनाव की तरह पे आप यहाँ पधारे भाई हो अपने कलाकारन के साथ में, कहाँ आज भाव है हृदय में?
2: ये दाऊजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। के लल्ला की सुन के मैं आई,

0: बलदेव छठ उत्सव परंपरा पे जानकारी देते आप हैं डॉक्टर घनश्याम पांडे।
1: आज भगवत कृपा से बलदेव जी का जन्मोत्सव है। बलदेव जी का जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने 14 दिन बड़े हैं बलदेव जी, तो ये पहले हुए और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। लेकिन इसके समय में भी लोगों में कुछ भ्रांति हुई तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया आचार्य ने, शुभे भाद्रपदे मासे यागते पुण्य योगता। पुण्य योग जिस दिन आया भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्षे वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न में बलदेव और श्री कृष्ण भी है। रोहिण्याम सुतो जातो आदि शेषो महाबला, रोहिणी के गर्भ से बलदेव जी का जन्म हुआ। ये बलदेव जी का जो स्थल जहाँ आप विराज रहे हैं और जो आनंद ले रहे हैं देवालय का, एक विशेष बात हम आपको एक बताएंगे, यह स्थल बलदेव जी का मूलतः जन्म स्थल ही है। आप देखेंगे जितने भी देव

0: देवताओं के नाम से या देव आराधित के तीर्थ स्थलों का नाम है, उसमें उनकी लीलाओं और कलाओं का तो नाम है, लेकिन उनके नाम से संदर्भित कोई स्थल नहीं है। बलदेव या दाऊ जी, बलदेव जी के नाम से है, ये एक विचारणीय विषय है। अब हम ये कहें कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो उसका उत्तर ये है, श्रीमद् भागवतकार कहते हैं व्यास महामुनि कि जब सप्तम गर्भ आया तो कंस को ये चिंता हुई कब मेरी तो मृत्यु का समय निकट आ रहा है। योग माया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में देवकी जी के गर्भ से आकर्षण करके बलदेव जी के मूल गर्भ को प्रस्थापित किया और उन रोहिणी जी को नंदराज जी के यहाँ भेज दिया। नंदराज जी के यहाँ क्यों भेज दिया कि यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों मौसी मौसी की बेटी, तो उन्होंने सोचा कि इससे यहाँ कंस के विघ्नों से निश्चिंत रहेंगे और वो वहाँ सुरक्षित रह जाएंगे। जब ये स्थिति हुई तो उन्होंने गर्भ का आकर्षण किया और उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया और माता जी को और गोकुल भेज दिया। अब ये पता जब कंस को लगा कि भाई सातवां गर्भ था और ये तो गर्भ कुतो गता, ऐसी बात आती है कि गर्भ गया कहाँ, तो उन्हें स्रवित हो गया होगा, ऐसा कह के वो बात पटाक्षेप हो गया। जबकि मूल रूप से क्योंकि कंस की मृत्यु का उभयात्मक कारण है, अकेले श्री कृष्ण ही नहीं है, उसमें बलदेव जी का भी साहचर्य है, तो बलदेव जी तो वहाँ पहुँच गए। अब अष्टमे गर्भ में जब श्री कृष्ण आए तब कंस का जो वध हुआ वो कथा अलग है। जब बलदेव जी वहाँ पहुँच गए यशोदा जी के यहाँ, नंद जी से बातचीत हुई, तो यशोदा मैया ने नंद जी से कहा कि देखो अभी ये तो आ गई हैं और यहाँ अगर ये रहती हैं तो कंस का कोई न कोई कारण या विघ्न पैदा करने का आ जाएगा, कोई न कोई राक्षस यहाँ विकार करेगा। नंद राय जी ने अपने खिरक, खिरक माने गौ गोष्ठ में रोहिणी जी को छुपा के रखा, खिरक में जहाँ का रहती थी। बलदेव के पास में एक गांव है खडेरा, खडेरा ग्राम वो ग्राम है जिसको ब्रज भाषा में खडेरा कहते हैं कि जहाँ गायों का दाना पानी बनाया जाता है उस जगह को खडेरा, तो वो खडेरा आज भी मौजूद है, उसे द्वापरकालीन व्यवस्था का साक्ष्य है। दूसरा इसके पास में ही बलरामपुर चौथाई नाम का भी एक ग्राम है, ये भी प्राचीन कालीन है। ये दोनों बात उनकी भागवतकार की बात से मेल खाती हैं।
1: बलदेव क्षेत्र स्थित मंदिर श्री दाऊजी महाराज में बलदेव छठ पे पधारे श्रद्धालु ने दर्शन पाए के अपने को धन्य कियो।
2: कैसा भाव है आज आपके हृदय में आज बलदेव छठ को लेकर के?
3: अपना बलदाव जी का जन्मोत्सव है दादा, बहुत बढ़िया भाव है।
2: और हम देख रहे हैं दूर दूर से यहाँ पर सब श्रद्धालु पधारे हैं मंदिर में।
3: हाँ, श्रद्धालु पधारे हैं मंदिर में, बहुत दूर दूर श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर हर साल, और अब तो रोजाना आते हैं श्रद्धालु।
2: क्या बात, साल भर का मेला है पूरा?
3: साल भर का मेला है पूरा।
4: रजत पांडे नाम है मेरा।
2: कैसा लग रहा है आज बलदेव छठ पे आपको?
4: जी ये तो हमारा सौभाग्य है कि दाऊ जी की पावन नगरी पे हमारा जन्म हुआ और हमें दाऊ जी के से स्वयं दर्शन प्राप्त हुए और बलदेव छठ के दिन हम उनके आगे बैठे हैं, इससे सौभाग्य की बात क्या होती है। दुनिया हमेशा विचित रहती है कि भगवान कृष्ण के बगल में खड़े हुए ये कौन है, ये स्वयं दाऊ बाबा हैं, शंकरसर भगवान हैं, शेष अवतार हैं, स्वयं लीला इन्होंने करी है। कृष्ण भगवान की सारी लीलाएँ जो की गई हैं सबकी अनुमति दाऊ जी के लिए की गई हैं, सब दाऊ जी से पूछ की गई हैं। ये ब्रज के राजा हैं, अपने फन पर धारण किए हुए धरती को, सबकी मनोकामना पूर्ति है। मनोती वाला ठाकुर है, जाके कहूँ मनोकामना पूरी ना है रही हो, मनोती आके मांगे दाऊ जी के दरबार में, सबकी मनोकामना पूरी होते हैं। और सबसे एक ही है आगे से, और सबसे एक ही प्रार्थना है कि आओ श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ के बाबा के तीनों खुले दरबार से दर्शन करो। और पंडित समाज सवन को स्वागत करते हैं यहाँ, हृदय से स्वागत करते हैं सवन को अपने यहाँ पे करो।
5: दाऊ जी महाराज की जय, रेवती मैया की जय। परम सौभाग्य बड़े ही हर्ष को दिन है आज, भगवान बलदेव जी की जन्मतिथि है, जन्मदिन है, और आज बहुत ही मंदिर में आनंद आ रहे हो है। भगवान की स्नान है के जवाहर आपके दर्शन भये, श्रृंगार भये, आरती होगी, भोग आएंगे, और समाज जो दाऊ जी के सेवायत गोस्वामी हैं उनके द्वारा समाज गाई जाएगी, और खूब घर घर से गोस्वामी के यहाँ से ठाकुर जी को भोग प्रसाद आवेगो, संध्या तक आनंद ही बनो रहेगो।
2: जय हो, जय हो। क्या शुभ नाम है आपका?
6: श्याम सुंदर पांडे। गोस्वामी बलदेव।

0: कैसे भाव है इस समय बलदेव छठ पर्व को लेकर?
1: बलदेव छठ दाऊ जी का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है कि हमारे भगवान इष्ट देव श्री बलराम जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की खुशी में उनके इस बाबा की जय जयकार हो रही है। जितने भक्तजन आए हैं सभी लोग बहुत ही प्रेम से दर्शन कर रहे हैं और बाबा की हीरा जवाहरात की जो शोभा है वो और निहार के लोग बाग अभिभूत हो रहे हैं। तो ये है हमारे दाऊ जी का, ये एक महापर्व है और उत्सव है दाऊ जी के जन्मदिन मनाने का। तो दूर दूर से लोग जो है यहाँ दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, दाऊ जी उसके जन्म के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी जितने हमारे जो कल्याण देवास वंशज जो गोस्वामी समाज है उनके हर घर से दाऊ जी के लिए अपने लड्डू और गुंजिया का भोग लगकर ठाकुर जी अपने इष्ट देव की आराधना और उनके जन्मोत्सव के हर्षोल्लास के साथ में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है।
2: बलदेव छठ पे मंदिर श्री दाऊ जी महाराज में हेवेवारी विशेष उत्सव तैयारी पे जानकारी देते आप हैं पंडित वेणी माधव शास्त्री।
3: कृष्ण के प्रपौत्र थे बद्रनाथ, उन्होंने मूर्तियों का निर्माण कराया था अपनी दादी उषा के कहने से। तो आज से 450 वर्ष पहले गोस्वामी कल्याण देव जी जो आदि गौड़ अहवासी ब्राह्मण शौबरे बन चुके थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के बलदाऊ भगवान ने, बलराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनका साक्षात्कार हुआ। बोले मेरी युगल प्रतिमा या बटप्रक्के के नीचे विराजी है, आप इसको निकालो। तो उन्होंने गोकुलनाथ जी को बुला करके या मूर्ति को निकलवा करके यहाँ स्थापित करी। वो महीना हो मक्सर सुधी पूने हो और दाऊ जी महाराज के खीर का भोग लगाया, तो ये तो प्राकट्य है। आज जो है 5200 वर्ष भी बाद भी, क्यों कृष्ण की तो जन्माष्टमी सब जगह हो पर दाऊ जी की बलदेव छठ को मेला हो सब जगह। हमारे पास में हाथरस में मेला है, सुरीर में मेला है और भी ब्रजमंडल में दाऊ जी को मेला है।
0: जो मेला हो करे सतोहा में,
3: हाँ सतोहा में मेला भारी हो करे और तोस में भी हो करे, कई कई जगह प्रकार के मेला लगते हैं। तो ये बलदाऊ जी जो है पराक्रम का अवतार है, बलाधिक्यम बलम विधु, बलशाली अवतार होने के कारण इनके यहाँ बल का ही सब काम है। अभी ठाकुर जी के स्नान हुए हैं, दिव्य पोशाक धारण करी गई है और जो साल भर में 3-4 दिन ही धारण करी जाए जवाहरात, जिसे जो करोड़ों रुपए की लागत से वो ठाकुर जी को जवाहरात धारण करा दी गई है, दर्शन खुले हुए हैं। अब इसके बाद में ठाकुर जी का राजभोग आएगा और यहाँ गोस्वामी वंश सामने बैठ करके समाज गायन करेंगे।
0: समाज गायन में
3: गाएगो ए हो रानी जायो हलदर पूत, रानी रोहिणी जायो हलदर पूत बधायो ब्रजराज। तो ये दाऊ जी महाराज को बधायो है, ये यहाँ दाऊ जी के सम्मुख बैठ करके गोस्वामी समाज अभी समाज गायन करेंगे, राजभोग आएंगे, उसके बाद आरती होगी, फिर उसके बाद में दंदकाना उत्सव यहाँ होगा। तो दंदकादे में दही मक्खन और हल्दी को प्रयोग करो जाए, तो जाए लाला की छींची बतामे ब्रजवासी, ये लाला की छींची को प्रसाद है सिर्फ ब्रजवासी पे और यहाँ जितने भक्तगण आप देख रहे होंगे सबके ऊपर ये डाला जाएगा।
0: हल्दी में केसर और हल्दी में और दही
3: दही
0: केसर हल्दी
3: और मक्खन,
0: हाँ जो श्रद्धालु आने मिल पे हम उड़ेले करें,
3: हाँ उड़ेलो करें। इसके बाद में यहाँ नारियलों पे मक्खन लगा करके नारियल फेंकेंगे, मेवा फेंकेगी तो नारियल के लिए यहाँ के जो सेवाद गोस्वामी लोग हैं वो थोड़ा मल्ल विद्या का प्रदर्शन करेंगे। एक नारियल के ऊपर 8-8 लोग लग जाएंगे, जो जीत जाएगा वो ले जाएगा और उसके बाद में दाऊ जी का जयकारा लगा के परिक्रमा को चले जाएंगे।
0: यहाँ पे संत भी पधारे करे हैं, जो ब्रज के प्रमुख संत हैं वो पधारे।
3: अभी साहब क्या है, बलदेव जी का जो जन्मोत्सव का जो उत्सव है बड़ा विशेष रूप ले चुका है। अभी हमारे यहाँ संत लोग आए हैं और संत लोगों के साथ साथ हमारे वृंदावन से पधारे मनोज मोहन शास्त्री जी ने 7 दिन यहाँ बड़ी कथा को रसपान करायो श्रीमद भागवत कथा का, उसी के उपलक्ष में ये सेनाई बज रही है और शाम को 4 बजे पे यहाँ से कलश यात्रा दाऊ जी की बलदेव छठ की जो यात्रा है, हमारी 1100 महिलाएं कलश लेकर के पूरे अपने मंदिर की परिक्रमा लगा करके और इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। इसके बाद में यहाँ 11 कुंटल शुद्ध घी का बेसन का लड्डू जो मंदिर की तरफ से प्रसाद है वो दाऊ जी के भोग लगेगा और उसको सब ब्रजवासियों के घर में वितरण कर दिया जाएगा। बोलो दाऊ से दयाल की जय।
2: भगवान दाऊ जी को बलदेव छठ पे धरायो जाए है विशेष भोग प्रसाद, यह विषय में बतियामते आप हैं पंडित सोनू गोस्वामी।
4: ये दाऊ जी महाराज को 365 दिन पक्की प्रसादी आवे, पक्को भोजन आवे।

0: जामे खीर पूड़ी लड्डू बासुंदी मोहन भोग रायतो जी सारी चीज़ें ठाकुर जी के भोग में सम्मिलित हों प्रतिदिन। और आज वैसे भी दाऊ दादा को जन्मोत्सव है, तो ये वृक्ष शिरोमणि हैं, दाऊ जी महाराज की सुबह 4 बजे दर्शन खुले हैं, उसके बाद 4:30 बजे महाभिषेक हुआ है, उसके बाद दाऊ जी महाराज के बालभोग आए हैं, आरती हुई है, अब दाऊ जी महाराज का नंदोत्सव होगा। ठाकुर जी ने बेस कीमती जवाहरात राजा औरंगजेब की धारण की हुई है, तो राजा औरंगजेब यहाँ जब दाऊ जी से आके हारे हैं तो उनके पास जितना भी गहना था, जितनी भी बराबरी थी, सब ठाकुर जी को अर्पण करके गए हैं। अब दाऊ जी का आनंद बरसेगा, अमर युद्ध का प्रदर्शन होगा, हजारों गोस्वामी बालक दाऊ जी महाराज के सामने अमर युद्ध का प्रदर्शन करेंगे।
1: तो यहाँ पे जो हमारी जो प्रसादी तैयार करी है, कहाँ कहाँ हमें ऐसे दोहराया जाए प्रसाद, ऋतु के अनुसार हुए करे, मौसम के अनुसार लाल लड़ायो जाए हैं ठाकुर जी
0: की? ठाकुर जी के प्रत्येक मौसम की अपनी अपनी सामग्री धराई जाए ठाकुर जी की। वैसे तो दाऊ जी महाराज को हमेशा पक्की सामग्री रखाई जाए, पर जो जो मौसम चल रहा है ठाकुर जी को, ये ठंडा और गर्म मौसम है, जहाँ में ज़्यादातर ठाकुर जी को बारूडी धराई जाए, श्रीखंड, श्रीखंड की प्रसादी विशेष करके दाऊ जी की रखाई जाए। और आज दाऊ जी को जन्मोत्सव है, तो जाके उपलक्ष्य में बधाई रूप में ठाकुर जी के बेसन के लड्डू प्रसादी वितरण हो। 3 से 4 बजे जब दाऊ जी के दर्शन खुलेंगे तो 21 क्विंटल की लड्डू की प्रसादी दाऊ जी को अर्पण होगी और सभी में वितरण होगी।
1: पूरे के पूरे श्रद्धालु बधारे हुए हैं?
0: हाँ, जितने भी श्रद्धालु दाऊ जी महाराज के मंदिर में आए हुए हैं, सबको दाऊ जी महाराज की प्रसादी प्राप्त होगी। नंद घर आनंद भये जय दाऊ दयाल के विद्या है। दाऊ जी महाराज के यहाँ अभी ठाकुर जी ने जवाहरात धारण की हुई है, इसके बाद में ठाकुर जी के यहाँ नंदोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कि दाऊ जी महाराज के सामने मल्ल विद्या का प्रदर्शन होगा, जिसमें नारियल, जो नारियल होते हैं, उन पर माखन लगा करके ठाकुर जी के प्रांगण से लुटाए जाएंगे, जिसमें जितना बल है, जो जितना बलशाली है, वो उतने ही नारियल दाऊ जी महाराज के यहाँ से लेके जाएंगे।
2: बलदेव छठ के पर्व पे मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु ने श्रीमद भागवत कथा को रसपान कथा व्यास डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री के श्री मुक्ते कियो और पुण्य लाभ कमायो। बलदेव छठ पे अपने आशीर्वचन के साथ आप हते डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री।
3: दाऊ से दयाल की जय, रेवती सी मैया की जय। आज हम जो भी हमारे श्रोता हैं उनसे हम एक बात कहेंगे कि आज दाऊ दयाल की कृपा से बलदेव क्षेत्र में जब वो विद्रुम बन बोले, बड़ो चारों तरफ उल्लास ही उल्लास है। क्यों? क्योंकि हमारे इष्ट को आज जन्मदिन है। आज हमारे जो संरक्षक हैं, हमारा जो मालिक है, हमारा जो देवता है, हमारा जो इष्ट है, और तो और जो हमारा सर्वस्व है, बाप हम जन्मोत्सव मनाए रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण में और दाऊ दादा में 1 वर्ष की छोट बड़ाई ही, रोहिणी जी के गर्भ से आप 1 वर्ष पहले आपको अवतार भयो और यशोदा जी के यहाँ पे नंद के लाला को 1 साल बाद में अवतार भयो। लेकिन चूंकि ये शेष के अवतार हैं, शेषावतार के मन में हमेशा जी रही, चाहे मैं बड़ो बनूं चाहे मैं छोटो बनूं, लेकिन बस एक ही बात है कि मैं लाला की सेवा में करूं या मैं अपने भैया को कोई भी कष्ट कोई प्रकार से नहीं होए, बाको ध्यान रखूं। और एक बात हमारे श्रोता अच्छी तरह से समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण की कोई ऐसी लीला नहीं है जब मैं दाऊ दादा संग नहीं होए, प्रायः प्रायः, लेकिन कछु लीला ऐसी है जब मैं दाऊ दादा नहीं है। क्योंकि जहाँ पे जैसे सर्प की लीला है, काली की लीला है, अघासुर की लीला है, क्योंकि ये तो शेषावतार हैं, इनके सामने कोई सर्प फुसकार मार सकता होगा लाला के दाई, या लिए वामे नहीं है। लेकिन आप यहां देखोगे, यहां पे मिश्री के प्रसाद को विशेष महत्व है। माखन और मिश्री दोनों भैया, बड़ो भैया बलराम दादा, छोटो भैया श्री कृष्ण कन्हैया, इन दोनों को यहां पे मिश्री और माखन इनको भोग लगे। और या प्रकार कवि ने भी ये कही है, जब उद्धव जी ने पूछी कि आपके आंखन में आंसू क्यों हैं, तो हमारे ब्रज के प्रसिद्ध कवि स्वामी मेघश्याम जी के हैं, आई है लहर आज ही सिंधु में ते बहे, बही इन आंखन में आंसू बन छाई है उदासी शाम, ब्रज के संदेश से बिना मैया के माखन की न कीमत चुकाई है, काई मन मुकुर की मिटावन दबाई, एक भोरे ब्रजवासन की पदरज बताई है, ताई है वियोग में वियोग इन ब्रशुभान बारी, सत्य कहूं सखा आज ताकी सुध आई है। दाऊ से दयाल की जय, रेवती सी मैया की जय। तो श्रोतान को ये आवाज आ रही होगी, हमने अपनी बात रखवे के ताई इन ब्रजवासीन को यहाँ पे रोक रखो है, और ना तो जीरो के व्यवहार कहा है जी, तो और आज क्यों रुकेंगे जी, तो कबू ना रुकेंगे, बहु में तो लाला को जन्मदिन है। दाऊ से रेवती सी

0: सोबरी ऋषिराज की।
1: यह अवसर पे पधारे मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा।
2: देखो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ब्रजवासी हैं और आज हमारे दाऊ दादा को प्राकट्य उत्सव है और सब ब्रजवासी बड़े धूमधाम से देशवासी अपने दाऊ को जो जन्मोत्सव है मना रहे हैं और यह उत्सव पे के अवसर पर सबन को खूब बधाई, खूब सुख समृद्धि हो, सब खुशहाली आए और खूब लोग शांति से रहें। राधे राधे।
1: भैया भगवान बलभद्र को प्राकट्य उत्सव को पर्व बलदेव छठ दाऊ जी महाराज के मंदिर में पूरी धूमधाम से मनायो जाए है। पूरे ब्रज में दाऊ जी के अनेक प्राचीन मंदिर हते। यही क्रम में गोवर्धन रोड स्थित सतोहा गांव में शांतनु बिहारी मंदिर में बलदेव छठ पे बड़ो भारी मेला जुटे है। पेश है एक झलक।
3: कालीचरण पंडित यहाँ खूब मतलब छठ वाले दिन खूब धूमधाम से बढ़िया तरीके से कुश्तियाँ होती हैं। बार बार के पहलवान आते हैं, काफी दूर से पहलवान आते हैं, तो कुश्ती दो दिन होती है यहाँ छठ और साथ हैं बहुत, और तमाशा भी होता है, दंगल भी होते हैं रात में। तो ये मतलब का गया मैं कुश्ती छठ और साथ हैं दो दिन यहाँ दंगल होता है और मेला भी लगता है।
1: पूर्व में आए कभी?
4: फर्स्ट टाइम 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं जिसमें आज की दर्शन थे हमारे शांतनु बिहारी जी के, हमने कर लिए हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आनंद ही आनंद है।
1: और मैं देख रहा हूँ आपके साथ पूरा परिवार भी आया।
4: पूरा परिवार।
1: आप कहाँ से आए?
5: जयपुर से।
1: जयपुर। कैसा लग रहा है ब्रज में पधार के?
5: अच्छा लग रहा है।
1: आप कहाँ से आगमन हुआ आपका?
6: मथुरा।
1: मथुरा से आए हैं, क्या शुभ नाम है आपका?
6: अनिल चतुर्वेदी। बहुत आनंदित है, बहुत आनंद आ रहा है, प्रभु कृपा से आज दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेला भी बहुत प्राचीन मेला है, मल्ल विद्यालय क्षेत्र है, दंगल होता है और सभी यात्री लोग आते हैं आनंद लेने के लिए, ठाकुर जी आनंद लेते हैं लोग। पूरे ब्रज क्षेत्र में दाऊ जी का मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, मगर सतुआ क्षेत्र में दाऊ जी मेला का आनंद ही अलग है।
1: आप है मंदिर सेवायत श्री नरसिंह दास जी महाराज।
7: इस जगह पर राजा शांतनु ने तप किया, तप करने के बाद में ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर देवों ने यहाँ विशेषता दिखाई। छठ के दिन देवों ने यहाँ विशेषता दिखाई जिसके उपलक्ष्य में यहाँ मेला लगता है और कुश्ती दंगल होते हैं। चार दिना, छह दिना, आठ दिना से पहले से तैयारी होती है और मेला अति सुंदर लगता है, शांतिपूर्वक होता है, वहाँ कुश्ती दंगल होता है और ठाकुर जी के दर्शन किए जाते हैं।
1: शांतनु बिहारी मंदिर के महत्व को बताते आप हैं काशनी कृष्ण मुरारी महाराज।
8: बलदेव छठ का मेला लगता है, जिनके संतान प्राप्त ना होती हो वो यहाँ संतान के लिए मनौती करें तो संतान की प्राप्ति होती है। राजा शांतनु ने यहाँ तपस्या की थी गंगा जी से शादी करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, भगवान ने वरदान दिया और यहाँ सत्तू का भोग लगता है। यहाँ की विशेषता बताई कि सतुआ खाया मैंने यहाँ, सतुआ बसे कुंड शांतन हो, राजन करो ज्ञात है, जिसमें नहावे निपुत्री तो संतान हो, ये वचन मेरा जग में विख्यात है, ऐसा यहाँ का महत्व है।
1: अब जो आज मेला लग रहा है बलदेव छठ का, इसमें क्या विशेष रूप से तैयारियाँ रहती हैं?
8: विशेष रूप से एक तो प्रशासन के द्वारा भी तैयारी है, नगर निगम के द्वारा भी तैयारी है, गांव बस्ती के द्वारा आयोजन होता है, दंगल लगता है, पानी की लाइट की व्यवस्था है और सभी प्रकार से शासन की तैयारी है।
1: यही के साथ बलदेव क्षेत्र स्थित मंदिर श्री दाऊ जी महाराज व गोवर्धन रोड स्थित शांतनु बिहारी मंदिर में बलदेव छठ पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट संपन्न भई। प्रस्तुति सहयोग अनुराग पांडे को हतो, या रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता हते ओपी सिंह।
9: तो देखो साथियों, आज ऐसो लग रहे हो जैसे कि हम खुद दाऊ जी के मंदिर में उपस्थित हैं और वहाँ की इतनी सुंदर छटाएं देख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम और इनकी झलक ऐसे सुनवाई जैसे हम वहीं पर सीधे खड़े होके वहाँ के कार्यक्रम को रंग में रंग रहे हैं। तो साथियों, अब यही के साथ ब्रज माधुरी कार्यक्रम को भी हम यहीं विराम देवे हैं। चंद्रा खत्री की ओर से सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी ही पलों में होंगे समाचार।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए

0: आपत्ति व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
4: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
5: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहाँ टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
4: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
6: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
4: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में

0: समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमेरिका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईटी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेईई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकान

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीत बित किया था आर डी बर्मन ने। कटी पतंग फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: FM 102.2 MHz पर भी आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत लता मंगेशकर उषा मंगेशकर के युगल सुरों में फिल्म अनीता से। गीत की शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत बद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मजरू की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया एसटी बर्मन ने। किशोर कुमार आशा भोसले की युगल सुरों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म चलती का नाम गाड़ी में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार के युगल सुरों में फिल्म आपकी कसम से।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ प्रिय आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 9 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में विषय लेकर आए हैं वायरल बुखार, कारण, लक्षण और समाधान। जानकारी देंगे डॉक्टर लव गुप्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं OP सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हम बात करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं कि इस समय फ्लू बहुत चल रहा है। फ्लू यानी वायरल रोग, जिसमें कभी जुकाम खांसी होता है, कभी बुखार आ जाता है, पूरा शरीर या बदन दर्द करता है और समझ में नहीं आता, क्योंकि इस समय तापमान लगभग 30 और 35 के बीच में है, ह्यूमिडिटी है। और ये जो समय है, मक्खी मच्छर के साथ साथ बरसात के मौसम में जो पनप जाते हैं, साथ ही साथ जो बैक्टीरिया और वायरस हैं उनके लिए भी ग्रोथ का मुफीद समय है। और आपने देखा होगा कि बरसात के बाद अक्सर एक बीमारी किसी भी रूप में आए लेकिन आती है समाज में। तो ज़रूरी है कि हम सावधान रहें, सचेत रहें और जानकार रहें कि किस चीज़ से हमें नुकसान हो सकता है। आप बाहर से आए, पसीने में है, ठंडा पानी पी लिया, बाहर से आए पसीने में है, AC में आ गए, या AC से अचानक निकल कर बाहर चले गए, तो तापमान का बहुत उतार चढ़ाव है। ये हमें और हमारी बॉडी को कई बार उसकी इम्यूनिटी को कम करता है। तो जानकार लोग, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या एडवाइस है, वो क्या हमको बताते हैं, आज ये हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर लव गुप्ता साहब। आप जो हमारा पल्मोनोलॉजी होता है उसके विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, और श्वसन संबंधी, फेफड़ों संबंधी, और आज जो फ्लू की हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी फेफड़ों से ही जुड़ा हुआ काफ़ी कुछ है, तो उस पर जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। तो देख रहे हैं कि लोग थोड़ा परेशान हैं, बताइए इस समय की जो उनके लिए हिदायत है, उनके लिए जो आपकी सलाह है, वो किस रूप में मायने रखती है इसमें?
2: ये जो अभी जो वेदर है, जो गर्मी जा रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, बारिश का टाइम चल रहा है, ह्यूमिड वेदर है, इस टाइम पे बहुत सारी बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, जैसे कि मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है। हालांकि इस टाइम पे अभी वायरल फ्लू, वायरल फीवर भी बहुत चलता है। इस समय पे H1N1 आउटब्रेक, जैसा कि हम देखते हैं, दिल्ली NCR में हुआ था, तो उसके लक्षण हमें, उसके पेशेंट सब हमको यहाँ पे भी मिलते हैं। तो ये H1N1 का आउटब्रेक है, बेसिकली वायरल फीवर है। तो
1: मतलब वायरल इस समय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस तो आप नहीं सकते क्योंकि घर से बाहर जा रहे हैं, रह रहे हैं, सोसाइटी में काम कर रहे हैं। तो लेकिन एक हिदायत क्या रहेंगे कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है इसमें?
2: देखिए, इसमें 2-3-4 चीजें हैं। बेसिकली सबसे पहले तो आपके शरीर की इम्यूनिटी कैसी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं इनके फेफड़े खराब नहीं है, जो लोग को अस्थमा नहीं है उन लोग को इतनी ज्यादा डरने की बात नहीं है। जो इस तरह के लोग हैं जिनको COPD, अस्थमा या सांस की कोई बीमारी है, फेफड़े के कोई रोग हैं या दिल के रोग हैं, उन लोग को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आप बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, किसी भी फ्लू या वायरल के व्यक्ति के संपर्क में नहीं है, उनका उपयोग किया हुआ टावल, रूमाल, ये सब चीज़ों का उपयोग ना करें। और सबसे ज़रूरी, फ्लू की वैक्सीन्स होती हैं जो कि हर साल फ्लू, जब ये फ्लू है ना, ये हर साल स्ट्रेन चेंज करके म्यूटेट होके आता है, इसकी ये वायरस अपना कवर बदल लेता है, हर साल नए कवर में आता है,
1: छुपा हुआ रुस्तम है, छुपा कहते हैं, छुपा रुस्तम है,
2: हर साल नया बन के आता है, तो उसकी वैक्सीन भी हर साल चेंज होके आती है। तो इसके लिए फ्लू का वैक्सीनेशन अपने निकटतम डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन, इन लोग के पास यूजुअली होते हैं, वहाँ से जाके आप वैक्सीनेशंस करा सकते हैं। ये उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि मैंने जैसे पहले कहा, जिनको दिल की बीमारियाँ, फेफड़े की अस्थमा, COPD, स्लीप एपनिया,
1: क्रिटिकल बीमारियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको पहले से है
2: एलर्जी, किडनी की भी बीमारी हो, इस तरह की जिन लोग को बीमारी, सांस का रोग है, एलर्जी का रोग है, जल्दी जल्दी खांसी जुकाम होता है, उन लोग को निश्चित तौर पे फ्लू का वैक्सीनेशन कराना चाहिए।
1: जी जी जी। तो मतलब श्रोता बंधु, वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएंगे, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कहते हैं ना कि कोई दुश्मन आए तो हमारे पास हथियार तैयार होने चाहिए, और हमारे हथियार यही है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, खान पान पर विशेष ध्यान दें, एहतियात के साथ रहें, व्यायाम करें, वर्जिश करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। तो डॉक्टर साहब, अब इसमें मतलब तैयारी हमें रखनी है उसमें, लेकिन कोई चीज़ आ रही है, एक तो क्रिटिकल

0: लोग, आपने कहा कि भाई बहुत सारे आपका डायबिटिक हैं, कैंसरस हैं, या ऐसी बीमारियां जो किडनी की हैं उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन सामान्य जो जुकाम खांसी है या किसी क्रिटिकल उससे जुड़ा हुआ है, या क्रॉनिक कब होगा, परेशानी कब ज़्यादा होगी? क्योंकि पैनिक भी हम नहीं करना चाहते लोगों के, जुकाम खांसी हुई और हम बिल्कुल एकदम से घबरा जाएं या भागे दौड़े करें, लेकिन एक व्यक्ति को ज़्यादा सावधान कब हो जाना चाहिए उसमें,
1: देखिए,
0: हॉस्पिटल कब जाना चाहिए उसको?
1: इसके सिम्टम्स जो है नॉर्मल जुकाम बुखार से लेकर निमोनिया तक हर तरह के होते हैं। अभी हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे ओपीडी में, जिनको नॉर्मली जुकाम बुखार हो गया, आगे दिखा के दवाई लेंगे। पर जो कुछ ऐसे मरीज हैं जैसे कि जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं या जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उनमें ये सीवियर निमोनिया से कोविड के टाइम पे निमोनिया हो रहे थे, उस तरह के निमोनिया लेके भी पेशेंट्स आ रहे हैं अभी। तो ऐसे पेशेंट्स में मैं सलाह देता हूँ कि जिनको 5 दिन से ज़्यादा हो गए बुखार आते हुए, खांसी है और उनको खांसी ठीक नहीं हो रही है नॉर्मल दवाइयों से, अगर सांस लेने में हल्की फुल्की में प्रॉब्लम हो रही है, छाती में सीटी की आवाज़, साई साई की आवाज़ होनी शुरू हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए।
0: जी। तो अब इसमें जैसे पहले ये होता था कि आपने कहा ना कि हर बार बीमारी नया रूप बदल के आ रही है, स्ट्रेन बदल रहा है उसमें, तो सिम्टम भी बदल रहे हैं। एक समय ऐसा था कि भाई ठंड से बुखार आ रहा तो मान लेते थे मलेरिया है।
1: अधिकतर को मैक्सिमम केसेस में, अधिकतर केसेस में ये जो मौसम है ये फ्लू के लिए आइडियल मौसम है। मैक्सिमम केसेस इसी मौसम में होंगे, इसके अलावा जनरली होता नहीं है। हालांकि साउथ इंडिया में ऐसा होता है कि वो अक्टूबर के बाद में शुरू होता है।
0: वो जो जब समय चेंज होता है वो थोड़ा सा
1: जी
0: आगे है, या कभी उधर से जब फरवरी मार्च से हम मई
1: बिल्कुल,
0: जून की तरफ आते हैं तो वहाँ भी
1: तब
0: थोड़ा,
1: वहाँ,
0: मतलब
1: हाँ
0: एक जंक्शन ऐसा आता है कि जब हम ज़्यादा सीवियरिटी से थोड़ा बढ़
1: जब वेदर
0: करके
1: चेंज हो रहा होता तब।
0: रहता, तो
1: जी
0: बदलते हुए
1: बिल्कुल,
0: मौसम में ही होता है।
1: लक्षण जैसे आपको सामान्य जुकाम बुखार से लेके और मतलब कोरोना के टाइम पे जैसा निमोनिया होता था उस टाइप का निमोनिया तक हर तरीके के लक्षण हो सकते हैं। पर अधिकतर 95 से 99% केसेस में सामान्य जुकाम बुखार, खांसी, छाती में सीटी की आवाज़ आना, ये इसके लक्षण हैं।
0: कई बार ब्रोंकाइटिस की हम बात करते हैं, टीबी है कुछ लोगों को, पता नहीं है लेकिन है, और ऐसे में थोड़ा सा ये हुआ, वायरल हुआ तो वो मिक्स हो गया, उसमें सिम्टम एग्जैगरेट भी कर जाते हैं। तो व्यक्ति क्या है कि जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं। अब इसमें डॉक्टर साहब जैसे वायरल का होता है, उसमें थोड़ा सा हमने इलाज लिया, कई बार बहुत जल्दी राहत हो जाती है लेकिन वो फिर रिपीट हो भी हो जाता है, आजकल ये देखने में आ रहा है। तो एक व्यक्ति को कोई इलाज ले, क्या करते हैं कि जैसे फ़ायदा हुआ फिर हम दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाते, और इलाज ये मान के कि हम ठीक हो गए बंद कर देते। तो ये जो टेंडेंसी है, एक जब तक डॉक्टर कहते हैं अरे डॉक्टर तो फिर इलाज को ख़त्म ही नहीं करेगा, फिर कुछ नया लिख देगा, तो व्यक्ति क्या है कि बीच में ही रोक देता है। ये जो टेंडेंसी, ये सोच है, कितनी घातक है, रोग के लिए भी, उस व्यक्ति के लिए भी, और समाज के लिए भी। जो जब हम कहते हैं कि स्वस्थ समाज हो तो वहाँ वो फिर वो उसके उसमें अंदर वो पड़े हुए भी हैं, दूसरे लोगों को उसको बांटता भी रहता है, वायरल तो कंटेजीनियस भी है थोड़ा सा।
1: देखिए, फ्लू तो जनरली सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, 7 से 8 दिन में कई बार वो खुद से ठीक भी हो जाता है।
0: जी।
1: पर अभी इसमें क्या है कि अगर मान लो इन्फेक्टिव डिसीज़ है,
0: हाँ
1: जैसे कि फ्लू, चाहे फ्लू भी हो या टीबी हो या कुछ भी हो, अगर पेशेंट अपना पूरा इलाज नहीं होगा तो वो बाकी लोगों को भी देगा, उसकी वजह से बाकी लोगों को भी बीमारी होगी। और अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, अस्थमा वगैरह है, तो उसमें बाकी लोगों को तो बीमारी नहीं होती है, पर हाँ पेशेंट को परेशानी तो रहती है। तो इस मौसम में सब बीपी और शुगर के मरीजों को सबसे पहले तो आप एक हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए। आप बाहर निकलते हैं, आपका बीपी
0: पसीना
1: कम
0: आता
1: हो
0: है।
1: सकता है या कई बार किसी को किसी कारण से बीपी बढ़ भी सकता है। दूसरा, शुगर, आप शुगर की दवाई खाते हैं तो आप खाना प्रॉपर खाएं जिसकी वजह से आपका शुगर कम नहीं हो। तीसरा, जैसा कि मैंने बताया, बीपी, शुगर और इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की वैक्सीन्स लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि इसी ये मौसम आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा, जो जो भी किसी बीमारी के मरीज हैं ऐसे लोगों को ये मौसम सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल होता है। इस टाइम पे फ्लू होने के चांसेस, निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
0: अब डॉक्टर साहब आपने एक चीज़ कहा कि वायरल है, सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकता है, 3 से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में मैक्सिमम कई बार ख़त्म भी हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी ठीक है। एक लोकल उसमें चलता है कि भाई जुकाम खांसी हो जाए, जुकाम विशेष करके, तो रूखा सूखा भूखा, ये 3 दिन रह लीजिए, ऐसा लोग कुछ मानते हैं। तो ये जो फिलॉसफी के साथ जीने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे?
1: नहीं, रूखा सूखा भूखा ये तो मैं नहीं कहूँगा।

0: क्योंकि आदमी जितना भूखा रहता है उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी कम होती है,
1: हाँ
0: और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से आपकी
1: हाँ
0: बीमारी लंबी चल सकती है, उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: मैं हाँ, डाइट में कुछ चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे कि विटामिन सी रिच डाइट, जैसे कि अमरूद है, नींबू है, ये सब चीज़ें। विटामिन सी एंटीवायरल होता है, तो विटामिन सी लेने से आपको जो वायरल की जो समस्या है वो कम होने की संभावना, अगर आप नियमित विटामिन सी लेते हैं तो। आप सुबह सुबह गुनगुने पानी में आधा नींबू डाल के ले सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं साथ में, आप इसका आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं।
1: मतलब विटामिन सी रिच फूड अगर आप ले रहे हैं बैलेंस डाइट में, तो वो आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा
0: हाँ जी
1: और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पे आप विदाउट मेडिकेशन भी आप निकल जाते हैं।
0: सही
1: लेकिन ऐसा
0: बात,
1: नहीं है, अगर चीज़ थोड़ी लंबी है तो फिर एक डॉक्टर के पास आपको जाना ही चाहिए उस समय।
0: जरूरी है उस समय जाना।
1: जी। अब इसमें जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके काम ऐसे हैं कि पसीने में ही रहेंगे, ग्रामीण आबादी अभी बहुत है, धान के खेत में काम कर रहे हैं, गन्ने के खेत में काम कर रहे हैं, कपास है, फसल बढ़ जाती है, वो पसीने के साथ ही उनका बहुत सारा पूरा पूरा दिन सा ही निकल जाता है उसमें। कभी पसीना आता है, कभी सूख जाता है, कभी काम कर रहे हैं, बारिश आ गई, ओपन में कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या हिदायत देंगे आप?
0: ऐसे लोगों के लिए मैं हिदायत दूंगा कि जो लोग, जिन लोग का काम हमेशा पसीने में रहते हैं, वो लोग काम की वजह से, तो तुरंत पसीने से निकल के सीधे एसी में या कूलर के सामने जाके ना बैठे, पहले पसीने को सुखा लें, फिर उसके बाद में ठंडी चीज़ में जाके बैठे। आपके जो कपड़े हैं जो पसीने से गीले हो गए, उनको नियमित तौर पर बदलते रहें। ठंडी चीज़ों का सेवन उस समय पर ना करें जिससे कि आपको जुकाम वगैरह ना हो।
1: हाँ, कई बार आजकल जैसे होता है कि भाई गर्मी लगी है, थोड़ा आराम मिला, लो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ठंडा पानी आ गया, अच्छा भी लगता है, गला सूख रहा है ठंडे पानी के, तो मतलब फिर व्यवहारगत सावधानियां बहुत हो जाती है कि भाई काम तो है नहीं छोड़ सकते, एक दो गमछा अपने पास रखें,
0: बिल्कुल
1: बार बार बीच बीच में उसे पोंछते रहें, वो
0: जी,
1: करते
0: बिल्कुल
1: रहें उसमें, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं इसमें।
0: जी, बिल्कुल
1: तो चलते चलते तो डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि समय अब समाप्त हो रहा है, और चलते चलते क्या सलाह
0: बस
1: देना?
0: मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा, इस मौसम में अपने जो भी सांस के पेशेंट्स हैं, निमोनिया के, अस्थमा के, सीओपीडी के, अपना इन्हेलर नहीं छोड़ें, अपनी दवाइयाँ नियमित तौर पर लेते रहें। जो बचाव आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, जो अभी हमने पिछले आधे घंटे में जो भी बचाव डिस्कस किए हैं, उनका पालन करें और इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की वैक्सीन लगवाएं।
1: जी। तो श्रोता बंधु, आपसे डॉक्टर लव गुप्ता साहब पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और कोई भी ऐसी समस्या, वायरल के बारे में, फ्लू के बारे में आज हम बात कर रहे थे, ये हर बार बदल के आता है, रूप बदलता रहता है, अपने गुण बदलता रहता है, तो सबसे बेहतर है कि इस मौसम में क्या कुछ आया, एक अच्छा डॉक्टर ही हमको बता सकता है, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके ही है, ऐसा नहीं है कि आज हमको जुकाम खांसी हुआ तो हमें आज ही दौड़ के जाना है, एक दो दिन बाद जब ऐसा लगे कि शायद मेरी शरीर इस बीमारी से लड़ने में अब सक्षम नहीं है, तो एक अच्छे डॉक्टर की सलाह बनती है, आप जाएं दिखाएं, और जो डॉक्टर कह रहे हैं उसका पालन आप जरूर करिए, बीच में न छोड़ें, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान हो जाती है, अगर सलाह आपने छोड़ दी, इलाज छोड़ दिया, तो बीमारी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब आप आए, हमसे जुड़े, हमारे श्रोताओं से जुड़े, आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता, विषय लेकर आए थे वायरल बुखार, कारण, लक्षण और समाधान। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर लव गुप्ता, आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं, थोड़ी देर में होगी जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
1: मुजफ्फरनगर जिले में बीते माह भारी बारिश रही। गंगा, सोलानी नदी, काली नदी और हिंड नदी के किनारों के गांवों में कुछ स्थानों पर बाढ़ की स्थिति रही। जिला प्रशासन यहां पूरी तरह चौकन्ना रहा और बाढ़ के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, न ही अत्यधिक नुकसान हुआ है। मुजफ्फरनगर जिले की मुख्य फसल गन्ना है और गन्ने की फसल पककर तैयार हो रही है। 1 अक्टूबर से कोल्हुओं में गन्ने की पेराई प्रारंभ हो जाएगी। चीनी मिलों ने भी गन्ने की पेराई को लेकर चीनी मिलों में मरम्मत आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा लगभग 8,14,00,000 की लागत से नवनिर्मित भारोत्तोलन हॉल, वॉलीबॉल कोर्ट एवं बैडमिंटन क्रीड़ा हॉल के जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। 12,55,00,000 की लागत से कराए जा रहे सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण का कार्य भी चल रहा है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जनपद बिजनौर की थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट टीम के सदस्यों के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो तथा कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि जनपद के खिलाड़ियों को आधुनिक हॉल एवं सिंथेटिक ट्रैक की सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। श्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं एवं खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से स्थानीय खिलाड़ियों को अपने अभ्यास एवं प्रशिक्षण के लिए बेहतर संसाधन मिलेंगे तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराए जाएं, जिससे मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों को इन आधुनिक खेल सुविधाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। मुजफ्फरनगर में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी की टीमों ने मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में कुल 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई मुजफ्फरनगर में देखने को मिली। 5 अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई। मुजफ्फरनगर जनपद की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने न्याय का एक ऐसा इतिहास लिख दिया है। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर एक बार फिर से न्याय की गाथा लिखकर चर्चाओं में है। इस बार उन्होंने मुजफ्फरनगर जनपद में 9 संगीन मामलों में 22 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाने का काम किया है। मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधानसभा और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव रोहाणा स्थित रेलवे स्टेशन पर कोविड काल से किसी भी ट्रेन का ठहराव नहीं था। क्षेत्रवासी लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे थे, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और बिजनौर सांसद चंदन चौहान के माध्यम से मांग पत्र भी रेल मंत्री तक कई बार पहुंचाया। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से भी मुलाकात की गई। जयंत चौधरी के माध्यम से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और सांसद चंदन चौहान को यह सफलता मिली और दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस जो हरिद्वार से चलकर देवबंद के रास्ते रोहाणा पहुंची और जहां उसका ठहरा हुआ। रेलवे स्टेशन पर पहले से ही मौजूद कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, सांसद चंदन चौहान और उनके समर्थकों ने ट्रेन का स्वागत किया। नेपाल में आई भीषण आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप की पहल पर चलाए गए नेपाल हेल्पिंग हैंड अभियान के तहत एकत्र खाद्य सामग्री को टाउन हॉल मैदान से नेपाल के लिए रवाना किया गया। पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने खाद्य सामग्री से भरे वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने अभियान में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताया और कहा कि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे में मुजफ्फरनगर से सहायता सामग्री भेजने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष मीनाक्ष स्वरूप द्वारा चलाए गए अभियान को विभिन्न वर्गों का व्यापक समर्थन मिला। नगर पालिका परिषद के सभासदों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने भी अभियान में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र सहित जनपद की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पिछले 9 वर्षों में लगभग 300 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। इन कार्यों में नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण, क्षमता वृद्धि, नई विद्युत लाइन

0: लाइनों का निर्माण, नए विद्युत वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। 78,82,00,000 की लागत से 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र सुजड़ू एवं संबंधित 132 केवी लाइन का निर्माण हुआ। 62,13,00,000 की लागत से 220 केवी विद्युत उपकेंद्र बधाई कला का निर्माण कराया गया। दीनदयाल योजना के अंतर्गत 50 नए विद्युत ट्रांसफार्मरों की स्थापना की गई, जिस पर लगभग 1,09,00,000 की लागत आई। मुजफ्फरनगर के ग्राम दूधली में स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन जहारवीर गोगा महाड़ी पर 3 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन हुआ। शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने जहारवीर गोगा जी की महाड़ी पर विधिवत दर्शन एवं पूजन कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की। ऐतिहासिक मेले में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान सहित कई राज्यों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। श्रद्धालु गोगा महाड़ी पर प्रसाद चढ़ाकर अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तथा परिवार एवं समाज के सुख शांति की कामना करते हैं।
1: मुजफ्फरनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का।
2: हाथरस जनपद के इतिहास, पौराणिक विरासत एवं 115वें श्री दाऊजी महाराज लक्की मेले की भव्यता को अब सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी अतुल बस ने कलेक्टर सभागार में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के साथ बैठक कर जनपद हाथरस के इतिहास, पौराणिक विरासत, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा 17 तारीख को लगने वाले 115वीं राजकीय श्री दाऊजी महाराज लक्की मेले की विशेषताओं को व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हाथरस का इतिहास, यहाँ की पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाएं, सांस्कृतिक विरासत और श्री दाऊजी महाराज का प्रसिद्ध लक्की मेला जनपद की विशिष्ट पहचान है। इनमें जुड़ी अनसुनी एवं रोचक कहानियों को आधुनिक डिजिटल माध्यमों के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने सभी इन्फ्लुएंस से अपील की कि वे जनपद की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर उच्च गुणवत्ता की तथ्यपरक और आकर्षक वीडियो तैयार कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। हाथरस जिले में ईवीएम एवं वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग MLC का कार्य संपन्न हुआ। विधानसभा चुनाव 2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल बस तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीति दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग निर्धारित प्रोटोकॉल एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रारंभ की गई। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जिला गंगा समिति हाथरस द्वारा आज कृषि विज्ञान केंद्र सिकंदर राव में किसानों के लिए प्राकृतिक खेती विषय कार्यशाला एवं कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती की विभिन्न पद्धतियों और उनसे लाभों तथा रासायनिक उर्वरकों एवं अन्य रसायनों पर निर्भरता कम करने के संबंध में सरल एवं व्यवहारिक जानकारी दी। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी एवं जल स्रोतों के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के योगदान देने के लिए जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल की जनकल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने तथा प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़े जाने के संबंध में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल वस्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित दायित्वों का निर्वहन शासन की मंशा के अनुरूप करने के निर्देश दिए। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ के अवसर पर विकास भवन सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदस्य राज्य महिला आयोग रेणुकौड़ एवं मुख्य विकास अधिकारी PN दीक्षित ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक परियोजना से एक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, जिन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत अपनी परियोजना में सर्वाधिक फार्म भरवाए को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने के साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी हाथरस ग्रामीण सोनी कुमारी ए बाल विकास परियोजना अधिकारी सिकंदराव कल्पना दुबे को जिले के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सर्वाधिक फार्म भरवाने पर सम्मानित किया।

0: गया। आगामी त्योहारों विशेषकर दीपावली के दृष्टिगत जनपद में पटाखों के सुरक्षित भंडारण परवाने एवं बिक्री की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी अतुल बस ने पुलिस अधीक्षक चंद्रजीव नाथ सिन्हा के साथ पटाखा गोदाम हाथरस का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने गोदाम में पटाखों के भंडारण की व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा उपकरण, फायर हाइड्रेट, पानी की टंकी, प्रेशर पंप तथा अन्य सुरक्षा संसाधनों की बारीकी से निरीक्षण किया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई। लीजिए सुनिए संवेद।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय है ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण। आलेख वाचन शरद सोनी का है।
4: देश में बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों के विपरीत बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। बिजली चोरी रोकने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके आम आदमी तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जाने अनजाने हमारी ही लापरवाही के कारण आज हमें विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमारी लापरवाही इसी तरह बरकरार रही और हमने बिजली का अपव्यय इसी तरह किया तो वह दिन दूर नहीं जब हमें भी अन्य शहरों और राज्यों की तरह विद्युत कुछ घंटों के लिए ही प्राप्त हो। श्रोताओं, हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि बिजली की बचत करने के साथ साथ हमें पर्यावरण को भी बढ़ावा देना होगा। कहने का मतलब है, पेड़ पौधों को भरपूर मात्रा में लगाएं, ना कि इन्हें काटें, क्योंकि जहां पेड़ पौधे अधिक रहते हैं वहां का वातावरण ठंडा रहता है। साथ ही यदि हम कागज को बर्बादी करते हैं तो इसे भी रोकें, क्योंकि इसका भी सीधा प्रभाव विद्युत पर पड़ता है। श्रोताओं, जैसे कागज बनाते समय पुनः चक्रित कागज कम प्राकृतिक संसाधन और कम विषाक्त रसायन का उपयोग करता है, यह लगभग 2500 किलोवाट ऊर्जा की बचत करता है, साथ ही वायु प्रदूषण को भी कम करता है। आने वाले कल को अंधकार मुक्त रखने के लिए हमें प्रयास और ऊर्जा को संरक्षित करना होगा। ऊर्जा संरक्षण के करने होंगे उपाय। श्रोताओं, उपायों को अगर आप अपनाएं तो शायद हम काफ़ी ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण की बचत कर सकते हैं। जैसे जब घर या बाहर जरूरत न हो तो बल्ब बुझा दें, साथ ही ट्यूबलाइट बल्बों तथा अन्य उपकरणों पर लगी धूल को नियमित रूप से साफ करें। अपनी ट्यूबलाइटों व बल्बों को ऐसी जगह लगाएं जहां से प्रकाश आने में दिक्कत न हो। ऊर्जा बचाने के लिए CFL का प्रयोग करें। यह आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले बल्ब की तुलना में 2 से 3 गुना कम ऊर्जा की खपत करता है। घरों में पानी की टंकियों में पानी पहुँचाने के लिए टाइमर का उपयोग करके पानी के व्यर्थ व्यय को रोकने के साथ साथ विद्युत ऊर्जा की भी बचत की जा सकती है। साधारण 100 वाट के बल्ब के स्थान पर CFL का प्रयोग कर 75 से 80% तक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। साथ ही साधारण बल्ब की तुलना में लगभग 8 गुना ज़्यादा चलती हैं CFL। हमेशा ISI चिन्हित विद्युत उपकरणों का ही प्रयोग करें। ये सुरक्षित होने के साथ साथ ऊर्जा की बचत भी करते हैं। भवनों के निर्माण के दौरान प्लाट के चारों तरफ उपलब्ध भाग को पेड़ों लताओं से आच्छादित करके हम भवन को गर्म होने से बचा सकते हैं, जिससे भवन में रहने वालों को पंखे और कूलर इत्यादि कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। शादी विवाह जैसे सामाजिक आयोजन, जैसे धार्मिक आयोजन यथासंभव दिन में ही करें। दिन में सूर्य का प्रकाश का अधिकतम उपयोग करें। खाना बनाने हेतु बिजली के स्थान पर सोलर कूलर व पानी गर्म करने हेतु गीजर के स्थान पर सोलर वाटर हीटर का उपयोग करके हम बहुमूल्य विद्युत ऊर्जा का संरक्षण कर राष्ट्रहित में भागीदार बन सकते हैं। श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि विद्युत ऊर्जा का दुरुपयोग कतई न करके ऊर्जा को संरक्षित करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। हम जितनी ऊर्जा बचाएंगे यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ही ज़्यादा बेहतर है। ऊर्जा का संरक्षण कीजिए, बूंद बूंद से सागर भरिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आवो हवा। आज का विषय था ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण। आलेख वचन शरद सोनी का था। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज का विषय लेकर आए हैं खादी के संबंध में गांधी जी के विचार। प्रस्तुति आगरा केंद्र की है।

प्रस्तुत हैं खादी के संबंध में गांधी जी के विचार। 1900 मील लंबे और 1500 मील चौड़े क्षेत्र में फैले हुए भारत के लाखों देहातों के लिए यह ठीक और सुरक्षित होगा कि वे अपने भोजन की भांति अपने वस्त्र का उत्पादन भी अपने देहातों में स्वयं करें। ये देहात अनंत काल से चली आने वाली स्वतंत्रता को बनाए नहीं रख सकेंगे यदि वे जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उत्पादन का नियंत्रण स्वयं नहीं करते। हमें देहात की जनता को जागृत करना है, उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सकें और अपनी निजी शक्ति के आधार पर आगे बढ़ सकें। हाथ कते हाथ बुने कपड़े के पक्ष में विशेष दलील यह है कि वह आम जनता को उस निष्क्रियता तथा सुस्ती में से निकालने का अचूक साधन है जिसमें वह आज पड़ी हुई है। यह उनके भीतर सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति पैदा करेगा। खादी का प्रतिगज मूल्य मिल में बने वस्त्र की अपेक्षा महंगा हो सकता है, परंतु कुल मिलाकर देहाती जनता की दृष्टि में वह सबसे अधिक आर्थिक लाभ की एवं व्यवहारिक योजना है जिसकी कोई होड़ नहीं कर सकता। केवल इसलिए नहीं कहना कि मैं कहता हूं, बल्कि इसलिए कि यह एक जरूरी काम है। आप चरखे के महत्व को अच्छी तरह समझ लें। विद्यार्थियों को हमारे देश की गरीबी का ध्यान होना चाहिए। हमारे गांव किस प्रकार उजड़ते जा रहे हैं यह वे स्वयं जाकर अपनी आंखों से देखें। भारत की विशालता और जनसंख्या की उन्हें जानकारी हो। उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि वह क्या चीज है जो लोगों को इस गरीबी में कुछ सहायता दे सकती है। उन्हें सिखाया जाए कि जो चीजें गरीबों को नहीं मिल सकती उन्हें वे भी लेने से इनकार कर दें। तब चरखे का महत्व उनकी समझ में अच्छी तरह से आ सकेगा। खादी संगठन चातुर्य के अनंत बीजों से भरी पड़ी है, क्योंकि इसकी जरूरत संपूर्ण देश को है। लाखों करोड़ों को यह रोजी भी दे सकती है और उन्हें संगठित करके एक शक्ति का निर्माण भी। आप खादी नहीं पहनते इसका कारण यह नहीं कि आपकी खोपड़ी उल्टी है, बल्कि इसलिए कि आपको देश की गरीबी का दर्शन और भान नहीं है। पर मैं कहता हूं कि हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको दिन में एक बार भी पेट भर खाना नहीं मिलता। खादी उन्हें खाना देने के लिए है। मैं जानता हूं कि खादी दूसरी वस्तुओं की होड़ में खड़ी नहीं हो सकती। जिस प्रकार सत्याग्रह की तुलना दूसरे शस्त्रों के साथ नहीं की जा सकती, खादी खेती का सहायक और साथी पेशा है। लाखों करोड़ों बुनकरों के लिए तो यह प्राण के समान है। जब तक हम गांव से बेकारी को निर्मूल नहीं कर देते, हमने चरखे को उसका अपना स्थान दे दिया, यह नहीं कहा जा सकता। खादी पहनते वक्त उसका अर्थ हमारे ध्यान में रहना चाहिए। जब भी हम पहनने के लिए कपड़े

उठाएं। हमें दरिद्र नारायण का स्मरण हो जाना चाहिए जिनके लिए हम खादी पहनते हैं। हमारे अंदर यह भावना होगी तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप सादगी आ जाएगी। खादी भद्देपन का नहीं, सादगी का प्रतीक है, गरीबों का पहनावा है। यह एक पुराने उद्योग को पुनर्जीवित करती है। विधवा की उजड़ती गृहस्थी के लिए यह आशा की एक किरण है। जिनको इज्जत के साथ कोई दूसरा काम नहीं मिल सकता, वे इसे ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्र के बेकार समय का इसमें उपयोग हो जाता है। खादी शहरों और गांवों के बिगड़े और स्वाभाविक संबंधों को सुधारने का काम करती है। खादी का मतलब है असीम धीरज और खादी भावना का अर्थ है असीम श्रद्धा। ये थे खादी के संबंध में गांधी जी के विचार। और आइए अब सुनते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी के स्वर में बापू का ये प्रिय भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी ही चर्चा। आज का विषय था गांधी, खादी के संबंध में गांधी जी के विचार। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे निम्मी गुप्ता के गाए भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भजन, कलाकार थी निम्मी गुप्ता। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम बरसाने में बजत बधाई कीरत ने राधा जाई। प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है। कार्यक्रम का संयोजन किया है OP सिंह ने।

ब्रज की पावन धरा से आप सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लिए चलते हैं बरसाना की गलियों में और श्री जी

के धाम। जी हाँ, दूर दूर से श्रद्धालु श्री जी का जन्मोत्सव, श्री जी का प्राकट उत्सव मनाने के लिए बरसाना धाम में पधारे हैं। यहाँ तक कि रावल धाम में भी श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है, क्योंकि सब उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब होगा श्री जी का प्राकट्य।

0: प्रेम भक्ति और समर्पण की उस दिव्य परंपरा का उत्सव है राधा अष्टमी का ये पावन पर्व। श्री जी जिनके बिना श्री कृष्ण की लीलाएं भी अधूरी प्रतीत होती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाए जाने वाला यह पर्व ब्रजभूमि में विशेष श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बरसाना की गलियों से लेकर वृंदावन के मंदिरों तक हर ओर राधे राधे का मधुर स्वर सुनाई देता है। राधा रानी केवल ब्रज की आराध्य नहीं बल्कि प्रेम करुणा माधुर्य और भक्ति की साकार अभिव्यक्ति हैं। आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानेंगे राधा अष्टमी का आध्यात्मिक महत्व, मंदिरों में होने वाले आयोजन, दर्शनार्थियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएं और इस महोत्सव में प्रशासन और समाज की सहभागिता के विषय में भी। ब्रजमंडल में राधा अष्टमी के अवसर पर बरसाना का श्रीजी मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। श्रीजी मंदिर में विराजमान राधा रानी के दर्शन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्तों के लिए यह अवसर केवल दर्शन का नहीं बल्कि अपनी आराध्या के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने का होता है। आइए इस संदर्भ में जानते हैं मंदिर के सेवायत श्री संजय गोस्वामी जी से।
1: बरसाना की राधा श्री यानी राधा जी के जन्मोत्सव की तैयारियां आजकल यहाँ विशेष तौर पर चल रही हैं और भादों की अष्टमी के दिन सुबह 4 बजे यहाँ पर ये राधा जी का जन्मोत्सव होगा, अभिषेक होगा यानी 19 तारीख की सुबह 4 बजे। 18 तारीख की रात्रि को यहाँ पर भारी संख्या में भीड़, लगभग अब की बार ऐसा उम्मीद है कि 20-25 लाख दर्शनार्थियां दर्शन करने आएंगे। और ये देखते हुए कि यहाँ की व्यवस्थाएं बनाने के लिए शासन और प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं, लाइटिंग की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, परिवहन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सजावट ऐसे किया गया है जैसे किसी के घर में पुत्री का जन्म होता है, उसी तरह हम सभी लोग यहाँ के इस पर्व को मनाने जा रहे हैं। और प्रकाश की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यात्रियों के आने जाने के लिए भी परिवहन की व्यवस्था की गई। रही बात, चूंकि राधा जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, 27 दिन के मूल में थे जिस समय राधा जी का जन्म हुआ था, उससे पहले चूंकि हम गोस्वामी समाज के जो पुजारी लोग होते हैं 2 बजे गर्भगृह में जाते हैं, 27 कुओं के जल, 27 वृक्षों की पत्तियां, उनको लेकर के राधा जी का मूल शांत कराया जाता है और 2 घंटे करीब उसमें लगते हैं मूल शांत कराने में, हवन इत्यादि किया जाता है। उसके बाद सुबह 4 बजे यानी 19 तारीख को सुबह 4 बजे हम गोस्वामी जन, पुजारी जन यहाँ जगभवन में ला करके आम जनता के लिए यहाँ उनको दर्शन के लिए, अभिषेक के लिए लाते हैं। और ये

0: अभिषेक भी देखते होंगे, चूंकि मान्यता बहुत बढ़ गई है, हर आदमी चाहता कि मुझे राधा जी के जन्म की एक झलक मिल जाए तो मेरा जीवन चकाक हो जाएगा, तो उसे करीब एक घंटे तक यहाँ पर अभिषेक कराया जाता है और दर्शनार्थियों की भीड़ ज्यादा रहती है और लालायत रहते हैं, उसे 10-15 मिनट यानी 15-20 मिनट भी बढ़ाया जा सकता है। इसके देखते हुए, भीड़ को देखते हुए यहाँ पर लाइव दर्शन की भी व्यवस्था की गई है, जो लोग वृद्ध हैं, असहाय हैं, बच्चे हैं, वो नहीं जा पाते हैं, उनके लिए लाइव दर्शन भी यहाँ से प्रसारित किया जाएगा। यहाँ थाना की विशेष महत्व बात ये है कि यहाँ की रज और यहाँ के जन्म को देखते हुए कहते हैं, मुक्त कह गोपाल सो मेरी मुक्त बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त कह जाए। राधा जी के जन्म की जो तैयारियां चल रही हैं उसको देखते हुए हर आदमी ये चाहता है कि मैं एक बार राधा जी के जन्माभिषेक में उपस्थित हूँ, मेरी उपस्थिति लगे, यहाँ से नहीं तन से न लगे तो कम से कम मन से मेरी उपस्थिति लग जाए तो मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। यहाँ पर इंद्रदेव साक्षात यहाँ दर्शन कराते हैं और अब की बार ऐसी संभावना है कि इंद्रदेव जिस समय राधा जी का अभिषेक होगा उस समय अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, हो सकता है हल्की हल्की फुहारें आएंगी, तो इंद्रदेव के भगवान हमारे इष्ट देव राधा जी के जन्माभिषेक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 25 लाख की आबादी आने के बावजूद भी यहाँ पर ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होती है, क्योंकि राधा जी का जन्म जो होता है वो राधा जी की विशेष कृपा होती है। राधा जी हम सबकी, किसी की माँ है, किसी की बहन है, बिना संबंध बनाए इष्ट देव से हमारा संपर्क नहीं हो पाता है। कुछ लोग राधा जी के जय जयकार लगाते हुए आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और यही चाहते हैं कि हमारे जो है राधा जी के प्रतिवर्ष जो अभिषेक हो उसमें हमें उपस्थिति का मौका मिले
1: जी। और अभिषेक की हमने बात की, तो अभिषेक में क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, किस किस पदार्थ से अभिषेक किया जाता है?
0: अभिषेक यहाँ पर दूध, दही, घी, शहद, इस सभी पंचामृत बना करके, गंगा जल इत्यादि मिला करके यहाँ पर अभिषेक कराया जाता है। करीब 2-2.5 कुंटल दूध होता है, 1 कुंटल दही होता है, गंगा जल होगा, शहद करीब 5 किलो होगा, उसको मिला करके अभिषेक कराया जाएगा। उस प्रसाद को जब करुणामृत होगा उस प्रसाद के लिए हर आदमी लालायत रहता है, इससे उनके मुक्ति का साधन मिलता है कि हमें ये प्रसाद मिले और बरसाने में आकर के क्या रहे। 27 कुओं का जल आएगा, क्यों मूल नक्षत्र होता है, 27 वृक्षों के फूल पत्तियां आएंगी, जिससे राधा जी पर जो मूल है, मूल नक्षत्र पैदा हुई थी, मूल नक्षत्र खत्म हो जाएगा, सारी अलय वलय खत्म हो जाएंगी, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति दर्ज हो।

0: किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन की सफलता केवल उसके धार्मिक वैभव से नहीं बल्कि दर्शनार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं से भी जुड़ी होती है। राधाष्टमी जैसे महापर्व पर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए प्रवेश और निकास के मार्गों का सुव्यवस्थित संचालन, कतारों का प्रबंधन और भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था आवश्यक होती है। प्रशासन के द्वारा इस पर्व के उपलक्ष्य में विशेष व्यवस्थाओं के संदर्भ में जानते हैं जिलाधिकारी श्री सीपी सिंह जी से।
1: राधाष्टमी का त्यौहार 19 सितंबर को बहुत ही धूमधाम भव्य और दिव्य तरीके से बरसाना में मनाया जाएगा। मैं चंद्रप्रकाश सिंह जिलाधिकारी मथुरा अपने सभी ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जो प्रशासन द्वारा पुलिस के द्वारा नियम कानून लागू किया गया है उसका पालन करें, धैर्य रखें। जो होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं उनमें इंतजार करें, जब उनका मौका आए तभी दर्शन करने के लिए जाएं। इसके अलावा जहाँ जहाँ ट्रैफिक आदि के स्थान रोकने के लिए जो पार्किंग वगैरह बनाई गई है वहीं अपने वाहन पालन करें, अपने सामान का, अपने जूता चप्पल का अपने जहाँ रुके हुए वहीं छोड़ करके जाएं, ताकि दोबारा चूँकि एंट्री एक तरफ से हो रही है, एग्जिट दूसरी तरफ से हो रही है और काफ़ी लंबा है, तो सब लोग ये नियमों का पालन करें। और मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से, हम सब के सहयोग से मेला और राधाष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छ बरसाना, हरित बरसाना और हरित राधाष्टमी, ये हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।
0: ब्रज में किसी शुभ अवसर पर बधाई देना आनंद और मंगल की अभिव्यक्ति है। राधाष्टमी के पावन पर्व पर बधाई गायन भी होता है। बरसाना और नंदगांव के गोस्वामी समाज के बधाई गायन परंपरा में रसिक कवियों के पदों, ब्रजभाषा की मधुरता और पारंपरिक संगीत का विशेष स्थान है। इन्हीं विशेषताओं को आइए जानते हैं श्री मदन मोहन गोस्वामी जी से।
2: बरसाने में जो राधाष्टमी उत्सव है वो 19 सितंबर को मनाया जाएगा, उससे पहले समाज गायन में जो प्रारंभ हो गई एकादशी से बधाई चल रही है और आजकल सुबह 4 बजे राधा रानी की बधाई मंदिर प्रांगण में होती है। वहाँ अनेक प्रकार की बधाइयां, जो आनंद है वो अलग तरह का होता है। जैसे बरसाने आज बरसाने बजी बधाई, श्री वृषभान गोपर के महलन प्रकृति राधा लाई, यह प्रकार की बात बधाई गायन जा रही है। और समाज आज का जो मंगल था ना, श्री वृषभान के हो आनंद मंगल भीर, देश देश के भिक्षु आए पढ़त बरद आभीर, आज का मंगल गायन हुआ है। 4 बजे से प्रारंभ हुआ और 5 बजे तक चला है वो, उसमें आज यही आनंद हुआ है। देश देश के भिक्षु आए पढ़त बरद आभीर, जन्म संयो से कुंवर को भिक्षु आए धाए, और देश देश के गुण अब अपने लाए भेंट बनाए, एक सुआ हाथ बढ़ावे राधे को सिवा सुनावे, तो तब रीज भान जीव ताको।

0: के पेजन दीवता को क्यों से लाल और हर रंग हरे हो और ग्रीवा तो पच रंग बोलत मुखसों श्री राधा मोहन अक्षर पड़त न भंग या प्रकार की बधाई गायन भयो। बाकी पश्चात श्री राधा रानी को बधाई गायन में आशीष योग्य हो। चिरजीव वृषभान दुलारी, चिरजीव वृषभान दुलारी, आनंद शोभा की संपत्ति प्रकृति ब्रजमाही, चिरजीव और श्री राधा श्री वृषभान दुलारी या प्रकार को आनंद बरसे हो और अष्टमी को आनंद बरसे हो। या प्रकार की आनंद को जो सब है बरसाने के अलावा वृंदावन में भी होए, रावल में भी होए, लेकिन जो आनंद बरसाने में है वो कहीं नहीं है। बरसाने की महिमा तो सब जगह गाई गया है। बरसाने हो जानो नहीं कटो न राधा नाम तो तेने जानो कहा ब्रज को तत्व महान। या बरसाने के वास की आस करें से उसे ताकि महिमा को कहे या कृष्ण धरे सकी वेश। या प्रकार के भाव से संतन ने जो दर्शन किए, भावुक ने जो दर्शन किए, उन लोगों को आनंद आज हम वाणी में दिखाई दे है। यहाँ नृत्य प्रति शाम के समय श्री राधा जी की बधाई गायन हो, समाज बैठे है गोस्वामी समाज और वहाँ आनंद बरसे है
1: जी। वहाँ कुछ नृत्य का भी गोपी भाव में
0: हाँ वो भी होता है। सखियाँ जो आती है ना हमारे यहाँ की सखियाँ रात को शाम को नाचती हैं और जो जो मृदंग बजती है, क्योंकि हमारी समाज जो है मृदंग और झांझ पर होती है केवल, और होली की समाज ढप और मृदंग और झांझ पर चलती है। आजकल की समाज मृदंग और झांझ और वो पक्के रागों की है, शास्त्रीय संगीत में है, जो कुछ भी है वैसे नहीं है। दस्या गायन नहीं होते वहाँ, पद गायन होते हैं और जो शास्त्रीय संगीत के हैं उसी भाव से मृदंग बजती है और मृदंग के तान पर वहाँ नृत्य खूब होता है। महिलाएं खूब नाचती है, सखी भाव से नाचती है कि बरसाने की सब सखी भाव ही है। हम लोगों को भी नंदगांव वाले सखी भाव से देखे हैं, जब हमारा नंदगांव उत्सव मनाने जाते जन्माष्टमी तो सीधे गाते ये जुर्म चली है बधावा नंद महलवर ये सुंदर ब्रज की बाला। तो हम लोगों को सुंदर ब्रज की बाला कहा जाता है नंदगांव में
1: जी।
0: यहाँ मेरे चली है बधावन नंद महलगर ये सुंदर ब्रज की बाला, कंचन थार हार कंचन के और कंचन ज्योतिभाई माला, या प्रकार के भाव से नंदगांव वाले काम है। वो हमको सखी भाव से देखे हैं, कभी वो सारे भाव से देखे कभी वो सखी भाव से देखे, दो ही भाव उनके, या तो सारे या उनका सखी भाव है। वो सीधे सीधे बरसाने में आके गाँव में बरसाने में असल ससुरार हमारो न्यारो ना तो दो लख तो गैया दई और तीन लख दई ब्याई गाय। क्या प्रकार का भाव है बृषान बाबा के लिए, वो ससुर माने हैं राधा रानी के पिता को मान करके, वो आज भी हमारो न्यारो ना तो दुनिया में न्यारे अलग नाते हैं, लेकिन नंदगांव बरसाने को जो ना तो है वो अलग तरह को, उनके पुरखा ब्याह जो खामा तो पुरखा यही भी आए और हम ही यही भी आए, ऐसी प्रकार की बात कर रहे हैं वो नंदगांव के सखा लोग, उनका भाव यही प्रकार को हो।
1: राधाष्टमी के पावन पर्व पर बरसाना के हर घर में विशेष रूप से क्या कुछ उस दिन रसोई में पकाया जाता है और क्या कुछ आयोजन होते हैं?
0: देखिए यहाँ तो सब मिष्ठान बने लाली को जन्म है ना, यहाँ वैसे व्रत को उत्सव तो मनाया जाए, व्रत 8 दिन के व्रत लोग मना में है, साधु संत ब्रजवासी लोग वैसे 8 दिन को व्रत करें। नंदगांव में जो कृष्ण जन्माष्टमी है बाको व्रत एक दिन को ही मानो जाए अष्टमी को, लेकिन यहाँ राधाष्टमी व्रत को तो पड़वा से लेकर अष्टमी तक माने हैं। बहुत से संत लोग कर रहे हैं, ब्रजवासी भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, पारिवारिक लोग कर रहे हैं, लेकिन परिवार में ऐसा नहीं है, केवल लोग व्यक्ति लोग करते हैं, महिलाएं नहीं करती राधाष्टमी व्रत को। और वहाँ पकवान बनाए जाए, हर तरह की चीज बने, 56 भोग बने पूर्व के प्रकार से, क्यों लाली को जन्म तो लाली को जन्म, राधा रानी को जन्म तो क्या प्रकार से बरसाने को जो उत्सव है ना वो उमंग के साथ हो, उल्लास के साथ हो और वो प्रमुदित है जाए, सब आह्लादित है जाए, सभी तैयारी प्रारंभ पहले से है जाए, सबको बुलाने के लिए कृपा कर पधारो और राधाष्टमी है, सबको नोत होते हैं बैठे बैठे फोन पर और कब पधार ये पधारिये ना राधाष्टमी 19 सितम्बर पधारो, तो सबको नोत देते हैं, कृथा खान पान की व्यवस्था अच्छी होगी, स्वागत सत्कार हो गए, यहाँ पर काफी भाव तो भी यहाँ बने हुए।
2: राधाष्टमी के उत्सव का विस्तार बरसाना और आसपास के लीला स्थलों तक दिखाई देता है। इसी परंपरा में आयोजित होती है बूढ़ी लीला जिसका महोत्सव 7 दिन तक चलता है। ब्रज में बूढ़ी लीला के नाम से प्रसिद्ध यह आयोजन राधा कृष्ण की लीलाओं के पारंपरिक मंचन से जुड़ा है। इसे केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि अनेक लीला स्थलों पर होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला के रूप में देखा जाता है। आइए जानते हैं श्री मदन मोहन गोस्वामी जी से।
0: तो बरसाने को तो लीला ही लगे, ताकि साकरी गली जहाँ केवल एक व्यक्ति के तो जा सके कि आ सके।

0: वहाँ कृष्ण ने आकर मटकी फोड़ी है, वो स्थान बने हुए हैं। माँ तो तेरस के जो लीला होगी ना, नंदगांव वाले आएंगे मटकी फोड़ेंगे, तो उनकी सारी नंदगांव भारों की लीला यही होती है। ये काशी को चोटी बंधन लीला होगी, उसे नंदगांव वाले कोई नहीं आएंगे, क्यों सबकी चोटी बांधी जाए यहाँ, वो भाग चले आ रहे आप अपनी चोटी बांधी जाए। और तेरस के दिन आकर के 24 तारीख को वो आएंगे नंदगांव वाले सांकरी गली में, रस्या गायन करेंगे और अनेक प्रकार से नाचेंगे कूदेंगे, उनको ही आनंद है। उनकी कृष्ण उनको गोदी में लेके चले, राधा रानी बरसाने वाले लेके चले, तब जाकर माँ मटकी गोदी जागोगे। माँ आज भी वो चीज है जो पहले से ही आ रही पुरातन से, द्वापर योगिन लीला को जो आनंद है वो बरसाने में प्राप्त हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
0: और जयवर्वन की जो लीला है वो अलग तरह की है, मोरकुटी है, बिलासगढ़ है, वो अलग अलगानंद की लीला है।
1: अच्छा, वहाँ किस प्रकार की लीला होगी?
0: हाँ हाँ, जैसे अष्टमी जहाँ लीला हुई जन्माष्टमी राधाष्टमी हो जाएगी, नवमी को मोरकुटी पे लड्डू फेंकने लीला होगी वहाँ। अच्छा। मोर बन के श्री श्याम सुंदर नाचेंगे वहाँ, ये मोरकुटी स्थान है जयवर्वन में। नवमी को दिन दोपहर को वहाँ श्री श्याम सुंदर स्वयं जाकर के मोर बने हैं और मोर बन के नाचे हैं, और कम से कम 100-200 मन लड्डू फेंके हैं वहाँ जाकर के। ये मोरकुटी लीला 100-200 मन लड्डू, ये आनंद होगा। ब्रजवासी ब्रज गोपजन श्रद्धालु भक्त प्रेमी जन जितने भी यहाँ में लड्डू फेंकने की लीला नवमी को हो। दसवीं को बिलासगढ़ पर रास विलास हो, बिलासगढ़ जो भगवान श्री कृष्ण की आनंदमय लीला का स्थान है वहाँ बिलासगढ़ पर हो दसवीं के। एकादशी को गाजीपुर में डोंगा पड़े हैं प्रेम सरोवर में, और द्वादश को बरसाने में शाम के समय प्रयागराज में डोंगा पड़े हैं, और दोपहर में राधा रानी और ललता जी को ब्यावला ऊंचे गांव में हो है। ये वहाँ की लीला है, श्री राधा रानी ललता जी के साथ में ब्यावला हो
1: जी।
0: ललता जी के साथ में श्री श्याम सुंदर ने यहाँ लीला करी है, तो वहाँ चित्रशला बनी चित्रशला है वहाँ, वहाँ जाकर उनको ब्यावला हो। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने श्री राधा रानी कृष्ण को विवाह करायो, वायु प्रकाश से ललता जी को श्री कृष्ण को विवाह करायो। ये दसवीं की माँ की द्वादशी की लीला है, और 13 को मटकी लीला हो, 14 को जाकर के कदम खटी लीला हो, और पूर्णमासी में महाराष्ट्र राधा बाग में हो। ये 8 दिन की लीला चले हैं अष्टमी के बाद, पूर्णमासी लीला समापन है जाए, जैसे हम बूढ़ी लीला के हैं बरसाने में, सब बूढ़ी लीला को आनंद है।
2: राधाष्टमी का यह पावन पर्व ब्रज में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ब्रजवासी ही नहीं पूरे भारतवासी भी ब्रज को सुंदर, साफ, स्वच्छ और हरितमय देखना चाहते हैं। इसीलिए ब्रजवासी इस दिन पर विशेष रूप से वृक्षारोपण करते हैं, और ब्रज में जितने भी कुंड हैं, सरोवर हैं या यमुना जी हैं, वहां जाकर पूजन करते हैं, शपथ लेते हैं कि हम अपने इन कुंड सरोवरों को स्वच्छ बनाएंगे। आइए इस संदर्भ में जानते हैं पर्यावरण गतिविधि के महानगर संयोजक श्री विनय कुमार जी से।
3: जैसे कि आपको पता है कि हमारे पूरे ब्रज में राधा अष्टमी का पर्व बड़ा ही एक विश्वख्यात है, तो अपने पर्यावरण की दृष्टि से अपने मथुरा क्षेत्र में श्री राधा अष्टमी के दिन ये एक प्लाश है और कुंड पूजन का आयोजन होता है, जिसका उद्देश्य जो हमारे ब्रज में जितने भी कुंड हैं, जलाशय हैं, उनके सुरक्षा एवं उनके संरक्षण हेतु लोगों को जागरूकता बढ़े। तो प्रतिवर्ष राधा अष्टमी के दिन जो है कुंड पूजन और जलाशय पूजन का कार्यक्रम रहता है। तो का जो उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि हमारे जो जल के स्रोत हैं उसके प्रति जनमानस की जो है एक आस्था बढ़े, और जो हमारे जो भूमिगत जो जल है जो उनके स्तर में वृद्धि हो, जो कि इस बार जो है 19-20 सितंबर 2026 को शनिवार रविवार को एक कार्यक्रम इस बार ये पूरा ब्रज क्षेत्र मनाने जा रहा है, जिसमें प्रत्येक गांव, बस्ती और निकटतम जहाँ भी जलाशय हैं, कुंड हैं, तालाब हैं, वहाँ पर ये पूजन रहेगा, और जो कि बड़े ही बड़े स्तर पर इसको मनाया जा रहा है, और बड़ा ही अभी से इसकी तैयारियां चल रही हैं, और जो कि जिसका समय प्रातः 8 बजे से ये 4 बजे तक रहेगा, और जनमानस इसमें गत वर्ष की बात इस बार बहुत इसमें सहभागिता से बड़े उत्साह से लगा हुआ तैयारियों। जी बहन जी
1: जी, तो अभी कोई विशेष स्थान भी इसके लिए कुछ चिन्हित किए गए हैं कि कहाँ कहाँ विशेष रूप से ये आयोजन होने हैं?
3: वैसे तो ये शुरुआत इसकी ब्रज क्षेत्र से हुई थी, इस बार जो है पूरे प्रांत स्तर पर ये आयोजित हो रहा है, और जो हमारे मथुरा शहर में या मथुरा के आसपास जो है देखा होंगे बहुत सारे हमारे कुंड हैं,

तो उस उन सभी कुंडों पर ही हमारे कुएं की व्यवस्था रहेगी। शायद ऐसा कोई कुंड तालाब नहीं है जो इस बार छूटे आए, सभी कुंडों पर कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था बनी हुई है, सभी स्थानों पर कुएं होगा।

तो श्रोताओं, राधाष्टमी का यह पावन उत्सव हमें ब्रज के प्रेम, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। बरसाना और नंदगांव के बीच बधाई की परंपरा हो या राधा रानी के विशेष दर्शन, बूढ़ी लीला महोत्सव हो या पारंपरिक मंचन, इन सभी में एक ही भाव प्रवाहित होता है, वह है प्रेम का भाव, समर्पण का भाव और वह है श्री राधा कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव। आइए इस राधा अष्टमी पर हम सभी यह संकल्प लें कि ब्रज की इस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करेंगे, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और समाज में प्रेम, सद्भाव और सेवा की भावना को मजबूत करेंगे। बरसाना की लाडली श्री राधा रानी और नंदगांव के नंदलाल श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे। आप सभी श्रोताओं को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

अभी आप सुन रहे थे एक विशेष कार्यक्रम बरसाने में बजत बधाई कीरत ने राधा जाई। प्रस्तुति रश्मि शर्मा की थी, संयोजक थे ओपी सिंह। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे जुनूनियत फिल्म से लिया ये गीत। इस गीत को अपने सुरों में पिरोया नीरज श्रीधर, तुलसी कुमार और मीत ग्रोस ने।

मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म में अभी आपने सुना शान, नीरज और इस साथियों के सुरों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

अभी आप सुन रहे थे किक फिल्म से लिया ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ दी मोहम्मद इरफान ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तनिष्क बख्शी, फ़हीम अब्दुल्ला और साथियों की आवाज़ में फिल्म सैयारा से।

श्रोता साथियों, हमें खेद है किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आपको आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हम नहीं सुनवा पा रहे हैं। लीजिए, पेश है फिल्म संगीत।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

साथियों, आपका स्वागत है फिल्म संगीत के इस खूबसूरत से सफर पे। किसी ने क्या खूब कहा है, हुनर की कोई जात नहीं, मेहनत का कोई लिंग नहीं और सम्मान की कोई कीमत नहीं होती। आज है 18 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। साथियों, ये एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि जब काम की जिम्मेदारी और उसका मूल्य समान हो तो मेहनत की कीमत तय करते समय स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए।

तो मेहनत की कीमत तय करते समय स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हम बात कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ वेतन की नहीं है, बात है सम्मान की, अवसर की, आर्थिक स्वतंत्रता की और उस मेहनत को पहचान मिलने की जो अक्सर दिखाई भी नहीं देती। और इसी सोच के साथ आज हम बात करेंगे कि क्या बराबर काम की बराबर कीमत मिल रही है, महिलाओं की मेहनत को हम किस तरह देखते हैं और घर से लेकर दफ्तर तक आर्थिक बराबरी क्यों जरूरी है। तो आइए गीतों के सुरों के साथ शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को, बराबरी का हक सम्मान के साथ।

साथियों, समान वेतन का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को केवल एक जैसी तनख्वाह मिले। इसका अर्थ है यदि दो लोगों का काम समान या समान मूल्य का है तो केवल महिला या पुरुष होने के आधार पर पारिश्रमिक में अंतर नहीं होना चाहिए। ILO और इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वर्सेशन इसी सिद्धांत को मान्यता देता है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में महिलाओं की औसत कमाई पुरुषों की तुलना में अभी भी कम है। UN की 2026 की जानकारी में वैश्विक लैंगिक वेतन अंतर लगभग 20% बताया गया है। और साथियों, एक महत्वपूर्ण बात, बराबरी का मतलब एक रूपता नहीं है, बराबरी का मतलब न्यायपूर्ण अवसर है। अगर योग्यता, जिम्मेदारी, अनुभव और काम का मूल्य समान है तो सिर्फ लिंग के आधार पर किसी की मेहनत का मूल्य कम नहीं होना चाहिए। मेहनत का कोई मोल नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो हक है किसी का वो उससे दूर नहीं होना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पहचान कर्म से हो, मेहनत का सम्मान हर व्यक्ति के लिए एक सा होना चाहिए। साथियों, हमेशा जिंदगी में ये कहा जाता है कि घर के काम की कीमत कौन तय करेगा। श्रोताओं, हम अक्सर कहते हैं कि घर का काम तो काम ही नहीं है, वह तो जिम्मेदारी है। लेकिन जरा सोचिए, सुबह सबसे पहले उठना, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, बुजुर्गों की देखभाल, घर की सफाई, बीमार सदस्य की सेवा, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखना, इन सब में समय, श्रम और ऊर्जा लगती है। UN के अनुसार दुनिया भर में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अनपेड केयर वर्क पर काफी अधिक समय लगाती हैं। यह आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यूनाइटेड नेशंस इसीलिए आज का दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि काम पैसे में नहीं मापा जाता। क्या उसका कोई मूल्य नहीं होता? मूल्य होता है, और बहुत बड़ा मूल्य होता है। हाँ, घरेलू काम को नौकरी के वेतन की तरह सीधे बराबर करना अलग आर्थिक प्रश्न है, लेकिन परिवार और समाज में उस श्रम की इज्जत और पहचान होना बेहद जरूरी है। वो घर को संभालती है तो इसे आदत मत समझना, वो चुप रहती है तो इसे उसकी कमजोरी मत समझना। उसके हिस्से में भी सपने हैं, अरमान हैं, उसकी मेहनत को सिर्फ फर्ज कहकर कम मत समझना।

साथियों, बराबरी का रास्ता केवल कानून से नहीं बनता, इसके लिए जरूरी है नियुक्ति में निष्पक्षता, समान अवसर, पदोन्नति में पारदर्शिता, काम के मूल्यांकन की स्पष्ट व्यवस्था, वेतन में पारदर्शिता और सबसे बढ़कर पूर्वाग्रह से मुक्त सोच। साथियों, जब किसी महिला को अपने सपनों के लिए अवसर मिलता है तो उसका आत्मविश्वास केवल उसका नहीं रहता है, उसके आत्मविश्वास का असर पूरे परिवार पर पड़ता है।

श्रोताओं, किसी महिला की आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि वह परिवार से दूर हो रही है। कई बार आर्थिक रूप से सक्षम होना उसके परिवार के लिए और मजबूत सहारा बनने की क्षमता देता है, और किसी पुरुष का घर के काम में हाथ बटाना उसकी मर्दानगी कम नहीं करता। वह सहयोगी है, वो पहिए का वो दूसरा हिस्सा है जिसके बिना गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती, सुचारू रूप से चल नहीं सकती। यदि महिला आधी दुनिया का सच है तो उस आधी बाकी की दुनिया का सच पुरुष है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात ही अलग होती है, बल्कि यह बताता है समय हमें कि महिला की साझेदारी और जिम्मेदारी को पुरुष समझता है। साथ चलना ही रिश्तों की असली पहचान है। एक का बोझ दूसरे का भी समान है। साथियों, 18 सितंबर की बात हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल इक्वल पे डे की बात हम कर रहे हैं। ये दिन सिर्फ एक दिन के लिए बराबरी की बात करने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये सोचने का अवसर देता है कि हमारे घर, हमारे कार्यस्थल और हमारा समाज मेहनत का मूल्य किस तरह तय करता है। याद रखिए, बराबरी का अर्थ किसी को ऊपर उठाना नहीं, बल्कि किसी को अनावश्यक रूप से नीचे न रखना है। जिस हाथ ने घर को संवारा है उस हाथ का भी सम्मान हो, जिसने श्रम से जीवन निखारा है उस श्रम की भी पहचान हो। ना हो भेद मेहनत के मूल्य में, ना अवसरों में कोई दीवार हो, हर इंसान को उसके हुनर का, उसकी मेहनत का पूरा अधिकार हो। इसी खूबसूरत सी पंक्ति के साथ आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने आसपास के हर मेहनत कश इंसान की मेहनत का सम्मान कीजिए। और आइए अंत में सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।

साथियों, फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम अर्पण।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में फिल्म लगान के इस गीत को। गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और संगीत था एआर रहमान का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अर्पण। आइए सुनते हैं ये अगला फिल्मी भजन।

अभी आपने सुना फिल्म मिर्ज़ापुर के इस गीत को। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी जुनैद कुमार, कृष्णा लासिया, मुथायाला और तेजपाल ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला फिल्मी भजन।

अभी आपने सुना आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह को फिल्म गीत गाता चल के इस गीत के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला फिल्मी भजन।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म मुगले आजम के इस गीत के लिए। इस फिल्मी भजन को लिखा शकील बदायूनी ने और नौशाद ने दिया संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के इस गीत को। साथियों, फिल्मी भजन पर आधारित अर्पण कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS।

दूसरों की नकारात्मक बातों का अत्यधिक चिंतन मत कीजिए, क्योंकि वो चिंतन आपकी बुद्धि को खराब कर सकता है। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो, क्योंकि इच्छा वो बला है जो पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपने

नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ श्रोता साथियों आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गीत बात और SMS में, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

साथियों, अगर जिंदगी में कोई सही रास्ता दिखाने वाला सच्चा दोस्त है तो वो है अनुभव। अपमान मिलने पर अलग होना, रिश्ता कदम कर देना, या काम तो कोई भी कर सकता है कि हम अपने रिश्ते को ख़त्म कर दें किसी से भी, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थाम कर पर्वत के समान खड़े रहें तो इसके लिए बहुत बड़ा नायाब हृदय यानी साहस चाहिए, और वो बहुत ही कम लोगों के पास होता है। साथियों, बढ़ते हैं आपके संदेशों की ओर इन्हीं पंक्तियों के साथ, लेकिन आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश का ये पहला गीत आपकी नजर में।

साथियों, बढ़ते हैं आपके संदेशों की ओर। 11:45 पर दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से ये पहला संदेश हमें मिला है। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे अगले फरमाइशकर्ता फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार सौगा, मगरलोड छत्तीसगढ़ से। संदेश मिल चुका है हमारे पास। ये संदेश आया है श्रीमान भाई अरविंद कुमार जी का। साथियों, आप अपने नाम तो हमें भेजते हैं, उसके साथ साथ आप अपना पता भी हमें भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हमारे बाकी के श्रोता साथियों को पता चलेगा कि आप हमारे साथ कहां से जुड़े हैं। नेहरू चौक पैठड़ के डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल, बेबी सिया हमसे जुड़े। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, संगीता एकनाथ और चंदन जाधव का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, करुणा वर्मा। संदेश प्राप्त हुआ जमानिया जिला गाजीपुर के सुरेश जायसवाल और मिला दीपक स्वाति का। गमरिया जमशेदपुर से विपिन स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार भी हमसे जुड़ चुके हैं। जाकिर मुलाड़ी, सुमैया सुबान और समीर मुलाड़ी हमसे जुड़े। मुक्कम पोस्ट फुलचिंचोली तालुका पंठरपुर से आप हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास आया नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पीएस हाउकर निर्मला विशाल हाउकर। मलकापुर के नारायण इंगले, सोपान ताइडे, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता है मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा, हर्ष आहूजा आप हमसे भिलाई छत्तीसगढ़ से जुड़े। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा के मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल का संदेश भी प्राप्त हुआ। प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी गुजरात गांधी ग्राम से हमसे जुड़े। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ के दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का संदेश भी मिला। जुनैद मुजाबर, सबीहा मिखाइल, जैनब मुजाबर का संदेश हमें प्राप्त हुआ। गोविंदपुरा अहमदनगर से फातिमा कॉली श्रीरामपुर महाराष्ट्र के नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद का संदेश हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार के राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद, आशुतोष, अमिताभ, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। पंजाब रामटेके, यशोधरा, श्राव्या रामटेके, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से हमसे जुड़ चुके हैं। खरसावां झारखंड के सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर गौरव और समस्त नायक परिवार हमसे जुड़ चुका है। अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश, अधीरा इंगले का संदेश चितलवाड़ी अकोला से प्राप्त हुआ। हमारे अगले फरमाइश करता है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, कोटवा नारायणपुर बावा पट्टी बलिया से आप हमसे जुड़े। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर के प्रतीक राय और समस्त राय परिवार हमसे जुड़ चुका है। अगला संदेश हमारे पास आया है, हमें मेरठ कैंट से संदेश भेज रहे हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। स्वर्ण सिंह गिल।

गुरनूर और गुरलाल अविराज का संदेश हमें गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से मिला। आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला

अभी आपने सुना मोहम्मद रफी को फिल्म इज्जत के इस गीत के लिए। गीत को लिखा साहिर ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। गीत को लिखा था अनजान ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं अब हमारे श्रोता साथियों की फरमाइशी नाम। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल और राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह का संदेश हमें मिला है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। हमारे अगले फरमाइश करता है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, समस्त हाशमी परिवार हमसे जुड़ चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता है सौरव निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा, आप हमसे जुड़े हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का संदेश हमें पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से प्राप्त हुआ। अगले फरमाइश करता नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय हागे, वरवट, बकाल, बुलढाणा से आप हमसे जुड़े। उत्तम नगर दिल्ली के बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल का संदेश भी मिल चुका है। राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी, प्रियांशी, शाहूनगर, यवतमाल से हमसे जुड़े। अंजू नारंग, मोहित, राजेंद्र नारंग, लक्की, तानिया हमसे जुड़े हैं भटिंडा रोड मंडी डबवाली से। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, प्रमिला बंछोर का संदेश मिल चुका है। ग्राम पंचायत बठेना, पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हमसे जुड़े। हमारे अगले फरमाइशकर्ता सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम का संदेश हमें प्राप्त हुआ गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से। और हमसे जुड़ चुके हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी, अनिष्का और तन्मय गजबिये। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं प्रकाश रंभाड़े, भारती, जानवी, वैष्णवी, हर्षल रंभाड़े, काशी निवास, बंगाली, पंजा, नागपुर से आप हमसे जुड़े। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का संदेश मिल चुका है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही महराज जहां का संदेश हमें मिला आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। कंजडुडवारा उत्तर प्रदेश के मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव का संदेश भी मिला। फुटानी चौक, नरहन स्टेट के ललन मिश्रा, नूतन, अमन पारासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित भी हमसे जुड़ चुके हैं। संदेश प्राप्त हुआ तेलीपारा विलासपुर छत्तीसगढ़ के गुड़वंश श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक, बेबी आयुषी श्रीवास का। आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत, आपकी नजर।

अभी आपने सुना मुकेश कुमार को रानी रूपमती फिल्म के गीत के लिए। भारत व्यास ने गीत को लिखा और एस एन त्रिपाठी ने दिया संगीत। आइए साथियों पढ़ लेते हैं आपके संदेश। अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर हमसे जुड़े नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी भी हमसे जुड़े। अगला संदेश गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी, राकेश, ऋषिता, राजेश का कुंडलवाली महाराष्ट्र से मिला। हमसे जुड़ चुके हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब के राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा, तुलसी मस्कीन, बीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और डब्बू सम्राट का संदेश मिला। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान खुराना का संदेश भी प्राप्त हुआ। हमसे जुड़ चुके हैं गंडई पंडरिया से पवन कुमार, सेन प्रभा देवी, लकी, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन संदेश प्राप्त हुआ। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मान नाज अंसारी और गुड़िया बानू का। जुड़ चुके हैं हमसे मोताला महाराष्ट्र के विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, सैतन नलगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनी रुनीसा का संदेश भी मिला। बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा का संदेश हमें एकता कॉलोनी रोहतक से प्राप्त हुआ। साथ में जुड़े सीताराम कांगड़ा। अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ के माखन वर्मा, चांदनी, राहुल गोपी वर्मा का संदेश भी मिला। जुड़ चुके हैं हमसे भोपालगढ़ राजस्थान के धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, राजकुमार गुप्ता, विनीता, रविराज, गौरव कुमार, समस्त मित्रगण राजनगर मधुबनी बिहार से, छपरा दालदली बाजार के संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार, सर्वजीत और सुधांशु कुमार गुप्ता का संदेश भी प्राप्त हुआ। कृष्णा कॉलोनी हांसी के सुभाष योगी, सुशील, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं मुजफ्फरपुर बिहार के आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, संदेश मिल चुका है हमें ग्राम जखड़गांव अहमदनगर के मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल का और

अगला संदेश मिला गांधीनगर गुजरात के सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल और निशा राठौड़ का। आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत, आपकी नजर।

साथियों, इस गीत को हमने लिया है फिल्म इतिहास से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की। गीत को लिखा समीर ने, दिलीप सेन समीर सेन ने दिया संगीत।

0: साथियों, वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, आपसे अनुमति लेने का। चलते चलते बस यही कहूंगी कि जीवन में वही व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने संकल्प से आगे बढ़ता है। कठिनाइयां आपको रोकने नहीं, बल्कि आपकी शक्ति और धैर्य को पहचान दिलाने आती हैं। हर नया सवेरा एक नया अवसर है, इसीलिए बीते हुए कल की चिंता छोड़कर आज को पूरे विश्वास और उत्साह के साथ जिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अनुमति चाहती है आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत के अंतर्गत राझा गायन। कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी।
1: मैया राझे के पास आई और आकर के बोली, बेटा

0: कौन सो तो तेरो गांव है, का तेरो नाम है, कौन तेरे मैया बाप है। रांझो बोलो मैया हमें कछु ना मालूम, हम तो अंबर ने घेरे और धरती ने झेरे, न मैया की पतो ना गांव की पतो काऊ की पतो ना है। तो हीर की मैया हीर से का कह रही है,
1: कहा कह रही है भैया।

हे लाड़ो, हीर लाल गुदरेन में ना छुपे, तू जहां से लाइए जाए मैं लौटा रिया। बोले मैया मोए का पतो, मैं कहां लौटार बे जाऊं, जो तो वैसे ही बता रहा हूं, ना मेरो गांव है, ना मेरो नाम है, ना मेरे मैया है, ना बाप है। तो मैया बोली, बेटा ग्वारिया एक बात सुन ले हमारी, कि हमारी जो ग्वारिया जा समय खिरक में है, बा के पास कोठरी है, तो कोठरी ना मिलेगी, गैयन के बीच में ही रहनो पड़ेगा। बोले मैया हमें तो मंजूर है, कहूं रख ले, हमें तो गैया चरानी और गैया देखनी है। तो बोले ठीक है बेटा। जब मैया भो जाई, हीर चलवे लगी, तो रांझो बोलो, मैया एक बात तो मेरी सुन जा। बोले का बात है बेटा? बोले मैया हम केऊ दिन आके भूखे हैं, तेरे घर में अगर कछु होए तो हमें खाए बेकू दे दे। मैया ने हीर की भाभी से कही, बोले दे दे बेटा जाए कछु खावे के ताई। तो बोले मैया खावे की बात और सुन, हमें ओढ़वे बिछावे को तो चाहिए। तो बोले ठीक है। अब हीर की भौजाई गई, सबरी रसोई, सबरे बर्तन भाड़े सब देख लिए, मगर बाय खावे को कछु कहूं ना मिलो। तो घूमती फिरती इधर बिधर आरे पिंजरन में देख रही, तो एक कांसे के बेला में महेरी दिख गई, जाने के दिन की धरी भई, बापे फपड़ूनन जम रही, नाकते सूंघवे में दूर ते ही खट्टी लग रही। भौजाई ने ले करके और वो बेला बा के हाथ में दे दियो, हीर के में के ले रही, ले दिया अपने को आ रिया। अब हीर जब पौरी में आई, तो कबू माते यहां तक लौट आवे, यहां ते मां तक लौट के जावे, क्यों के भाई ये तो बादशाह को बेटा है, और जाने कै दिन की खट्टी महेरी है, जाए मैं खवाऊंगी तो जे अपने मन में कहा के गो। अब रांझो बोलो, चौ भगवान एक बात तो बता, इधर ते बेधर परकम्मासी लगा रही है, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, जो कछु है भैया ला, मैं तो भैया खा लूंगो। हीर ने शर्मी सौदा और बेला रांझे के हाथ में पकड़ा दियो, हाथ में पकड़ते ही रांझे फुरफुरी आई, बाने पढ़ करके बिस्मिल्ला, और बा महेरी को खीर बना करके पी गए, और कटोरा ऐसो चाट चाट के, चाट चाट के ऐसो कर दियो कि अभी नयो बाजार ते खरीद के आयो, क्या वो खट्टी महेरी और कांसे को बेला चमक गयो। हीर ने ले जाके मां रख दियो, तो भौजाई ने और मैया ने देखो, अरे बनने की भैया जे तो काऊ बाकई में नंगे भूखे घर को ठूको टूटो है, ये तो इतने दिन आगी खट्टी महेरी है, खाबो जारी जा बहु बा कछु उड़वे बिछावे, और दिया पोइन को वो आमे ना खर चुनी भूसी। तो बहु ने ले करके बा कोठरी में घुसी, तो पांच सात बोरी यो झाड़ के और रांझे के ऊपर पटकियाई, ले रे इन्हें उड़ ली और इन्हें बिछा लियो। मोहब्बत इससे कहते हैं, बादशाह का बेटा और टाट उड़ेगा और टाट को बिछाएगा। लौट करके आ गई रांझो खिरक में, आराम ते बिन बोरी नहीं बिछा करके, और अपनो आनंद ले रो, तो होबे काय भैया नेक सुनियो।

ऊपर वाले की लीला है, मालिक की झट बरसात आ गई, और बरसात भी बड़ी जोर की आई, तो ग्वारिया तो कुठरिया में सो रो है, वो तो गैयन के बीच में सो रो है। तो बरसात जब भई तो गैयन की पूंछ भीज गई और डांस भी पैदा है गए। तो जब गैयन को डांस खामे, बट डांस में पूंछ मारे मगर लगे रांझे में सटाक, इधर ते मारे तो इधर ते हंटर से पड़ रहे रांझो, बोलो यार का चक्कर में फंस गो, अच्छी मोहब्बत करी। तो रांझो हीर कुआ

0: का समझ रहो है कि मैं ही खिरक में भीज रहा हूं। अरे मैं भी गोख में खड़े है के देख ले, तर बतर रह रही हूँ, सबरी भीग रही हूँ। तो रांझो क्या कह रहे हो भैया?
1: क्या कह रहे हो?

0: नीचे आती है तो क्या देख रही है?
1: क्या देख
0: पौरी में पटमल भैया सो रहे हो और बड़ी भौजाई पंखा ते हवा कर रही है तो बाके हीर के पाम ठिटक गए। और भौजाई से क्या कह रही है भाभी भैया सुनवे की बात।

0: कार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मेरे प्रिय सुरताओ, रांझे ने पढ़ करके बिस्मिल्ला और खाक की चोटी मारी, बीच में मधुमक्खी बना लियो, नीचे उतार करके खिरक में और मधुमक्खी से और वाने हीर बना ली नी। जब हीर बन गई तो रांझे के ऊपर भेरा के पड़ी, बोले ए जे क्या तड़ तड़ तड़ तड़ लगा रखी है तेने, एक काम कर चौपड़ खेल ले। अजमत से चौपड़ आ गई, गोटी आ गई और सुन रांझे, अगर तू जीत जाता है तेरे हजारे में चल करके गोबर कूड़ो कंडा जैसे काम बतावेगो वैसे ही काम करूंगी, और अगर मैं जीत गई तो जई खिरक में रहना पड़ेगा। रांझो बोलो मंजूर है। चौपड़ बिछ गई, अब दोनों की तरफ से गोटी फेंक रही हैं। तो जब हीर गोटी फेंकती है तो रांझे के 70 पीर गोटी को पलट दें, और जब रांझो गोटी फेंके तो हीर की 72 हूर गोटी है पलट दें, हार जीत काऊ की ना है रही। इधर भाभी ने सोची कि कहूं ऐसा नहीं हो कि हीरा की अंगूठी चाट के मर गई हो नंद और मोह श्राप दे गई हो, चल करके तो देखना चाहिए। भौजाई जीना चल करके और 7 मंजिल जब मोती महल में आवे है तो कहूं नजर ना आई तो गोख को दरवाजा जो खुलो मिलो, जब गोख में से नीचे को झांको तो देखे तो दोनों जने चौपड़ खेल रहे हैं।
1: क्या बात,
0: भौजाई नीचे उतर के आई और पटमल भैया को कैसे जगा रही है, भैया
1: कैसे जगा रही है।

0: क्या बात है भाई, तेने आधी रात को सोते हुए हो जगा दियो, अभी तो थोड़ी देर नींद आई ढंग से, तो तेने मुझे जगा दियो। तो पटमल की घरवाली और हीर की भौजाई कहा कह रही है,
1: कहा कह रही है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत के अंतर्गत रांझा गायन। कलाकार थे भगवान दास अज्ञानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एचटीटी 40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। एचटीटी 40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे।

0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों को सीमित कर दिया गया है। बाजारों और शॉपिंग केंद्रों को रात 9 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इसके संभावित असर को देखते हुए वे इन कथित वित्तीय माध्यमों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी, समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 74,547 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23,336 पर था। 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ कल से जापान के आइचे नागोया में हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

अब से कुछ ही देर में यानी कि अपराह्न 1:10 पर समवे स्वरों में होगा देशगान। बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनितालोक दोपहर 1:15 से, जिसमें होगी चर्चा बरसाने में राधा अष्टमी विषय पर, साथ ही एक और अन्य चर्चा अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम प्रकट भई ब्रज में श्री राधा, आलेख और वाचन उषा पांडे एवं ज्योति शर्मा का, प्रस्तुति डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत की। अपराह्न 1:45 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। अपराह्न 2:30 पर एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युव वाणी के साथ, जिसमें आज की बात के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस एवं सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव रखें विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे कहानी मन की जीत।

प्रस्तुति होगी अरुण कुमार शर्मा की। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में ब्रज नव कथा भूहरिया की जानकारी देंगे कवि संतोष शर्मा। संध्या 6:15 पर।

फिल्मी व गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:50 पर। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे ICAR IIRMR रेडियो कृषि पाठशाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर। कार्यक्रम में सुनेंगे भेंट वार्ता सरसों की उपयुक्त किस्में तथा खेत की तैयारी। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अरुण कुमार प्रधान वैज्ञानिक ICAR IIRMR और इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। संध्या 6:31 पर संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी पेश किया जाएगा। रात्रि 8:00 विशेष श्रृंखला सेवा ही संकल्प है क्रम में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर। रात्रि 9:15 पर नवरंग का ले सकेंगे आप आनंद। रात्रि 10:00 सुगम संगीत व गीत भजन का लेंगे आप आनंद। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। कलाकार होंगे मुकेश बिहारी शर्मा, आप सुनेंगे इनका सरोद वादन। राग होगा जोग, तबले पर संगत देंगे गुलाम साबिर।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं मीनू अग्रवाल।

हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। FM 102.2 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मीनू अग्रवाल। संगीत है श्री कृष्ण, सुर है श्री राधे, शहद है श्री कृष्ण, मिठास है श्री राधे, पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। पहले तो आप सभी को बरसाने की लाडली के आने वाले प्रगटो उत्सव की यानी राधा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। हम सभी जानते ही हैं भाद्रपद का महीना शुरू होते ही व्रत और त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद श्री राधा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। वैसे तो राधा अष्टमी की धूम पूरे देश में होती है, लेकिन ब्रज और बरसाने की तो बात ही कुछ और है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी के मौके पर पूरे ब्रज और बरसाने को सजाया जाता है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और माट के राधा रानी मंदिरों को न जाने कितनी तरह के फूल पत्तियों

से सजाया जाता है। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में राधा जन्म की खुशी में सभी भक्त भक्ति में सराबोर हो जाते हैं और कहते हैं, राधा प्यारी ने जन्म लिया, राधा प्यारी ने जन्म लिया। ऐसी ही गूंज हर ओर सुनाई देती है। मंदिर में बनी हौदियों में हल्दी मिश्रित दही को इकट्ठा करके सभी भक्तों पर उड़ेला जाता है, जिससे सभी भक्त खुशी से झूमने और नृत्य करने लगते हैं। इस दिन बरसाना की भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध लाडली जी का मंदिर श्री जी मंदिर में विशेष आयोजन और भव्य श्रृंगार होते हैं। राधा जी के भोग के लिए मंदिर के पट बंद होने के बाद बधाई गायन होता है और मंदिर खुलते ही आरती की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि राधा रानी को प्रसन्न किए बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा रानी की आराधना से ही श्री कृष्ण स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं और इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, आज हम श्री श्री राधा रानी के जन्म उत्सव पर आपके लिए लाए हैं एक विशेष कार्यक्रम, प्रगट वही ब्रज में श्री राधा। आलेख व वाचन उषा पांडे और ज्योतिष शर्मा का है। प्रस्तुति डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत की है।

0: श्री राधा भाद्रपद मास के अनुराधा नक्षत्र में रावल ग्राम में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुई। ये साक्षात प्रेम, दया और सौंदर्य का जीवंत रूप है। वृषभानु कीरत नंदिनी करुणा का भंडार है। उपजेउ जासु अंश गुण खानी, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी। जिनके अंश मात्र से करोड़ों उमा रमा और ब्रह्माणियां अपना स्वरूप धारण करती हैं, जब वे कृपा बरसाने वाली बरसाना धाम में विराजती हैं, तो बरसाने वाली कहती हैं। वो जिस पर भी कृपा करती हैं, वो सब कुछ पा जाता है।
1: छोटी सी किशोरी जी के प्रथम दर्शन करने के लिए जब नंद बाबा और नंद रानी वृषभानु बाबा के महलों में आए, तो नन्ही सी कुंवरी किशोरी जिनके नेत्र बंद थे, उनको देख मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। परंतु नंदरानी मन में विचारने लगी, इस सुंदर सी लाली पर कौन सी वस्तु न्योछावर करूं? समस्त हीरा मोती माणिक पुखराज बेकार से पत्थर लगने लगे। कहां से लाऊं एक सुंदर सा रत्न जो इन पर वार सकूं?
0: कन्हैया की किलकारी से नंदरानी की तंद्रा भंग हुई और यशोमती ने छोटी सी किशोरी पर अपना प्राण धन सांवराज सलोना नंदलाल ही न्योछावर कर दिया और मन ही मन संतोष किया कि कृष्ण है तो श्यामल, पर इन दोनों का साथ नयनों को कितना सुख दे रहा है। और तब से ये दोनों ब्रज के प्रिया प्रियतम हो गए। जिसने भी इन्हें देखा वो इनके प्रेम में ही पग

हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री राधा का जन्म रावल में हुआ और पालन पोषण वृषभानुपुर अर्थात बरसाना में हुआ। राधाष्टमी की धूम तो पूरे ब्रज मंडल में मची हुई है। बरसाना धाम में श्यामा प्यारी के जन्म पर हर मन आह्लादित है। उनके अनेकों भक्त सखी रूप में सज संवर कर झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को बधाई।

ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी स्वयं श्री राधा कृष्ण की लीला स्वादन करने के लिए वहीं जड़ हो गए। परस्पर प्रेम का दूजा नाम है प्रिया प्रियतम, रसिक रसिकनी, बिहारी बिहारिणी।

0: वाचिकिं तस्य शेषम्।
1: श्री राधा के अवतार ग्रहण करने की एक बड़ी ही रोचक कथा सुनने में आती है। दैत्य और दानवों के युद्ध के समय जब नारायण

0: ने मोहिनी स्वरूप धारण किया तब सभी उस रूप पर मोहित हो गए। सबके अंदर कामना जाग गई, परंतु सूर्य नारायण के अंतस में मोहिनी रूप को देखकर वात्सल्य हिलोरे लेने लगा। उन्होंने तत्काल ही प्रार्थना की, हे नारायण, मुझे आप पुत्री के रूप में प्राप्त हो।
1: सूर्य नारायण ने तपस्या की नारायण को प्रसन्न करने हेतु।

0: नारायण को प्रसन्न करने हेतु और कालांतर में वृषभानुगोप के रूप में प्रकट हुए। वृषभानुगोप के घर 33 कोटि देवताओं को मोहित करने वाले मोहिनी स्वरूप मोहन भी जिसे देख मोहित हो जाएं, उस रूप में प्रकटी जगत वंदिता श्री राधा। श्री राधा श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब है, उनकी ही आत्मा है।
1: ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ममैव पौरुषं रूपं गोपिका जन मोहनम, अर्थात मेरे ही पुरुष शरीर वाले रूप को भगवान कृष्ण कहते हैं, जो गोपियों के प्राण कहे जाते हैं। वस्तुतः राधा कृष्ण एक ही सत्ता के दो रूप हैं, दो नाम हैं। लीला के लिए दो रूपों में विभक्त हुए हैं और इनकी लीला स्थली है ब्रज का हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन।
0: यमुना पुलिन सघन वृक्ष वल्लरी रज रेणु और रसिक जन वृंदावन की उपासना के ये चतुर व्यूह हैं। यही चार चरण हैं श्री राधा कृष्ण की उपासना के।
1: राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखोर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमतांग मनो में।
2: श्री राधे, आज मैं आपके श्रृंगार को कैसे वर्णन करूं? आज आपकी छवि पे मैं गत पे गयंद वारों पग अरविंद वारों हटी अल वृंद वारों अल कन फंद पे गुलफ गोविंद वारों सील तापे सिंध वारों सकल सुगंध वारों मुख की सुगंध पे कट पे मृगेंद्र वारों तन छव विंद वारों बेनी पे फरेंद वारों नारी नद नंद पे होट जीव बंद वारों हांसी सुधा कंद वारों आज कोट कोट चंद वारों राधे मुख चंद पे।

0: श्याम सुंदर, या चंद्रमा में तो कलंक लगे भय है और या में तो पांच दोष हैं।
1: पांच दोष हैं? या में पांच दोष कौन से हैं प्यारी जी?

0: पहला दोस्त जी है कीजे दिन प्रतिदिन घटतो बढ़तो रहे है। दूसरे जी रात में चले है तो निसाचर है। तीसरे जी बंक टेढ़ो है। चौथे जी बिसबंधु है। और पांचवे या में कलंक लगी ही रहे है।
1: लाड लीजू, मैंने तो या चंदा को सुंदर उज्जवल शीतल सुखदाई देख के उपमा दे डारी। मैंने दोष दृष्टि ना देखी। देखो ना, देखो आपके मुखार बिंद के छबकू देख के ये चंदा लज्जित तो है के घटा में जा छिप्यो है।
2: यहाँ दसों दिशाओं में केवल एक ही नाम छाया हुआ रहता है, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। ब्रज ठकुरानी राधिका ठाकुर किए प्रकाश, ते मन मोहन हरि भये अब दासी के दास। ब्रज की ठकुरानी कोई और नहीं, श्री राधा रानी है। वही एक महारानी है जिन्होंने ठाकुर नंद किशोर को भी प्रकाशित किया है, अर्थात श्री कृष्ण का यश जो समस्त जग मंडल में पसरा है वो श्री राधा कृष्ण।

कृपासी ही है, जो श्री हरि सबके मन को मोहने वाले हैं, वो यहाँ ब्रजांचल में श्री राधा की दासियों के भी दास बने बैठे हैं। श्री राधा की अष्ट सखियों से अनुनय विनय करते भी वे नहीं अघाते, दर्शन मात्र के लिए व्याकुल हो जाते हैं।

0: समूचे ब्रजमंडल में किशोरी जी का जन्मोत्सव श्री राधा अष्टमी के पावन पर्व को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री वृंदावन धाम में स्थित ठाकुर श्री राधा बल्लभ मंदिर में लाडली जी का जन्मोत्सव बहुत ही विशेष होता है। इसी विषय पर जानकारी देते हुए आप हैं ठाकुर श्री राधा बल्लभ देवालय के सेवायत श्री प्रकाश चंद्र गोस्वामी जी।
1: यहाँ 4 दिन की सवारी निकलती है मंदिर राधा बल्लभ जी से, 4 दिन की सवारी 2 दिन की मंदिर से निकलती है, दूसरी बाजार से निकलती है। इस प्रकार से जो है 4 दिन, उसमें अनेकों मंडलियाँ आती हैं जिसमें राधा प्यारी ने जन्म लिया हो, राधा प्यारी ने जन्म लिया हो। उसको बनाने के लिए सर्वप्रथम जो है सप्तमी के दिन रात्रि को शयन के बाद दर्शन होते हैं, जो साल में एक ही दिन होते हैं। उसमें ढाणी ढाणन आते हैं, ढाणी ढाणन जो है नृत्य करते हैं, फिर बधाइयाँ दी जाती हैं, फिर रात्रि भर जो है जागरण होता है। उसके बाद में 5 बजे जो है फिर समाज गायन होता है। समाज गायन होने के बाद में दाई जब चली जाती है, मंगला आरती होती है, उसके बाद में बधाइयाँ गवती हैं, समाज होता है, एक दतकाना होता है, उसके बाद में फिर श्री जी की तैयारी हो जाती है। इस प्रकार से जो है ब्रजवासियों का दतकांदा होता है। उस ब्रजवासियों के दतकांदे में फल फूल बर्तन रुपया चांदी सब लुटाए जाते हैं, सब अपना अपना मनोरथ करते हैं, बधाई बांटते हैं, चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके उपरांत 12 बजे 12:30 बजे के बाद में प्रांगण सारा धुल जाता है, सारे गोस्वामी इकट्ठे होते हैं मंदिर में। आंगन में कुएं के पास में एक होदी है, वो जो है 10-15 मिनट दूध दही से भरी जाती है, उसमें केसर दही दूध हल्दी इत्र ये सब उसमें डालने के बाद में सब गोस्वामी इकट्ठे हो जाते हैं और राधा प्यारी ने जन्म लिया है राधा प्यारी, वो दूध दही जो है पूरे मंदिर में आंगन में दूध दही की वर्षा होने लग जाती है, सब आंगन जो है सराबोर हो जाता है, सारी पब्लिक के ऊपर ये दूध दही छिड़का जाता है। उसके बाद में हरिवंश जी जाते हैं, हरिवंश जी से बधाई गाते हुए रासमंडल, रासमंडल से सेवा कुंज, फिर बड़े रासमंडल हुआ। उसके बाद में सब लोग फिर जमुना जी स्नान करते हैं, उसके बाद में चाप की तैयारी हो जाती है, सवारी जिसको बोलते हैं हमारे ब्रज में उसको चाप बोलते हैं। उस चाप में अनेकों मंडलियाँ आती हैं, बहुत से बैंड आते हैं, आज बधाई है बरसाने कोमर किशोरी ने जन्म लियो, सब लोग बजे सहवाने कहत नंद बिष भानु राय सो और बात को जान।

0: प्रभु माँ
1: मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते।
2: श्री राधा प्रेम का स्रोत उदार सहज सरल करुणामयी एक ऐसा प्रकाश पुंज जिससे संपूर्ण संसार प्रकाशित हो रहा है।
1: भक्त वत्सला श्री राधा रानी के स्मरण मात्र से जीव के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है।
2: राधा नाम परम सुखदाई, सहज ही कृपा करें अधुराई।
1: ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी।
2: राधा अष्टमी के पावन पर्व पर हमारे सभी श्रोताओं को कोटि कोटि बधाई एवं शुभकामनाएं।
1: सभी भक्तों पर युगल सरकार की कृपा अनवरत बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ
3: जय श्री कृष्ण।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम प्रगट वही ब्रज में श्री राधा। आलेख व वाचन था उषा पांडे एवं ज्योति शर्मा का और प्रस्तुति थी डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत की। तो घड़ी ने तो इशारा कर दिया है और जाने का समय भी हो रहा है। जाते जाते यही कहूँगी, हे राधा रानी कुछ ऐसा कर, तेरी भक्ति में ही रम जाऊँ। दुनिया भ्रमण को निकले भले, पर मैं बस बरसाने में ही रह जाऊं। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक बधाई हो। तो इन्हीं इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मीनू अग्रवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मीनू अग्रवाल ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म आज़ाद के इस गीत के लिए। गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और इसे धुन से संवारा सी रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की जुगलबंदी में अभी आपने फिल्म सौदागर के इस गीत को सुना। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और ये आखिरी गीत।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म संसार के इस गीत को। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: in the first half of 2026, compared with 7.3% in 2025. Microsoft CEO Satya Nadella has said artificial intelligence must reach India's farmers, small businesses, and rural communities, and not just big techs. Speaking to over 40 Indian-American tech leaders at the Ideas for India Forum in Seattle, Nadella urged the industry to focus on broad public access, national data sovereignty, and human oversight. Indian tech ball debutant Quimsy Joachim D'Souza stormed into the semi-finals of the Aichi Nagoya Asian Games in Japan after securing two wins in the women's singles event this morning. Quimsy produced a strong comeback in her Group A match 2 encounter against Japan's Yuina Sakamoto to seal a hard-fought 2-1 victory. The Indian debutant followed it up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kom Yin Dy in Group A match 3. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Rajasthan, Gujarat, Lakshadweep, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundwan and Garchandur in Maharashtra. Security forces killed two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को एलसीए तेजस और एचटीटी-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विमसी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया।

0: इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है, जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त LCA तेजस, HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटवन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
4: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष

0: हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीन स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ओजीएफ प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
3: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
4: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
5: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
2: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
1: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा

0: मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युइना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA Tejas और STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।
1: ईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानो उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियां। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की, जहां लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और

उसका भ्रमण किया। आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव क्यंटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और क्यंटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त

0: ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहां से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रहीं, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहाँ एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है, और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें, तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें, तो शायद हमारी धरती थोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF, और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
0: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता। उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
5: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी ना कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।

0: 19वीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं, जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
1: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश

0: चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
1: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
0: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की मां ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की मां ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
2: पानी ले आ रहा
3: है?
0: कल रात तो फिर भी कर आ गया।
4: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
0: न कमाता है न धमाता है, ऊपर से रोज जमाता है।
4: दीदी,
0: अरे इनको तो
4: दीदी।
5: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
4: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
5: अरे
4: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
5: हाँ हाँ,
4: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर।
5: अब फिर क्या?
4: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई, हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
5: रो मत आलोका, आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों, कल सभी तैयार रहें।
6: जी दीदी।
5: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
6: बिल्कुल चलेंगे।
5: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
6: जी दीदी।
4: जी दीदी,
6: हम सब तैयार हैं।
1: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
0: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
1: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थीं कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
0: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
1: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
0: समय बदल रहा था।

0: व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
1: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अब लाबोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थीं।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, Royal Society of London welcomes you all at this occasion. We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
3: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
4: जी।
3: बैठो। अच्छा, एक बात बताओ। आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो।
4: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं कुछ सोच रही थी।
3: सोच रही थी? क्या?
4: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है। उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
3: बिल्कुल।
4: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
3: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
4: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
3: हाँ।
4: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
3: बिल्कुल।
4: आपको नहीं लगता?
3: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
4: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
3: सही कहा तुमने। मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
4: मुझे भी तो आप पर गर्व है।

0: ज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
1: बिल्कुल।
0: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
1: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: फिर क्या था, यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान में। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
0: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
1: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
0: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी इज्जत
2: है। जो बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती
3: हूँ। दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊँ। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
2: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
3: अरे अपनी बहुत खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना। सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही हैं, अब हम सशक्त बन रही हैं।
2: बिल्कुल।
0: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थीं, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
1: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
4: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रही।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गईं। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी

अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5:30 पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा का सफर अब शुरू होता है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के विषय में। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस इंटरनेशनल इक्वल पे डे हर वर्ष आज के दिन यानी 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह जागरूकता बढ़ाना है कि समान या समान मूल्य के काम के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए। इस दिवस का महत्व समानता यानी काम के बदले वेतन में लैंगिक भेदभाव को कम करना, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को रोजगार और वेतन में समान अवसर दिलाने की दिशा में जागरूकता बढ़ाना, निष्पक्ष कार्यस्थल होना यानी योग्यता, अनुभव और जिम्मेदारी के आधार पर उचित वेतन सुनिश्चित करना, बेहतर समाज का निर्माण करना यानी आर्थिक समानता परिवारों और समाज के विकास में योगदान देती है। लोगों को यह समझना चाहिए कि समान कार्य के लिए वेतन में अनुचित अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान काम का समान सम्मान, समान वेतन हमारा अधिकार, भेदभाव को दूर भगाएं और समानता का दीप जलाएं, यही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और साथ ही साथ संदेश भी यही होना चाहिए, समान कार्य समान वेतन और समान सम्मान।

0: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं गीतों भरी कहानी। शीर्षक है मन की जीत। प्रस्तुत कर रहे हैं अरुण कुमार शर्मा।
1: ऋषि गुप्ता जी और अशोक रस्तोगी जी जो आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। महेश गुप्ता जी सरकारी दफ्तर में बाबू के पद पर काम करते थे और अशोक रस्तोगी जी आर्मी से रिटायर ऑफिसर थे। दोनों ही पड़ोस में काफी समय से रहते थे। कॉलोनी में दोनों की मित्रता की मिसाल दी जाती थी। वैसे तो दोनों के परिवार में उनके रहन सहन में काफी अंतर था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। गुप्ता जी और रस्तोगी जी दोनों का परिवार भरा पूरा था। रस्तोगी जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी और गुप्ता जी के पास 2 बेटी और 2 बेटे थे। दोनों ही अपना जीवन सुख से गुजार रहे थे। रस्तोगी जी के 2 बेटे आर्मी में ही अच्छे पद पर थे और छोटा बेटा इंजीनियर था। गुप्ता जी का 1 बेटा सरकारी शिक्षक था और छोटा बेटा और दोनों बेटियां अभी पढ़ाई कर रही थीं। गुप्ता जी अपनी बेटियों को ऊंचे पद पर पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने बेटों और बेटियों की पढ़ाई में कोई फर्क नहीं किया। सुबह के समय गुप्ता जी और रस्तोगी जी पार्क में टहलने गए। दोनों रोज साथ जाया करते थे। थोड़ी देर टहलने के बाद दोनों थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। गुप्ता जी, हमारा जीवन तब सफल हो जाता है जब हमारे बच्चे सही मकाम पर सेट हो जाएं। और आज मैं खुश हूँ कि रिटायर होने के बाद मेरे बच्चों ने हम दोनों माँ बाप को संभाल लिया। हाँ रस्तोगी जी, ये बात सही है। औलाद जब बड़ी होकर किसी लायक बन जाए तो माँ बाप के लिए उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। जीवन का हर सुख औलाद की खुशी के साथ होता है। सारा परिवार साथ रहे, यही जीवन का सुख है।

गुप्ता जी पार्क से लौटने के बाद दफ्तर के लिए तैयार हुए और नाश्ते के लिए टेबल पर पहुंचे ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजे पर आकर खबर दी कि रस्तोगी जी की तबीयत खराब हो गई है, आपको तुरंत बुलाया है। गुप्ता जी फौरन ही भागते हुए उनके घर पहुंचे। वहां उनके पास केवल उनकी पत्नी थी। तीनों बेटे अपनी नौकरी की वजह से बाहर रहते थे अपने परिवार के साथ। बेटी की भी शादी हो चुकी थी। उस समय उनके पास कोई नहीं था। गुप्ता जी ने तुरंत टैक्सी मंगवाई और रस्तोगी जी को जल्दी ही अस्पताल लेकर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। ये बात सुनकर गुप्ता जी को बहुत बड़ा झटका लगा। रस्तोगी जी की पत्नी ये सुनकर रोने लगी और परेशान हो गई, क्योंकि उनके पास उनके बेटे जो नहीं थे। गुप्ता जी ने कहा, भाभी जी संभालिए अपने आप को, आप परेशान ना हों, सब ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। मिसेज रस्तोगी ने

कुछ देर बाद अपने बेटों को कॉल किया और सब बता दिया। ये बात सुनकर आशीष और अखिल, जो आर्मी में थे, बहुत परेशान हुए। वो तुरंत आना चाहते थे, लेकिन दोनों को एक साथ इतनी जल्दी छुट्टी मिलना मुश्किल था। इसलिए आशीष ने कहा, माँ आप परेशान न हों, हम जैसे ही छुट्टी मिलती है आपके पास पहुँच जाएंगे, बस आप डैडी का और अपना ख्याल रखना। बच्चों का इतना कह देना ही उनके लिए एक बहुत सुकून का एहसास था। बेटा मैं यहाँ अकेली हूँ, तुम लोग जल्दी घर आ जाओ, इतना कहकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे कबीर को कॉल किया। फ़ोन उसकी पत्नी कविता ने उठाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम दोनों घर आ जाओ, तुम्हारे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही कविता ने कहा, ठीक है मैं कबीर को बता दूंगी। इतना कहकर उसने कॉल को काट दिया। मिसेज रस्तोगी को बहू का ये रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि उनके फ़ोन करने के बाद यही होना था। उन्हें कविता से यही उम्मीद थी, क्योंकि कबीर की पत्नी कविता बहुत ही घमंडी और सिर्फ अपने से मतलब रखने वाली औरत थी। वो परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए अलग हो गई और परिवार से उसके बेटे को भी दूर कर दिया। कबीर का 10 साल का एक बेटा था। वो अक्सर दादाजी के पास जाने की जिद करता था, लेकिन कविता उसे डांटकर मना कर देती थी। शाम को जब कबीर ऑफिस से घर वापस आया तो कविता ने उसे माँ के कॉल आने की सारी बात बता दी। ये सब सुनकर कबीर काफ़ी परेशान हुआ और जैसे ही वो कुछ कह पाता उससे पहले ही कविता बोल पड़ी, वापस घर जाने की तो बिल्कुल मत सोचना, डैडी की तबीयत खराब है, तो माँ है ना उनका ख्याल रखने के लिए, और भी तो बेटे हैं उनके, वो आ जाएं, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, फ़ोन से ही बात कर लेना, बोल देना ऑफिस से छुट्टी नहीं है, आ नहीं पाओगे। इतना कहकर कविता अपने रूम में चली गई। कबीर को दुख तो हुआ, लेकिन वो अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं सकता था, क्योंकि कविता एक बहुत ही अमीर परिवार से थी और उसके पापा की वजह से ही कबीर को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली थी, इसलिए कबीर उनकी हर बात को आँख बंद करके मान लिया करता था। वो चुप होकर कमरे में आ गया और अपने काम में लग गया।

धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। कुछ दिन बाद रस्तोगी जी को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। गुप्ता जी ने अपने दोस्त के लिए दिन रात एक कर दिए, उनकी देखभाल में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। मिसेज रस्तोगी कहने लगी, भाई साहब आपने हमारे मुश्किल वक्त में बहुत मदद की है। इस समय औलाद अपने माँ बाप को सहारा देती है, लेकिन आज आपने अपने दोस्त के लिए ये सब करके एक परिवार से भी ज़्यादा अपने होने का फर्ज निभाया है। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगी। गुप्ता जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो कहने लगे, भाभी जी मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, आप लोग मेरा ही अपना परिवार हैं। रस्तोगी जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, फिर एहसान कैसा। सही कहा भाई साहब आपने, आज खून के रिश्ते भी पराए हो गए हैं। माँ बाप अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, लेकिन औलाद सब भूल जाती है। जब उनकी ज़रूरत होती है तो वो अपने फर्ज से पीछे हट जाते हैं और माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं।

कुछ दिन बाद आशीष और अखिल को छुट्टी मिल गई तो दोनों अपने परिवार के साथ घर आ गए। दोनों बेटों को देखकर रस्तोगी जी बहुत खुश हुए। आशीष अपने डैडी के पास आकर बैठ गया और उन्हें तसल्ली देने लगा, डैडी अब हम आ गए हैं, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। रस्तोगी जी बेटों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अभी भी उनकी आंखें किसी कमी को महसूस कर रही थीं। वो कमी थी कबीर की, क्योंकि वो अब तक उन्हें देखने, उनसे मिलने नहीं आया था। रस्तोगी जी की पत्नी उनकी इस फिक्र को समझ गई थी। वो जानती थी कि कबीर की वजह से ये परेशान हैं। तब वो उनसे कहने लगी कि मेरा मन कहता है कबीर जरूर आएगा, आप चिंता मत कीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो जरूर आएगा। उधर एक दिन अचानक कविता की तबीयत खराब हो गई, उसे बहुत तेज बुखार हो गया, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। सुबह की दवाई देकर कबीर ऑफिस चला गया, उसके पास उस वक्त कोई भी नहीं था। कविता उस समय अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। दोपहर को जब उसका बेटा आकाश स्कूल से वापस आया तो उसने कहा, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। कविता ने कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना नहीं बना है, जब पापा आ जाएंगे तब कुछ खा लेना। लेकिन आकाश भूख से परेशान था, इसलिए जिद करने लगा। उसने कविता की एक बात नहीं सुनी और जोर जोर से रोने लगा। कविता इस समय बहुत दुखी हुई। थोड़ी देर बाद जब कविता को प्यास लगी तो उसने आकाश को आवाज लगाई, बेटा मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो मुझे। आकाश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और टीवी देखने में लगा रहा। कविता ने दोबारा कहा, आकाश बेटा मुझे प्यास लग रही है, पानी ले आओ। तब आकाश कहने लगा, मैं नहीं लाऊंगा, आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपके लिए पानी क्यों लाऊं, आप अपने आप उठ के पी लो। जब हम दादाजी के घर थे तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता था, दादी माँ ने हमें बुलाया, आप नहीं गईं, जब आपने उनकी बात नहीं मानी तो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। इतना बोलकर वो पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला गया। कविता बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रह गई। वो आकाश की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित थी कि इतना छोटा बच्चा जब सारी बातों को समझ सकता है तो मैं सब बातों को क्यों नहीं समझ पाई। जब बच्चे अपने माँ बाप की परेशानी में उनकी मदद नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते तो उन्हें कितना दुख होता होगा। आज कविता को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वो बहुत रोने लगी। शाम को जब कबीर घर आया तो कहने लगा, कैसी तबीयत है तुम्हारी, अब ठीक हो ना। कबीर के इतना कहते ही कविता उसके गले लग गई और खूब रोने लगी। कबीर ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। कविता कहने लगी, मुझे माफ कर दो कबीर, मैंने तुम्हें मम्मी डैडी के पास जाने से रोका।

उनकी परेशानी में उनका हाल तक नहीं पूछा। मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया है आज कि बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, उनसे दूर चले जाते हैं तो उन्हें कितना दुख होता होगा। हम कल ही घर वापस जाएंगे मम्मी डैडी के पास। कविता की बात सुनकर कबीर बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन वो लोग घर पहुंचे, जहां सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। रस्तोगी जी अपने बच्चों को देखकर सुकून महसूस कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी आकर उनसे कहने लगी, मेरा मन कहता था कि ये दोनों जरूर आएंगे और आज मेरे मन की जीत हो गई।

दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी। शीर्षक था मन की जीत। प्रस्तुत कर रहे थे अरुण कुमार शर्मा। और आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये गीत।

नेहा कक्कड़ और शेखर रवजियानी को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। और आइए आप सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम टाइगर जिंदा है।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ कार्यक्रम युववाणी अब यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे, सभी प्राणियों के लिए मैत्री का व्यवहार, इसका अर्थ है हर जीव के प्रति प्रेम, दया, करुणा और सम्मान का भाव रखना, क्योंकि सभी जीवों के प्रति मैत्री और करुणा ही सच्ची मानवता है। इसी विचार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं

0: ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर के छात्र अब चिप्स डिजाइन और टेप आउट कर रहे हैं। लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास उद्योग स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी के भंडारण की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे विशेष श्रृंखला सेवा ही संकल्प है क्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम।

संध्या 6:15 पर आप सुन सकते हैं ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा ब्रज नवकथा बुहेरिया। कथाकार होंगे संतोष शर्मा।

संध्या वंदन भक्ति संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:30 पर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:50। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा रेडियो कृषि पाठशाला। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे भारतीय सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भेंट वार्ता सरसों की उपयुक्त किस्में और खेती की तैयारी। जानकारी देंगे डॉक्टर अरुण कुमार, भेंट करेंगे ओपी सिंह। शाम सुहानी श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:35 पर।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग आप सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 10:00। इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं गजलें, कलाकार होंगी अंजू, साथ ही साथ कुछ गीत और भजन अनुराग गोला के स्वर में। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं मुकेश बिहारी शर्मा का सरोद वादन। रात्रि 11:00 होंगे हिंदी समाचार 11:05 पर, अंग्रेजी समाचार

रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

0: ब्रज साहित्यिक। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ब्रज नवकथा बुहरिया, प्रस्तुत कर रही हैं संतोष शर्मा।
1: दानवती, पर दान देनो तो दूर, दान को नामो भूलते ले लियो ना काउ ने, तो सूदे ही भूहर में दे देती। तीन बालकन की मैया पर मजाले हारी खा जाए, काऊ कामते मार लंगोटा घर में करवा लिया

खेतों में, परंतु निवास भैया एक बात ते परेशान रहते कि ना तो खुद पढ़ी और ना बालकन ने पढ़ावे को मन राखती। ले दे के बस छोरा को पढ़ावे भेज देवते, पर छोरी ना मोहमते लइयो। निवास की बड़ी इच्छा आती कि मेरे तीनों बालक खूब पढ़े लिखें। मैं तो 8 दर्जा ते ज़्यादा पढ़ ना पायो, पर बालकन को अपने खूब पढ़ाऊँ और जरूर पढ़ाऊँ। पर घर में एक भुअरिया नार वाते कैसे पेश जाए। या साल ते छोरी नुकु घर में गोबर कूड़ो और न्यार पानी करवाए में संग लगाए रखते हैं। क्यों री दाना, इन छोरी पे काय को गोबर कूड़ो करवा रही है, पढ़वे क्यों ना भेजे इनको। अरे मिसरो अम्मा, कहा करेंगी ज्यादा पढ़ के, कहूँ कलेक्टर ही कुना जा रही, कितने वो पढ़ाए ले संभारेंगी चूलो चौका ही बुहर में दे के। जब कबू निवास वाकू समझाएवे की कोशिश कर तो झर्रा है जावती। ए जी कहा तुमने तोता की सी नई रट लगाए रखी है, छोरी ये पढ़ाओ पढ़ाओ, 5 दर्जा तो पढ़ ली, अब का भुअर में दोगे। हे तेरी भुअरे धर दे तेरे मुँह में, फिर छोरा है काई भेजते पढ़वे। कह दे मर्द मांस की जात, वे ना पढ़ेगो तो कोडा रहेगो हम में तुम में भुअर। और छोरी उनको तो पढ़ाओ तो न पढ़ाओ तो, एक जेट भर के माल हो तबई होंगे कारे पीरे। सो बाकी चिंता करो और बाकी सब में भुअर डारो सुनी। अरे तो परमेश्वरी टिटा टिंगुली सी काहे को टिटिया रही है, पढ़ाए चाहे मत पढ़ाए। हे गोविंद, मैं तो या भुअर की ते बड़ो परेशान है गयो। कबू कबू तो निवास वाकू पास बैठार के प्यार ते समझावे की कोशिश कर तो कि ला अब के मान जाए मती मेरी बात। देख दाना, पढ़ाई लिखाई जितनो छोरान के ताई जरूरी है ना, उतनो छोरियन के ताई जरूरी है। पढ़ाई लिखाई ते बच्चा को दिमागी विकास तो होवे गोई, साथ में समाज में उनको अच्छे बुरे की पहचान। और बस बात बात काट देती, बस है गई तुम्हारी पढ़ाई चालीसा शुरू। अरे गामन में कहूँ छोरी और पढ़ी है सो हमारी न्यारी पढ़वे जावेंगी। एक कोस आएवे में और एक कोस जाएवे में जितनो समय बर्बाद होवे ना है, इतेक में तो एक गठरिया घास की और वावेगी, सो भैंसों को आध शेर दूध ज्यादा बढ़ जावेगा भुअर डार के। बस यहीं पे चुप होना पड़ तो निवास भैया को। आज गांव के सुखिया दादा के घर बड़ी भीड़ लग रही हती। निवास ने पड़ोसी ते पूछ ली, भाई का बात है रे भैया? रे बड़ो बुरो भयो है, सुखिया दादा को नाती खत्म है गयो। दानवती ने सुनी तो विश्वास ना भयो, ये त्यारे मुँह में भुअर पत जाए। कहा कह रहे हो? सांची कह रहा हूँ भौजाई, तुम जाके देख ले नहीं, वो तो अच्छो भलो खेल रहे हो परसों दादा की गोद मेरे। अब कहा बता मैं भौजाई, कल रात बतावते जोर को बुखार आ गयो, सो दवाई जाने कैसी दे दई, बे नुकसान कर गई है, सो जी हाल है गया। ए लला दवाई काहे को नुकसान करेगी, डॉक्टर दवाई दे में सो आते तो सब हारी बीमारी ठीक है जावते, बुकाई नुकसान करेगी। चल दाना देख के तो आमे, आखिर बात कहा है। चलो जी, दादा के घर है तौबा मच रही, बहू छोरा के आगे बैठ के गैया सी टकराए रही। अरे मेरो लाला तो का है गयो बेटा, तू तो छनक में सो गयो रे। दाना ने वाकू धीरज बंधायो, सुन बात सुन दुलारी, बात बता बात बही कैसे, कहा भयो सब? हाय जी जी कछु ना है, कल दादा लाला को बुखार की दवाई दिब्बाए के लाए, सो कहूँ तो गोली में कहा बताऊँ, कछु तो गोली सी हती और दो सिरप आई, मोते कही के दोन ने मिलाए के देनी है, सो मैंने रात तो दे दई और बाकी दवाई दिखाल में धर दई। पर जी जी सुबेरे की दवाई देते ही मैं लाला को जाने का है गयो। अरे मैया मैं कहा करूँ कैसे करूँ। फिर का भयो, रोवे मत, बता पहले बात। दाना ने दुलारी को चुप करायो, जी जी पहले तो लाला एक संग गरम पर्यो, फिर खूब पसीनान में नहा गयो, मैंने गोद में निरो उठायो हलायो डुलायो, फिर पतो ना है का एक संग सिरो पर तो ही आयो और जे रहो। जी जी लाला सिरो को सिरो ही परो है। एक पड़ोसिन बोली, एरी दोबारा भेजती दिखाए। तभी फौजी बाबा आए गए अस्पताल ते सब बात पतो लगाए के

0: सो सुखिया दादा ते बोले, सुखिया अब रोएबे ते यूँ चिल्लाएबे ते तो कछु होनो ना है, होनो सो है गयो, और जे भयो है तेरी दुलारी की लापरवाही ते। डॉक्टर ने दई तो कौन सी और जाने दे कौन सी दवाई, रात को दवाई जहाँ धरी वहाँ ना जाने कब की कौन कौन से मर्ज की दवाई धरी, सो सब गटर सटर करके पिवाए दई। अब तू सोच कि मात्र 2 बरस को बच्चा और गामन में तो वैसे ही बालक की रेड़ मार के रख दे में, ऊपर ते बीमार का झेल पावेगो। आज अगर तेरी दुलारी थोड़ो घनो पढ़ी लिखी होती तो नेकवा में समझदारी और बुद्धि होती तो क्यों ऐसा भय हुआ तो, और फिर जा बावरी ने काउते दोबारा पूछवे की हिम्मत नहीं करी, जैसी रात दई वैसे सुबह दे दई। फौजी बाबा कह तो सुखिया ददाते रहे पर कान खड़े दाना के है गए। वो फौजी बाबा की बातन को सुन के कबू तो बेजान परे छोरा को देखती तो कबू दुलारी को, रोएबो मिलबो सब भूल गई। अरे सुखिया कसर कमी काऊ की ना है, सब अनपढ़ और नादानी की कसर है, नहीं जा दवाई को काम ना है और ज्यादा दिना के है गई है उनको फेंक फाक देती, ऐसे घर में धर के क्यों रखती। पर अब करेगा, सब काम निपटाए के जब दाना घर आई तो धत्तड़ पप्पड़ कुरेद कुरेद के धरी धराई गोली दवाई सिरप सब बटोर के इकट्ठे करवे लगी। निवास को कुछ समझ ना आई सो पूछ लई, क्यों री दाना जी कहा कर रही है, रोटी पानी को अंधेरो है जावेगो। रुक जाओ जी, हमारे घर में निरी दवाई धरी है, जाने कब कब की और जाने काय काय मरज की, काऊ दिना हमें ते कोई बीमार भयो और काऊ ने काऊ को ऐसे ही उल्टी सूदी दवाई दे दई तो बस राधे गोविंद। या ते पहले सबे सफा कर लऊं, वारी फुअरिया सबे साफ करेगी पर अपनी अकल ना साफ करेगी थोड़ा सो। ए जी ऐसे क्यों कह रहे हो, मेरी अकल में का भूहर पड़ गया है, मुझे तो अब डर लग गया है उल्टी सूदी दवाई ते। हाँ अच्छा अम्मा, तो अपनी जान की ताई तो डर लग गया है पर छोरीन के अगार को उनके भविष्य के ताई कछु डर ना लगे हैं ता ना है, उनकी नहीं सोचेगी। अब तो दानवती को सबरी रात नींद नहीं आई, जाने कहा कहा सोचती रही। और फिर सुबेरे अवेरी उठी, निवास तो सुबेरे 5 बजे खेत पे चले जावते हैं, जब 8 बजे तक कलेऊ पानी कछु ना पहुंचो तो वे काम छोड़ के घर आए गए। दाना ओ दाना का है जी, काहे को चिचिया रहे हो। अरे हूँ जे कह रहे हूँ, आज खेत पे कलेऊ तो कलेऊ, काऊ छोरी पे पानी तक ना भिजवायो, यहाँ ना छोरी हती ना लाला, कलेऊ पानी लावेगो को हूँ घर को काम धंधो कर रही हूँ। क्यों कहाँ को गई छोरी, आज गई और रोज जावेगी, तुम्हें भूख लगे तो नेक देर काम में भुअट डार के घर आ जाइयो कलेऊ के ताई। कहा कह रही है तू, लाला के संग छोरी गई पड़वे जी कह रही हूँ। निवास चुप है गए, पहले तो वाकी बेतु की बातन पे चुप है जावते और आज सबसे बड़ी समझदारी पे चुप होनो परो। चल पट्टी तेरी उल्टी अकल पे भुअर परी तो सही, काम उनमुना रहे हो जी कछु ना है? आज अच्छा भुअर पड़ गए यूं कह रहा हूँ। ए जी मुँह पे भुअट डारोगे, अरे परमेश्वरी हमें इतनी हिम्मत कहाँ, पर थोड़ा बहुत तू पढ़ लेती। मैं क्यों का बात है, हे कोई का कहेगो, अब पढ़वे जाऊंगी भुअट डार के। अरे तूने एक बाहर तो निकल, 5 गांव की प्रधानी है, ऐसो स्कूल खुलवाए हुए है जहाँ में हर उम्र के लोग बाग पढ़वे जा सके, बस लगन होए पढ़वे की। हैं सही कह रहे हो जी, तो का झूठ। दाना बहुत देर सोचत रही फिर अपने आप बोली, चल दाना बालक तो पढ़ाऊंगी ही, अब पढ़वे हम जावेंगे। सो हंसी में निवास भैया बोले, क्यों अब भुअर ना डाल रही का। अब तो जो कोई छोरी है न पढ़ावे वापे भर के भुअर।
1: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे ब्रज नव कथा बुहरिया, प्रस्तुत कर रही थी संतोष शर्मा।

चित्रा सिंह की आवाज में आपने सुनी ये भक्ति रचना। और आइए आप सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: रचना फिल्म जय संतोषी माँ से।
1: प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम

हरिओम शरण की आवाज़ में आपने सुनी ये भक्ति रचना, और आइए चलते चलते सुनवाते हैं ये अगली भक्ति रचना। स्वर सोनी देवी का है।

0: इसी भक्ति रचना के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को राम राम। भैया जैसो कि आप जानो या समय पे धान की फसल की कटाई चल रही है और भैया जो मक्का बाजरा है उनकी कटाई चल रही है। फिर जिन भैयन की फसल है भाई खड़ी है और वहाँ में बाली निकल रही है या निकल आई है तो वहाँ में जो है फली में कोई रोग नहीं आ जाए, कोई फुदका वहाँ में ऐसो नहीं लग जाए,

0: के वाह खराब कर दी और बाकी जो दाने बनवे बारी उनते पहले ही रसे चूस के खराब कर दी, बेकार कर दी। तो वाकई काज भैया हमें जल्दी अवई ऐसी कोई दवा को छिड़काव करनो है जाते के वक्त कीड़ा की रोकथाम है जाए। ऐसे ही जड़ गड़न वाले जो कीड़ा हैं उनकी रोकथाम के काजे कट ऑफ अगर हम रख दें तो भैया वो जड़ में लगने वाले कीड़ा जो है वहीं की वहीं थम जाएंगे। बात रही जो खेत हमारे खाली है गए, चाहे वो मक्का के हों, बाजरा के हों, चरी के हों, तो उनमें भैया अब या समय पे जब पाम सहार जाए, खेत में ट्रैक्टर चलवी लाख वो है सो है जाए, तो हमें अब वाकी हौले हौले एक दो जुताई कर देनी चाहिए जाते वहाँ में हवा निकल जाए और हवा निकल के वो जुताई की कार्य तैयार है जाए। ऐसे ही जिन धान की खेती जो है हमारी कट गई है तो अगर वहाँ पानी खड़े होए तो हम वह रूटावेटर ते अभी जुतवा के डाल सकें जाते के जितनों मल होए जितनों वहाँ को खरपतवार होए वो सब पानी में घुर जाए और घर के खाद बन जाए और आगे के कार्य भैया जुताई के कार्य तैयार है जाए। तो जी तो कछु ऐसी समसामयिक कृषि चर्चा हमने करी। अब एक छोटो सो व्यावसायिक अंतराल लेंगे, बाकी बात सुनवाएंगे एक लोकगीत।
1: किसानों की सेवा के लिए तैयार भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर।
2: सरसों की उन्नत किस्में और तकनीकों का करे विकास।
1: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान उन्हें पहुंचाए किसानों के पास।
2: सरसों की वृद्धि, किसानों की अभिवृद्धि,
1: जिससे होगा परिवार का उत्थान।
2: किसानों की सेवा के लिए भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान लाया है
1: वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रचार प्रसार के अवसर।
2: प्रशिक्षण कार्यक्रम देगा जानकारी वैज्ञानिक गतिविधियों और अनुसंधान की।
1: किसान मेला जिसमें आप देख पाएंगे नए नए प्रयोगों और नई पद्धतियों को।
2: प्रथम पंक्ति प्रदर्शन देता है करके सीखने का मौका।
1: रेडियो से ले पाएंगे जानकारी सरसों की उन्नत खेती के बारे में।
2: इसके माध्यम से सरसों की उन्नत किस्मों और तकनीकों की जानकारी किसानों को देकर
1: सरसों का उत्पादन एवं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए संस्थान सदा सेवारत है।
0: तो भैया देखो अब आपको पहले मनोरंजन करवा दें, सुनवा में एक लोकगीत दामोदर शर्मा के सुर में गायब हो, राम जी को नाम बड़ो चोखो, सुनो भैया।

0: दामोदर शर्मा के सुर में अभी आप जहाँ लोकगीत को आनंद ले रहे थे भैया। भैया देखो, समय समय पे हम ऐसो कार्यक्रम प्रस्तुत करें जाते के हमारो किसान भैया अपनी वाह फसल ते इतनी जानकारी ले कि भाई वहाँ की उन्नत किस्म करवे की वाय एक जानकारी है जाए। तो रेडियो कृषि पाठशाला में पहले जो हमारो भाग है आज को, वहाँ में आज हम आपको सुनवा में भैया कि जो सरसों की उपयुक्त तो किस्म कौन कौन सी हैं और वहाँ की खेती की तैयारी कैसे करी जाए, तो यही विषय पे भैया आज रखे हुए और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार जो प्रधान वैज्ञानिक हैं हमारी सेवर भरतपुर के, और इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह। सरसों की उपयुक्त तो किस्में तथा खेत की तैयारी।
1: किसान भाइयों, राम राम। एक बार पुनः आपका स्वागत आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है रेडियो कृषि पाठशाला हम जिसको कहते हैं। किस तरह से सरसों और राई की फसल हम अच्छी तरीके से करें, अच्छा उत्पादन हो और उसकी लागत मूल्य भी कम आए, तो इस संदर्भ में हम अब आपको 24 कड़ियों के इस रेडियो कृषि पाठशाला के कार्यक्रम से शुरुआत कर रहे हैं। और आज के इस पहले एपिसोड में पहला जो कार्यक्रम है उसका जो विषय रखा गया है वो है सरसों की उपयुक्त किस्में और खेत की तैयारी। क्योंकि जब किसी भी फसल को हम करते हैं तो खेत की तैयारी प्रमुख होती है, कैसी मिट्टी हो, किस तरह से उसे तैयार करें ताकि जब अच्छी किस्में उसमें डालें तो हमारा जो पौधा है वो ठीक से बन करके आए और एक अच्छी फसल की जो आधारशिला है वो वहाँ रखी जा सके। तो इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर अरुण कुमार जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर, जिसमें सेवर में स्थित है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार किसान भाइयों को भी, म्यूजियन नमस्कार।
1: जी जी, तो जब हम सरसों की या राई की खेती करते हैं और आप तो एक संस्थान में रहते हैं तो वह उस पर रिसर्च भी होती है, वहाँ आप काम भी करते हैं, तो बताइए कि सरसों की फसल के लिए एक अच्छी मिट्टी कौन सी होती है और उसकी तैयारी के लिए क्या क्या ऐसे पक्ष हैं जो वैज्ञानिक तौर तरीके पे आप हमारे किसान भाइयों को सुझाएंगे इसमें।
2: किसान भाइयों, आज मैं सरसों की फसल की, अब जैसे कि बारिश चल रही है अभी और अब सरसों की फसल की तैयारी आप करने भी लगे होंगे और अगले महीने फिर अक्टूबर में तो बुआई होने लगती है, तो जैसा कि मेरे से पूछा गया है कि सरसों खेती के लिए किस तरह की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो इस पे ये सरसों की खेती जो है वो विभिन्न प्रकार की मिट्टी वाली भूमि पे आराम से ली जा सकती है, परंतु सबसे उपयुक्त भूमि जो है वो दोमट मिट्टी वाली खेती होती है। ठीक, उस पे अच्छी खेती होती है, हालांकि भरपूर उपज हल्की दोमट से चिकनी मिट्टी में आसानी से ली जा सकती है। तो इस तरह से जो मिट्टी जो उपयुक्त होती है, दोमट मिट्टी या हल्की दोमट मिट्टी होती है, उसमें अच्छी फसल ले सकते हैं किसान भाई। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, सरसों की अच्छी पैदावार के लिए जमीन का जो पीएच मान होता है लगभग वो 7 के आसपास होना चाहिए।
1: जी, मतलब एक तरह से नॉर्मल
2: नॉर्मल नॉर्मल उसमें हो जाता है,
1: थोड़ा सा बलुई हो, थोड़ी सी दोमट हो,
2: दोमट हो,
1: पीएच उसका 7 हो,
2: पीएच 7 के आसपास होना चाहिए। और ये पीएच पता लग जाता है, किसान भाई उस वाली टेस्ट है करवाते हैं, हेल्थ कार्ड वगैरह बनते हैं तो ज्यादातर पता होता है, नहीं है तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि कर लेना चाहिए,
1: कर लेना चाहिए। हाँ। इसीलिए शायद मिट्टी की जांच के लिए बहुत किसी भी फसल से पहले कहा जाता है,
2: हम भी जोड़ देते हैं किसान को कि हेल्थ कार्ड

0: हो तो बहुत अच्छा है, उससे पता लगता है कि हमें कौन सी फसल कब करनी है, और उसके अलावा फिर खाद का उपयोग और कौन सी कम
1: कितना
0: है क्या
1: कितने
0: ज़्यादा
1: पोषक
0: है,
1: तत्व तो
0: वो
1: डालने
0: सारी
1: हैं, वो
0: चीज़ें पोषक
1: बात है।
0: तत्वों की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती
1: हाँ,
0: है
1: तो
0: कि आपकी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है तो वो ज़्यादा देना है,
1: सही
0: वो
1: बात है।
0: है।
1: तो ये प्राथमिक
0: हाँ,
1: कार्य है जो
0: प्राथमिक
1: आदमी,
0: है
1: एक किसी भी किसान को
0: कि
1: किसी भी
0: करना
1: फसल से
0: चाहिए,
1: पहले
0: करना चाहिए।
1: करना चाहिए इसमें। अब उसमें तैयारी की बात है, जैसे मान लो ठीक है इस तरह की मिट्टी हो तो हमारा किसान भाई उसमें करेगा। अभी तो आपने कहा जैसे बारिश अब हो रही है लेकिन धीरे धीरे कम होगी, अब उसकी फिर तैयारी करेंगे तो कितनी लगभग जोते हैं, किस तरह के हल से करें और किस तरह की भुरभुरी बना लें, थोड़ा सा मिट्टी
0: हाँ
1: की तैयारी के बारे में बताइए।
0: ठीक है, अगर सरसों खेती के लिए खेत की मतलब किस तरह मिट्टी तैयार करना है ना,
1: हाँ
0: तो अब ज़्यादातर हमारे जो यहाँ फसल होती है मुख्यतः राजस्थान में, जो वो एक फसलीय पद्धति के रूप में ली जाती है ज़्यादातर हमारे ये राजस्थान में, तो ऐसा ही होता है ज़्यादातर। तो जिसमें क्या खरीफ में खेत को खाली छोड़ देते हैं किसान, ठीक है। तो अब रबी की फसल जो है, जैसे अभी राई सरसों तो रबी की फसल है, तो अच्छी पैदावार को ठीक खेत को तैयार करना बहुत ज़रूरी है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, पहली बात तो ये है। और भूमि की तैयारी के वक्त नमी संरक्षण का विशेष ध्यान रखना जरूरी
1: मतलब
0: होता है।
1: जिस उसमें हम
0: हाँ
1: सरसों की फसल लेने जा रहे हैं उसमें नमी
0: नमी,
1: तैयारी में ऐसा ना हो कि नमी उसकी कम हो
0: ध्यान,
1: जाए
0: हाँ
1: उसमें।
0: नमक नमी का बहुत ध्यान रखना है।
1: जी
0: और अब जैसे किसान भाई तो जागरूक है ही हैं, पर भूमि की तैयारी इस वर्षा ऋतु से ही शुरू हो जाती है लगभग, ठीक है। अब जैसे अब वर्षा ऋतु शुरू हुई, खर पतवार है, ये सारी चीज़ें हैं, नमी को संरक्षण के लिए सबको मिट्टी को पलटने वाले हल से जोतना शुरू कर देना चाहिए, जुताई करनी चाहिए और गहरी जुताई करनी चाहिए, और जिससे कि खरपतवार वगैरह सब नष्ट भी हो
1: तो
0: जाती
1: ये
0: है।
1: सब काम तो हमारे किसान
0: किसान
1: भाई
0: भाई
1: कर
0: करते
1: कर
0: रहते
1: चुके
0: कर चुके
1: होंगे, है ना।
0: होंगे,
1: हाँ
0: और उसके बाद हर बारिश प्रभावी बारिश के बाद उन्हें जुताई करनी चाहिए, उससे क्या नमी संरक्षित रहती
1: संरक्षित तो
0: है।
1: रहेगी।
0: और लगभग किसान अनुमान तो लग ही जाता है कि अब बारिश शायद ज़्यादा नहीं होगी, तो आखिरी बारिश के समय अच्छी तरह खेत को जुता जोत करके उसे पाटा लगा
1: पाटा
0: देना,
1: कर
0: चढ़ा
1: ताकि
0: देना चाहिए,
1: नमी का
0: जमीन दब
1: संरक्षण।
0: जाए, नमी बनी रहती है। और मान लो बाद में बारिश होती भी है तो वो खेत के अंदर पानी अच्छा चला जाता है, अंदर जाएगा, नमी संरक्षित रहेगी, और अगर लवणीय है थोड़ा तो वो पानी के साथ नीचे चला जाता है थोड़ा, तो उससे मिट्टी का मतलब नमक जो लवणी होती है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से लास्ट में फिर जब बुआई करनी है तब उसको खेत को क्या करना है कि जुताई करनी है, दो आड़ी जुताई करनी है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना है अच्छी तरह, खेत में ढेले वगैरह नहीं होने चाहिए,
1: क्योंकि बहुत छोटा
0: हाँ
1: बीज
0: छोटा
1: होता
0: बीज
1: है
0: बहुत छोटा होता
1: दब
0: है
1: जाएगा
0: तो
1: उसमें।
0: अब ठीक है, तो इसलिए ढेले वगैरह बड़े बड़े होते हैं तो दिक्कत होती है, उससे नमी भी खत्म होती है जल्दी, तो जितनी मिट्टी भुरभुरी होगी उतना अच्छा खेत तैयार होगा, फिर उसकी बुआई कर
1: बुआई
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं। अब चलिए खेत तो तैयार आपने कर दिया, किसान भाइयों को सलाह दे दी, तो अब इसमें किस्मों की बात आती है कि भाई अच्छा बीज अगर है, अच्छी किस्म का चयन आपने कर लिया तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पैदावार की आपने तैयारी कर ली। तो इस एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए, ब्रज क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, पूरी यूपी की बात कर रहे हैं और आसपास का जो एरिया है हमारा, झांसी है, उधर बनारस है, इधर आपका पहाड़ों की तरफ नजीबाबाद की बात करें, तो पूरे चूँकि राजस्थान में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, तो किस्मों के बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कौन कौन सी किस्में ऐसी हैं जिनको अगर वो चयन कर लें और अच्छा बीज ले लें तो एक अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। किस्में बताइए, फिर मैं पूछता हूँ कि ये
0: हाँ
1: बीज कहाँ मिल सकते हैं इसमें।
0: हाँ किस्मों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अब ये जैसा मैंने आपको बताया किसान भाइयों को कि मिट्टी के जा मतलब कैसी तैयारी करनी है खेत की, सारा कुछ वो तो तैयारी लगभग चल रही होगी। अब आती है किस्मों की बात। अब किस्मों की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक किस्म किसी क्षेत्र में तो अच्छा कर रही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हरे एक ही किस्म सब जगह अच्छा करेगी,
1: पूरा हाँ उत्पादन ठीक है
0: क्योंकि
1: जी।
0: किस्म का जो चयन करना होता है किसान को वो अपने क्षेत्र की जलवायु, एक तो वो है, दूसरा उसकी मिट्टी वहाँ की कैसी है वो, और फिर इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जैसे और सिंचाई की उपलब्धता,
1: सिंचित
0: हाँ
1: है या
0: सिंचित
1: सिंचित
0: है
1: है
0: असिंचित है,
1: बारानी
0: वहाँ
1: में है।
0: बारानी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए किसान को अपने क्षेत्र की जलवायु, भूमि का प्रकार, सिंचाई की उपलब्धता, मिट्टी आदि के बारे में पूरा उसको देखकर किस्म का चयन करना
1: जी
0: पड़ता है।
1: जी अगर हम
0: ठीक,
1: जाने जैसे मान लो सिंचित क्षेत्र और समय पर बुवाई कर रहे हैं तो फिर कौन सी किस्में
0: हाँ
1: वो ले ले उसमें।
0: अब जैसे अब समय पे बुआई करने के लिए और हमारी संस्था

0: मैं जो कुछ वैरायटी के नाम
1: हाँ
0: बता रहा हूँ
1: जी
0: किसमें
1: जी
0: हैं, जैसे सिंचित है, उनके पास सिंचाई का साधन है, समय पे बुआई कर सकते हैं, और समय का सही समय तो अक्टूबर में ही होता है, और 10 अक्टूबर के आसपास शुरुआत करते हैं, सबसे बेस्ट है 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के बीच में बुआई का सही उचित समय है, मेरे मतलब
1: जी
0: हमारे हमने जो अनुसंधान में पाया है।
1: जी जी
0: तो सिंचित और समय पर बुआई के लिए एक जैसे गिरराज किस्म है, ये किस्म लगभग सब जगह यूपी में भी अच्छा चलती है और चली भी है, क्योंकि हमारा वो हम करते हैं तो हमें फीडबैक भी मिलता है किसानों से। तो गिरराज वैरायटी है ये, अच्छी चल रही है एक तो, और ये इसका बीज हमारे संस्थान में अवेलेबल भी है। इसके अलावा एक तो ये हो गई समय पे बुआई सिंचित के लिए, इसके अलावा है BPM 1825, ये भी वैरायटी जो है समय पे बुआई के लिए, इसका दाना मोटा होता है और सिंचित के लिए और सही समय पे बुआई करने के लिए है, मानी कि अक्टूबर में बुआई करनी है इसकी, और इसका जो उत्पादन है वो भी 25-26 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से, और ये किस्म 2-3 2 साल पहले ही रिलीज हुई है, तो अच्छी किस्म है। तो ये एक तो ये किस्म है, इसी तरह एक है RH 1975, ये भी समय पे बुआई हो सकती है इसकी भी, और ये भी एक वैरायटी है। इसके अलावा PM 37 है, इस तरह की जो वैरायटी है ये समय पर बुआई के लिए सही टाइम पे और अक्टूबर के माह में ये कर सकते हैं किसान भाई हमारे। तो ये सिंचित और समय पर बुआई के लिए जो वैरायटी
1: जी
0: मैंने बताई किसमें हैं।
1: हाँ, ऐसा अगर बारानी है, मान लो सिंचाई की सुविधा नहीं है और वहाँ अगर बुवाई करनी है, तो वहाँ की किस्में कुछ अलग हो जाएंगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए।
0: हाँ, जैसे कि आपकी उचित किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो जैसे ये समय पे बुआई, अब कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं
1: नहीं
0: है
1: है।
0: तो फिर दिक्कत आती है। तो हमने जो अनुसंधान के हिसाब से इसीलिए अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, समय पे बुआई के लिए है, बारानी अगर असिंचित क्षेत्र है तो वहाँ के लिए दूसरी वैरायटी होगा, है लवणीय और क्षारीय भूमि है तो वहाँ के लिए दूसरी होगी, अगेती बुआई करना है तो उसके लिए हमें दूसरी वैरायटी किस्में हैं, तो इस तरह से है। तो जैसे मैंने समय का और उसके लिए तो बता दिया सही समय पर बुआई करने के लिए, मान लो बारानी और असिंचित क्षेत्र है तो कौन सी वैरायटी यूज करें, मतलब या किस्म लें, चयन कैसे करें, तो उसमें है जैसे DRMR 1165-40, एक वैरायटी है हमारे संस्थान की वैरायटी है
1: जी
0: ये बारानी क्षेत्रों के लिए ही है,
1: जी जी
0: इसमें पानी की आवश्यकता इतनी नहीं है फिर भी उत्पादन अच्छा देगी, एक तो ये है। इसके अलावा RS 1424 है एक वैरायटी, इसके बाद RS 725 है, ये वैरायटी भी अच्छी है। तो ये सब चल रही है वैरायटी जो असिंचित और बारानी क्षेत्र के लिए है।
1: जी जी
0: इसके अलावा मान लो जहीं के किसानों के साथ दिक्कत ये आ जाती है कई बार, है लवणीय या क्षारीय भूमि है
1: हाँ
0: तो वहाँ पे भी हमारे मतलब वैरायटी है किस्में हैं इस तरह की जो लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए उचित है, अच्छा उत्पादन देंगी। उसके लिए जैसे है CS 58, 58 नंबर है ये, और इसी तरह CS 60, ये लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए उपयुक्त है, इसका उत्पादन भी बढ़िया है। ठीक है, एक तो ये है। अब मान लो कुछ किसान भाई जैसे होते हैं जो पहले थोड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा
1: जी
0: सा समय उनके खाली रहते हैं खेत और तैयारी हो
1: हाँ,
0: जाती
1: मान
0: है,
1: लो खेत
0: हाँ
1: तैयार है,
0: तैयार है,
1: मौसम भी
0: मौसम
1: अनुकूल
0: भी है
1: है,
0: अनुकूल अगर
1: तो
0: लगता
1: हाँ
0: है
1: जी
0: तो अगेती बुआई बोलते हैं उसको, थोड़े दिन पहले सब करते हैं, तो उसमें अगेती बुआई के हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो PM 27 है एक वैरायटी, हाँ PM 28 है, PR 2006-1 है, ये उपयुक्त किस्म है, ये अगेती के लिए है।
1: जी, मतलब
0: हाँ
1: अब जैसे मौसम है, अभी
0: हाँ
1: सितंबर अब चल रहा
0: हाँ
1: है
0: चल रहा है,
1: तो, और आपका मौसम ठीक है और आपके खेत तैयार है, तो आप कर सकते हैं उसमें।
0: पर यह है कि अभी थोड़ा तापमान ज्यादा रहता है
1: हाँ
0: तो थोड़ा
1: हाँ
0: लेट ही करें तो अच्छा है।
1: वो हाँ, नहीं वो उपयुक्त
0: हाँ
1: समय तो आपने
0: उपयुक्त
1: बता दिया
0: बता
1: कि
0: दिया
1: अक्टूबर
0: अक्टूबर
1: का
0: का
1: जो
0: ही
1: पहला
0: सपड़ा
1: पखवाड़ा है।
0: पकवाड़ा है उसमें बेस्ट है।
1: हाँ, लेकिन अगेती की
0: हाँ
1: बात कर रहे हैं तो
0: हाँ तो ये
1: ये
0: वैरायटी ठीक है,
1: वैरायटी ले सकते
0: उत्पादन
1: हैं।
0: ठीक
1: अगर
0: है
1: किसी कारण से देर हो जाती है,
0: खेत के, अगर
1: कोई
0: मान
1: यहाँ कोई
0: हाँ
1: नई फसल फसल काट के कोई किसान कर रहा है, तो वहां भी किस्में बदल जाएंगी।
0: हाँ वहां पे भी है वही तो मैंने कहा,
1: जी
0: समय पे टाइम पर फिर लेट हो गया, मतलब लवड़ी हो गई, वारानी हो गई,
1: जल्दी हो
0: अब
1: गई
0: जल्दी
1: है,
0: हो गई, अब
1: ऐसे अब
0: इसी
1: लेट हो
0: तरह
1: गया।
0: अब लेट हो गया। अब लेट कब होता है, लेट जब होता है जब पहले से खेत में कोई फसल हो,
1: फसल खड़ी हुई है।
0: खरीफ की फसल है मान लीजिए
1: हाँ
0: आपके, तो वहां थोड़ा लेट जैसे 20 मतलब 15 अक्टूबर के बाद फसल कटी तो थोड़ा लेट होगा, तो खेत की तैयारी भी करनी है, वो सारा करना है। तो लेट के लिए मतलब वैरायटी हैं जो कि आप नवंबर के प्रथम सप्ताह तक भी बो सकते हैं, थोड़ा उसके हिसाब से एक ब्रजराज वैरायटी है।

0: एक राधिका है, एक बीपीएम 11 है। तो बीपीएम 11 नई वैरायटी है, राधिका भी नई है, ब्रजाज, तीनों नई वैरायटी मैंने बताई है।
1: जी जी
0: ये थोड़ा अगर लेट है, एक फिर एक और वैरायटी जो खूब चल रही है, किसान भाई शायद जानते भी होंगे, एनआरसी एचबी 101, 101 के नाम से बड़ी प्रचलित है ये वैरायटी, तो थोड़ा देरी से भी हो जाती है, तो ये भाई अच्छा
1: जी जी
0: उत्पादन देती है।
1: अच्छा, अब एक किसान है, उसके पास सब कुछ उपयुक्त है और बढ़िया उत्पादन लेना चाहता है, तो फिर उसमें आप क्या कहेंगे कि कुछ किस्में अलग हो जाएंगी उसमें, कि भाई
0: हाँ,
1: भाई उसके पास सिंचाई के भी साधन है, अच्छी मिट्टी भी है, खेत भी तैयार है, मौसम भी अनुकूल है, तो कोई एक दो ऐसी वैरायटियां जिन पे आप नाम लेना
0: जो
1: चाहें।
0: कुछ वैरायटी ऐसी है, मतलब गुणवत्ता के हिसाब से,
1: हाँ, गुणवत्ता मतलब उनमें तेल अच्छा
0: तेल अच्छा,
1: होगा,
0: तेल की मात्रा भी
1: उसकी
0: ठीक
1: रेट
0: है,
1: अच्छे मिलेंगे।
0: और 0 00 के हिसाब से वैरायटी है। अब रेट
1: हाँ
0: का तो भाई अलग मसला है, वो कोई बात
1: हाँ
0: नहीं। उसमें अगर मान लो उसके हिसाब से करना चाहते हैं, तो PDZM 35 है, ये 00 वैरायटी है। मतलब कार्य दिवस में आए किसान, उनको आना पड़ेगा और लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं
1: लेकिन हम
0: है।
1: जब पैदावार कर रहे हैं तो एक अच्छी जगह से अच्छी वैरायटी के लिए हमें
0: हाँ,
1: जाना चाहिए,
0: जाना चाहिए।
1: देखना
0: आसपास
1: चाहिए।
0: के हमारे किसान आते भी हैं खूब, और खूब दूर दूर से भी आते हैं, यूपी से भी आ जाते हैं, आते हैं, ऐसी बात नहीं। तो मैं अपने संस्थान की जो वैरायटियां हैं, किस्में जो मिलेंगी, मिल जाती हैं, मिलेंगी, और उचित दाम है, ट्रीटेड सीड है, और असली किस्म है, मतलब सही किस्म है, जो होनी है वही है, सारा कुछ गुणवत्ता वाइज सब कुछ सही है उसके अंदर। तो एक तो वैरायटी है BPM 1825, किस्में हैं ये, मिलेगी वहां पर। गिरराज मैंने बताई थी अभी वार्ता में, वो भी है अवेलेबल। इसके अलावा BPM 11 भी अवेलेबल है, राधिका भी अवेलेबल है, और ब्रजराज भी है। तो ये सारी वैरायटी, और DRMR 1165 40, ये सारी वैरायटी हमारे संस्थान पे उपलब्ध है। 16 तारीख से बीज पखवाड़ा
1: 16 से 30
0: चलेगा,
1: के बीच
0: तीस के
1: में।
0: बीच में चलेगा। किसान कार्य दिवस में कभी भी वर्किंग डे में आए, लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं। कैश पे मिलता है, अपना सब पैसा
1: जी
0: लें और ले जाएं।
1: अच्छा, किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा दूर हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं, सरसों की फसल उनको नहीं, एक बाजार से भी अगर बीज खरीद रहे हैं तो उसमें क्या चीजें एक किसान भाई को देखनी चाहिए कि ये चीजें हैं तो ये बीज मेरा ठीक होगा, और उसमें
0: किसान भाई को बाजार से अगर बीज लेता थे, तो जो भी चीज परचेज कर रहे हैं, तो उसका रसीद वगैरह होना चाहिए,
1: हाँ, ताकि
0: ठीक,
1: बाद में क्लेम कर सकें
0: बाद में
1: उस पर,
0: क्लेम कर लें, और अच्छी
1: अच्छे डीलर से
0: अच्छी
1: लें।
0: डीलर से ही लें, उसकी सारी परख कर लें, उसका बीज कैसा है क्या है, जानकारी लेने के बाद एक दो जगह और जानकारी लें, कहीं जहां भी ले रहे हैं तो
1: थोड़ा
0: वो।
1: बहुत बीज,
0: हाँ
1: जैसे आपने
0: हाँ
1: 10-5 किलो लिया और आप बड़े एरिया में कर रहे, तो थोड़ा सा एक मुट्ठी बीज आप करके, क्योंकि सरसों तो बहुत जल्दी उगाती है, तो उसको थोड़ा उगा के देख लें कि कितने दाने डाले और उसमें कितने
0: हाँ वो कर
1: उसमें।
0: सकते हैं किसान भाई, करते भी हैं ये कुछ,
1: हाँ, किसान
0: तो
1: भाई जानते हैं
0: जानते
1: सब।
0: हैं सब। तो अगर वो
1: हाँ
0: करना चाहें तो उससे पता लग जाएगा, उसके बाद परचेज कर ले, 4 5 दिन में हो जाता है, तीन
1: अच्छा,
0: चार दिन में
1: हाँ, तो बहुत जल्दी आ जाता
0: बहुत
1: था,
0: जल्दी आ
1: तो क्या
0: जाता
1: कहना चाहेंगे चलते चलते, वैसे तो तैयारी और उसमें आपने बातें तो पूरी बता दी, फिर भी किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि पहला ये जो है हमारा एपिसोड है,
0: किसान
1: पहली कड़ी
0: भाइयों
1: है
0: को
1: इसकी।
0: मैं यही बताना चाहूंगा कि खेत की तैयारी अच्छी तरह से करनी है,
1: हाँ
0: नमी संरक्षित करनी है। अब हमारे राजस्थान में तो क्या है, थोड़ा रहता है दिक्कत, और जैसे यूपी वगैरह में तो नमी की तीव्र समस्या नहीं रहती है, फिर भी वो नमी को देखकर, जितनी अच्छी खेत में नमी होगी, जितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे, जो सारी जो वैज्ञानिक तकनीक है हम बताते रहते हैं हर एक एपिसोड में, अगर वो फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जड़ में उगेगा। और एक बार उग गया सरसों का बीज, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो जरूर दिख जाएगा,
1: मतलब आधी लड़ाई तो
0: आधी
1: आपने
0: बात
1: जीत
0: जीत
1: ली है
0: ली।
1: उसमें। तो किसान भाइयों, सरसों की जो फसल है, डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी और बता रहे थे कि तैयारी बहुत मायने रखती है, अच्छा खेत हो, नमी हो, भुरभुरी बना लें, लेकिन किस्मों का भी चयन, आप जैसे कई चीज़ें बताई कि सिंचित है, समय पे करनी है, बारानी है, देर से करनी है, जल्दी करनी है, या लवणी है, क्षारी है, बहुत सारी कंडीशन है और बहुत सारी वैरायटियाँ आपको बताई हैं। निरख परख करके बीज लें, संस्थान से ला सकते हैं, लेकिन बाजार से भी ले रहे हैं तो आप बिल जरूर लें, क्योंकि अच्छे डीलर से लें, साख का बीज लें, क्योंकि बीज अगर अच्छा नहीं है तो आपकी समय भी जाएगा, लागत भी जाएगी और आपका खेत में उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा। आज हमारे साथ थे डॉक्टर अरुण कुमार जी, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान है भरतपुर में। डॉक्टर साहब, आप आए किसानों के लिए, इस पहली कड़ी में आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत

0: धन्यवाद, राम
1: धन्यवाद
0: राम।
1: किसान भाई।
2: रेडियो कृषि पाठशाला में भैया अभी आप जानकारी ले रहे सरसों की उपयुक्त किस्में और खेत की तैयारी, जानकारी दे रहे डॉक्टर अरुण कुमार, प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर, और इनसे भेंट कर रहे ओपी सिंह।
3: किसानों की सेवा के लिए तैयार भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर।
4: सरसों की उन्नत किस्में और तकनीकों का करे विकास।
3: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान उन्हें पहुंचाए किसानों के पास।
4: सरसों की वृद्धि, किसानों की अभिवृद्धि,
3: जिससे होगा परिवार का उत्थान।
4: किसानों की सेवा के लिए भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान लाया है
3: वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रचार प्रसार के अवसर।
4: प्रशिक्षण कार्यक्रम देगा जानकारी वैज्ञानिक गतिविधियों और अनुसंधान की।
3: किसान मेला जिसमें आप देख पाएंगे नए नए प्रयोगों और नई पद्धतियों को।
4: प्रथम पंक्ति प्रदर्शन देता है करके सीखने का मौका।
3: रेडियो से ले पाएंगे जानकारी सरसों की उन्नत खेती के बारे में।
4: इसके माध्यम से सरसों की उन्नत किस्मों और तकनीकों की जानकारी किसानों को देकर
3: सरसों का उत्पादन एवं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए संस्थान सदा सेवारत है।
2: भैया यही के संग हमारो प्रतिगामी कार्यक्रम यही संपन्न है। सभी भैया बहन को राम राम।
5: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर। और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ समेत देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली करेंगे संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने NCR में वायु प्रदूषण को लेकर की बैठक। सरकारों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश को भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी में देश भर में मिला पहला स्थान। 45,361 स्रोतों की जाँच पूरी कर हासिल किया।

0: 99.39% का लक्ष्य। और मथुरा में कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा राधा अष्टमी का पर्व। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ समेत देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करेंगे। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद रहेंगे। नवनियुक्त उम्मीदवार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से कल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, जबकि शेष 797 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बैठक की। बैठक में एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों, अब तक हुई प्रगति और आगामी कार्य योजना की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक में विशेष रूप से एनसीआर से जुड़े जनपदों में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया।
2: एयर पॉल्यूशन को लेकर के सभी नगर निगम जो एनसीआर के हैं, उधर हमने विस्तृत कार्य योजना तैयार कराई है। पिछले दिसंबर से अभी तक लगभग 30 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया है, और अब राज्य अनुसार जो सिटी स्पेसिफिक प्लान है उस पर भी कार्यवाही की गई है। पिछले दिनों एनसीआर के जो 63 छोटे छोटे शहर आते थे नगर निगम, उनके भी जो पंचायत के जनपद के अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, नगर निगम के मेयर हैं, उनके साथ हमने विशाल बैठक करी, और अभी हमने निर्देशित भी किया है इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए।
0: प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में सेवा संकल्प महोत्सव 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और देश प्रदेश में हुए सकारात्मक बदलाव की कहानी को सरल और संगीतपूर्ण नाटक के माध्यम से शहरों और गांवों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 30 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक कराए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें 10 विशिष्ट स्थलों, 98 जनपद स्तरीय स्थलों और 826 ब्लॉक स्तरीय स्थलों पर थीम पर आधारित रंगोली बनाई जाएगी। इसी क्रम में हापुड़ में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा स्वच्छता अभियान और सघन वृक्षारोपण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे वक्फ कानून में 2025 में किए गए संशोधन ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने के साथ ही उनके दुरुपयोग पर रोक लगाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में सरकारी जमीन पर किसी भी दावे की जांच अब जिलाधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी, और पहली बार हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान भी खोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में किए गए संशोधन को मुस्लिम समाज के हित में उठाया गया कदम बताया।
4: मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता। अब वक्त की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज।

0: محفوظ رہیں گے۔
1: اتر پردیش شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین علی زیدی نے کہا کہ وقف قانون میں سنشودھن سے مسلم مہیلاؤں اور یتیموں کا سشکتیکرن ہوا ہے۔
2: وقف سمپتیوں کے اور بہتر سنرکشن اور بہتر رکھ رکھاؤ اور خاص کر کے عام جنتا کو جو بینیفیشریز ہیں اور خاص کے مہیلائیں ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کے لیے جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت اچھی ایک سوچ رکھ کے اس کو جو ہے اس میں سنشودھن کیا گیا ہے۔
1: وقف سنشودھن ادھینیم 2025 لاگو ہونے کے بعد وقف سمپتیوں کا سنرکشن بڑھا ہے اور عام جنمانس کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ممتاز علی، آکاشوانی سماچار، لکھنؤ۔
3: یہ سماچار آپ آکاشوانی لکھنؤ سے سن رہے ہیں۔ تازہ سماچار جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ newsonair.gov.in پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ پرادیشک سماچاروں کا یہ بلیٹن ہمارے یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر لکھنؤ پر بھی سن سکتے ہیں۔ भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी को लेकर किए जा रहे परीक्षण कार्य में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: जांच के अंतर्गत राज्य और जिले स्तर की प्रयोगशालाओं से प्रदेश भर में भूजल स्रोत, भूमिगत व ओवरहेड टंकी समेत पानी के अन्य स्रोतों की पड़ताल की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 48,055 भूजल स्रोतों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके मुकाबले प्रदेश में 45,361 स्रोतों की जांच पूरी कर ली गई है। यह कुल लक्ष्य का 94.39% है। राज्यवार रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यूपी जल निगम ग्रामीण प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश में सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: मथुरा में राधाष्टमी का पर्व कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर देश विदेश से श्रद्धालुओं के मथुरा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल भोर में राधा रानी की पावन जन्मस्थली बरसाना श्री लाडली जी का मुख्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मथुरा SP ग्रामीण सुरेश चंदावत ने बताया कि बरसाना क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है।
5: इस बार दो रास्ते, जो एक जो श्री जी गेट से कटारा पार्क होकर के सुदामा चौक तक जा रहा है और दूसरा रास्ता हम लोगों ने इस बार प्रारंभ किया है जो पीली कोठी से और ये लाडो गेट होकर के सुदामा चौक की तरफ जाएगा। इन दो रास्तों से श्रद्धालुओं को हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कुल 38 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और 11 प्रेशर प्वाइंट है जहाँ पर हम लोगों ने 3 शिफ्ट में भारी पुलिस बल लगाया है।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी इसे UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ समेत देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली करेंगे संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने NCR में वायु प्रदूषण को लेकर की बैठक। सरकारों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश को भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी में देश भर में मिला पहला स्थान। 45,361 स्रोतों की जांच पूरी कर हासिल किया 94.39% का लक्ष्य। और मथुरा में कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा राधा अष्टमी का पर्व। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
7: मीडियम वेव 401.6 मीटर
8: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र।

लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी की तेज रफ्तार, फिर भी नई उम्मीद, नई आशाओं, आपके ढेरों संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम में संदेशों के क्रम में पहला संदेश झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजत मयंक भाटिया का। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। कलानौर से नरिंदर, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। पुरानी बागपत से इलियास, मुस्कान, कुरैशी और इनके समस्त परिवारीजन। नेहरू चौक पेटर से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, सिया और जाधव परिवार के सभी सदस्य। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, उत्कर्ष चौहान जुड़ चुके हैं। जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अकिता और लक्ष्मी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा। चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश, अधिरा। राजनगर से आप सभी जगदीश, ज्योति, फूलो, राधा, नवीन, चुलबुल। दरभंगा बिहार से सबीर आलम, रंजू रानी, चंदना और सुधाकर संजय। ग्राम पंजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श और अलौकिक चंसौलिया। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान, सुधांशु और हिमांशु। गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश। संदेश मिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा। नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल, कांति, कामेश्वर, मेनका, संगीता, गोदावरी। संदेश मिला राजनगर मधुबनी बिहार से। समतानगर कास्टी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया, मानसी और निशांत। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म लव आजकल से। गीत रचना इरशाद कामिल की थी, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ मलकापुर महाराज से नारायण इंगले सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर, नरवेल महाराज से पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुला श्रीवास, अनीता अंजू योगिता, रज्जन हेमंत और धर्मदास वाधवानी। कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता प्रतीक हेवराले। गंजुडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान फैजान और अनु। चंडीगढ़ से सतीश विमला अनेजा। खंडवा मध्य प्रदेश से राधेश्याम यादव, प्रभा शालिनी कामेश और भारती। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मंडी बुल्ढाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद मुज्जू, आयजा और मुदस्सिर। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा और प्रतिमेश। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विकी, नानू रविंद्र और रौनक सेन। नाज मंजिल पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम और आलम हाशमी परिवार के सभी सदस्य। शिव मंदिर अकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण श्रीनिका और श्रीनिजा। समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री। धांडी नांदुरा महाराज से श्री कृष्ण।

बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे। वरवट बकाल बुलढाणा से नारायण कमल दिव्या जय हागे। राजनगर मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता, रविराज, गौरव और इनके समस्त मित्रगण। दालदली बाजार से संजय कुमार गुप्ता, संजीत, सर्वजीत और सुधांशु। तिवर्ता डबरी पारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम और जया मरकाम। अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से जुड़े हैं आप सभी। नेवासा खुपटी मारा से बंडू लोहार, चंद्रकला और देवीदास। गंटुडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर लुबना, आलिया अंसारी। गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, श्वेता, रजनीश, आनंद और इनके समस्त परिवारजन। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या। कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश और जीविका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, विशाखा सोनवने। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म पुकार से। आवाजें सोनू निगम और अनुराधा पोडवाल की थी। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत एआर रहमान का था। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन।

गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा मस्कीन, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल रचिता, केशु और रिदान खुराना, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, लातूर से संगीता जैन, सूरज पीआर जैन, नांदेड़ से प्रकाश जैन, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, संदेश मिला लक्सर हरिद्वार से।

कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़े हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली आरती अरोड़ा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल तनवी और अंकित कांगड़ा, बुलढाणा महाराज से संतोष एस काले, तेजस और लोकेश एस काले, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी सोनाली सोनम आशीष विश्वकर्मा, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास और रानी, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय रजवाड़े, सोमार श्री भगत, हेमंत राम और इनके समस्त परिवारजन, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू बाबा और शिमर शेख, जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, जगुताई और जाधव, इन्हीं के साथ कुमार संचित प्रथमेश, सर्वद हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन रोहित और पीयूष कुमार जुड़ चुके हैं। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष शिवन्या और अनु गोस्वामी। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। गंडुडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, अयान उस्मान और समशुल, विजय चौहान, तेजस्विनी और शौर्या। संदेश मिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतन सुलोचना भगत, लखनादौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से लाडला लाडली रिमझिम और सक्षम चौबे, गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजी सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला, अर्शिलीन और इरशाद कामिल की आवाजों में फिल्म सैयारा से। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है दुगाई सेलू जिला परभणी से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सीआर कुलकर्णी का। बालोद छत्तीसगढ़ से देव नारायण साहू, योगिता चुलबुली, गीतिका चंचल और

त्रियांश कुमार साहू, मोहम्मद इसा, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। संदेश मिला चूड़ी लाइन मुंगेली से। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा और इनके समस्त परिवारी जन। मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस। सिद्धार्थ गोंडा ने अर्चना, प्रणय, हीरामणि और प्रतिभा। संदेश मिला अमरावती से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, मामुलवाड़ी महाराज से सोपान ताइडे, विजया ऋषिकेश और विजय, उद्धव पाटिल, अनूप, डॉक्टर जयश्री। संदेश मिला ओमाली महाराज से। मोटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन भावन और कनिका, छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास फादवानी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आप सभी श्रोता हैं। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहा साधु शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और पुनिधि भाई बागरी ने। गीत को स्वर दिए हैं नक्श अजीज और जूनिता गांधी ने। फिल्म का नाम ड्रीम गर्ल। श्रोताओं, इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी।
1: है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जनविश्वास तक। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जन सेवा के 25 वर्ष ये केवल एक समय अवधि नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है अनुभवों की, चुनौतियों की और प्रयासों की। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये सोच नहीं थी, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पहल की गई थी, बल्कि ये है कि इसके पीछे प्रशासनिक सोच क्या रही और जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई थी। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया, क्या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
1: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। पर जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ, तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहां से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई, तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा। और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग्य लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में सीईओ बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
0: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना, और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
2: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है iGOT कर्मयोगी। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार iGOT कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक iGOT पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश iGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी

0: को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
1: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है, 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।
2: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलते हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ, तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये की, मुझे ध्यान में, जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल, और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो, तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल। प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो, अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो वो बड़े स्केल पर सोचते हैं, तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं, और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाबदेही या ट्रांसपेरेंस, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर, सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को, आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट। तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
1: जी
2: ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
0: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य है समीक्षा।

0: शिक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
1: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है और उसमें छोटी से छोटी बात पर चर्चा की जाती है, क्या किस स्तर तक पहुंची। सिर्फ ये नहीं कि रिपोर्ट्स देख ली और काम हो गया, नहीं, उसका जो वाकई जो जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है और कितना होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। आपने 14 साल उनके साथ काम किया है अमिताभ जी, तो आपने किस तरह से ये फर्क महसूस किया है।
2: हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जो सड़क हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे जमीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट होना था वो 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा, तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में हैं, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं, उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो है वो वहीं स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, जो 20-25, क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इंप्रूवमेंट आया, तो इसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में, और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए यहाँ लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ, तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी,
1: बिल्कुल,
2: तो ये हुआ है
1: बिल्कुल। और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए, इस टाइम तक ये पूरा होना है, और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं, तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी।
3: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा, जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं, आप प्रगति का देख लीजिए, आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में
1: जी,
3: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है। वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
1: जी,
3: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है
1: जी जी।
3: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशंस कितने हैं।
1: बिल्कुल,
3: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशंस है, सुरक्षा के डायमेंशंस है, हेल्थ के डायमेंशंस है।

0: इकोनॉमिक डायमेंशंस है या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है, तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है
1: जी.
0: वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही है या नहीं. मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-30, 35-35, 37 साल बाद कोई कोई डैम्स, कोई कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है.
1: बिल्कुल.
0: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया.
1: बिल्कुल.
0: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया. भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है. लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है. तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब एक पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है. और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी सी छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं. तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट.
1: बिल्कुल. जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां, दिक्कत देखते थे और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई. तो उनका जो सोचने का तरीका है वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए. तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी, की आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग
1: जी
2: के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए, मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है. तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है. तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलो. और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तुम इसमें बदलाव करके दिखाओ. उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ. सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चर आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, उनकी भी कई बार मीटिंग्स की. ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कॉम्पिटिशन किया और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया. तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया. और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे. तो हर एमएलए को, हर एमपी को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया. और इतने जोरों का कॉम्पिटिशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे. तो ये आउटकम बेस्ड जो उनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी.
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इंप्रूवमेंट आया, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इंप्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा. इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप्स थे, आज आप देखिए देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं. और इसकी वजह से जियोस्पेशियल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया. और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्ट

0: स्टार्टअप्स की वजह से हो, तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए। इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, ये किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है।
1: बिल्कुल, तो ये जो नजरिया है, मतलब सोचने का, अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी,
2: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूं, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया
1: जी।
2: अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया। पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो हैंडीकैप है,
1: नहीं
2: वो अब दिव्यांग हो गया, वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना। तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का, और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस में, मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट लिस्ट में है। तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो, यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ
1: जी, जी।
2: तो वो भी एक अलग से ये थी, तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे, ये नहीं है, ये चिंतन है
1: बिल्कुल।
2: हम पूरे भारत को लेकर, और उन्होंने एक उसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था
1: जी।
2: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना नहीं होती है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में, वो आपने जो पूछा, तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स अपने आप आते हैं।
1: ये हेल्दी कंपटीशन की बात होती है, और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया। तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर परियोजनाओं पर काम करते थे।
0: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले। तो लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका, और ये पोजीशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करते। तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना आवश्यक। तो हम लोग लगे बहुत, और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था। तो जब ईपीएफओ के पास गए उन्होंने डिजिटल तो किया, पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे, पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े, और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजीशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं। और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ। पर उनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, और वही, इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया। तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए।

0: ये बहुत मेरे विचार से, जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव।
1: जी आप बिल्कुल सही कहा। और प्रफुल्ल जी, जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती है, अब जैसे नीति आयोग में भी बात है तो वो संतुलन कायम करना, क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है, तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में उसे आप
2: उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनेमिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो 2030 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए।
3: तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता है। तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, यूर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता सुरक्षा इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के देना। तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। मुझे, क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है। पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है। तो ये सोच में ही बदलाव आया है ना कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट, ये प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है।
1: बिल्कुल, ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों, उभरती महाशक्तियों का एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना, ये शायद आम बात नहीं थी।
0: तो देखिए, मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शेरपा रहा हूं और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े, उस समय बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। ये हालत थी कि उनके शेरपा लोग, यूरोप के जो शेरपा थे, रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे और वो न चाइना के साथ बैठते थे न रशिया के साथ बैठते थे। और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो। तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाए। तो हमने करीब 350 मीटिंग्स की, हर स्टेट में गए। हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट हुआ, वहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया, वहां के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया, हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट, और हर स्टेट ने रोल प्ले किया, हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया। उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया, वो भारत ने करके दिया। और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई, ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था, ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की। तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप, और ये लीडरशिप प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं, वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं। अगर विश्वास करते हैं पर फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है, तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसको करके हम लोगों ने दिखाया, और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए।
1: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं, यही उनकी सोच है। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है। केतकर जी,
2: बिल्कुल देखिए, जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा। G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए। ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा। मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि

0: आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो। भारत आज हर जगह टेबल पर है, G20 में है, G7 में इन्वाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक
1: है जी,
0: महत्वपूर्ण भूमिका है। तो
1: आसियान
0: बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी
1: से
0: बात
1: बात
0: कर
1: सकता
0: सकते
1: है
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन होते हुए निगोसिएशंस भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में
1: बिल्कुल
0: शामिल होते हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है। वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर हुआ
1: निकला
0: तो उस
1: उसमें
0: समय दिखा। तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है।
1: बिल्कुल। और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है, वे आप किस तरह से देखते हैं?
2: देखिए, सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047। और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक की हमारी जीडीपी बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए। और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे,
1: जी
2: और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले। और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो, और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है, वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार उन नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है। अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कबीर सिंह के कुछ गीत।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।

0: नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्ध पोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला STT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25

0: सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
1: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
2: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
1: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है।
3: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं

0: निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and UAE reaffirm their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allots separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating hosts Japan by 8 wickets in quarter-final. And now the news in detail. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defence, technology, investment and health. The UAE President conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership

कार्यक्रम नवरंग सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज है शुक्रवार का दिन। आज ही के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम नवरंग, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद के फिल्मी नगमे। तो गीतों और संदेशों से सजे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम के इस पहले संदेश के साथ रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का ये संदेश मिला है।

पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजौरिया। फालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली पूजा,

राधिका प्रभा देवी और अल कबीर। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा मोहाली से, टीडी मल्होत्रा कालका से शुभचंद्र बजाज, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश का एक संदेश मिला है। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन अहद, मिफ्रा और चाहत, इन्हीं के साथ सादिया। संदेश मिला गिरिडीह झारखंड से। जाखोद राजस्थान से विमला देवी, शंभुदयाल, अमरजी, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। यवतमाल महाराज से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई शैलेश, प्रतीक्षा स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे। परमणि महाराज से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रितेश संघई। पढ़नपुरी सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि और कृष्णा घोड़के का ही संदेश मिला है। छटिया पोखार डुमराव से डब्लू वली वेलदार, अस्मा सोनम जेल रोड बिहार से पली और उल्ला कुटरिया। जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, कल्लू मल्लू कालिया और इनके समस्त परिवारीजन कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ। सरगुजा मेनपार से परवीन थापा, सोनम, सोनिया, रेशमा, अधिपा और इनके समस्त मित्रगण। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

गीत को आवाजें दी हैं अभिजीत और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम चलते चलते। गीत रचना जावेद अख्तर की, संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा, गांव नगला पोला से विजय सिंह, पवन, भानु प्रताप, रामानुज, राधिका, भोला, करण, नमन, अनुराधा और इनके समस्त परिवारी जन। श्रोताओं, अगला संदेश हमें पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, डॉली, पूजा और प्रभा देवी का, लचनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, अशोक, श्याम कुंवर, प्रमिला, चीनू, आसमा, दीपक और अनुश्री, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से, चंडीगढ़ से जुड़े सतीश, विमला, अनेजा, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम, भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन वर्मा, हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से आप सभी श्रोता, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल और भारती बघेल, कुंडलवाड़ी मारा से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी, राजेश और राकेश, ऋषिता। अगले संदेश के साथ कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार, साई गायकवाड़, इन्हीं के साथ एक और संदेश। करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुकना, सदफ, जूही, इमरान और इनके समस्त मित्रगण, नई दिल्ली से

आमना, नसरीन बागवान, आसमा परी राबिया, आशु और इनके समस्त फूल वाले भाई बहन, जिला बेगूसराय से शमीम अहमद, अखलाक और समस्त फूल वाले परिवार। अगले संदेश के साथ उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गवान कर राही, सरिता प्रणीता सिद्धांत, प्रिंस एकांश, टुक टुक और इनके समस्त मित्रगण। वड़चिंगी महाराज से अमूल मानकर, शोभाताई दीपाली और श्लोक, इस्लामपुर महाराज से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमित दामोदर, विक्रम कड़वासिरा, सचिन छत्तीस और योगेश इन्हीं के साथ युद्धव कड़वासिरा। संदेश प्राप्त हुआ हनुमानगढ़ राजस्थान से। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल संजीव, बंटी जिंदल। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप सभी हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राज्यपाल, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी और बलबीर सिंह। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय रजवाड़े, सोमार, भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन और इनके समस्त मित्रगण। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी और बब्बू डब्बू जुड़ चुके हैं। हीरावली पाजालिका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा मुकेश, दिनेश अंशु, बलदेव कटारिया। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकर, सुनीता और योगेश मालाकर। साधुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़ जुड़ चुके हैं। सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

फिल्म का नाम बचना ए हसीनो, आवाजें सुखविंदर सिंह, शेखर रवजियानी और साथियों की, गीत रचना अन्विता दत्त की, संगीत विशाल शेखर का।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम कपिल, शिवांश, संगीता लिपि और दीपाली गोप। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं अमरावती महाराज से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा और इनके समस्त परिवारीजन। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। बोरखेड़ा पीतरामल से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंत, चेतन और समस्त इनके मित्रगण। हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनिया करमकर, बेरेडी मध्य प्रदेश से। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पलकरण वर्मा, अंजनी, रजमत, मुरली, नीरा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। ग्राम मुरादाबाद धूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस। नई बस्ती गंजुडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा, तौसीफ, तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। आकोट से जुड़े विनायक बेंडे, मंगला, विजय, शुभम और पवन जरिए। इन्हीं के साथ के संजीव डावेराव। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, परदीन सुहान अड़जान और अबान अब्बासी। मलकापुर मारा से नारायण इंग्ले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। नरवेल मारा से पीएस नहावकर और निर्मला विशाल नहावकर।

कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ फरमाइश मिली है सियारा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान की। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश।

नवी चंचल, अर्जुन और धीरज, संदेश मिला बेरडी से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता जुड़ चुके हैं। धनोरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और अयान बाबू। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप, राजू, रज्जन, संजीव, विपिन, अरुण, संजय, पवन, सुनील और इनके समस्त परिवारीजन। गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी जुड़ चुके हैं। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, करण, नितिन, किरण और मयंक शर्मा जुड़ चुके हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, सागर बालूजा। अगले संदेश के साथ मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जुड़ चुके हैं। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। कोयते बस्ती पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, साइसा सोनवने। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू, अर्चना कुमार। मथुरा से सबा अंसारी, शकील, हिना, बुशरा, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, आर्य कुमार और देव कुमार जायसवाल। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से आप सभी नसरीन अंसारी, राशिद हुसैन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। हानीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक शर्मा। नरसिंहगढ़ से वैष्णव, गोविंद, मुस्कान, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और इनके समस्त मित्रगण। एम फारूक शेख, शमा परवीन, साइमा सरफराज, कुलपराज, बेबी मुस्कान, गंडुडवारा, एटा, उत्तर प्रदेश से आप सभी जुड़े हैं। साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल, डुग्गू और भाविक सिक्का। अगले संदेश के साथ सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभुजोत और बेबी चानविका। सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम आशा। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

नवरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़े हैं गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होदा, कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, किशोर सुजाता और प्रतीक हेवराले, राजेश सोनी, कंचन, गायत्री वैष्णव।

कार्यक्रम नवरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साके पवार, अलमाज बानो, मोइन छोटू और हसनैन पवार, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा, यवतमाल विदर्भ महारा से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत और गुरु शब्द, चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसा, खतीजा बेगम, अशफाक अफरीन, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर, प्रिया सारस्वत, कनक सारस्वत, दिव्यांशु, राधिका, धीरेंद्र और इनके समस्त परिवारजन जनकपुरी महोली रोड मथुरा से जुड़े हैं। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से आप सभी श्रोता, विजय महोबिया, कविता, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, कमला देवी, अनय अनाया ईशु, शीतला चौक खंडवा से विशाल विवेक सिंह, गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका और तमन्ना, खरकड़ा चौबीसी से, लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम और धनराज, डॉक्टर लोचन सिंह गोपाल नगर मथुरा से धीरेंद्र सारस्वत, राजू बाबा इंद्रमोहन चामुंडा मंदिर से गोपाल और इनके समस्त परिवारजन, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सविस्ता पलक और नुमेर मंसूरी, करणवीर हाउस बुच्छू कैंचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, सिमरन, एक दमन और अभी जो जुड़ चुके हैं चौटाला हरियाणा से संजय दारा शर्मा और प्रियंका शर्मा। गगनोला उत्तर प्रदेश से इसरत खान, शायरा रहूफ, साबरीन शहवाज, सैफ और ईशान,

नागपुर से नाना डोंगर दीवे, रमाताई दीक्षा, रीमा और राहुल। देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेल, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय इन्हीं के साथ कमलेश, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, अयान अंसारी, उस्मान और समचुल यासीन गंडू द्वारा से आप सभी का हमें संदेश मिला है।

मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक। बीट शहर मारा से नंदकिशोर घटे, संगीता, अंजलि, बाला साहेब करवा, जैसी मेहित्रे, धनंजय टिबलू और पीबी कुलते जुड़ चुके हैं। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता, सूरज और पीआर जैन। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास और रानी। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तान्या नारंग। अगले संदेश के साथ रंजूबाई, युवराज और शिवांगी धाकड़, रतलाम एमपी से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, लक्सर, हरिद्वार से। कुमार गली, कोलगांव से पांडुचंदन, उषा, रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रतमेश, संतोष और पांडुरंग कुमार। बुल्ढाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय हागे। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत, फिल्म का नाम सुल्तान, आवाज नेहा भसीन की।

श्रोताओं, इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू बाबा शेख सिमर और इनके समस्त दोस्तों की। चंडीगढ़ सिटी से शेफाली शेफी, डेविस विमला, सतीश अनेजा। शाहदरा दिल्ली से वीना मस्कीन, तुलसी आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल रचिता, केशु और रिदान खुराना। अरविंद कुमार गुड़िया, भाव्या, निवेश, नियति, मधुबनी बिहार से आप सभी जुड़े हैं। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय, रिमी, तनुश्री, पीरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी देवी, प्रियंका और इनके समस्त परिवारीजन। आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंगेल। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, चामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक और समर्थ नामदेव। अमलेश्वर से दोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर। राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और प्रियांशी मनवर। शाहूनगर यवतमाल से पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना और कृष्णा देवांगन। रामगढ़ कैंट से निपी साहनी और सुनीता साहनी। श्रोताओं, इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम नवरंग अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम नवरंग। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आइए आज पहले सुनते हैं गजलें। कलाकार हैं अंजू।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी तक आपने सुनी गजलें, कलाकार थी अंजू। और आइए अब आपको सुनवाते हैं भजन स्वर अनुराग गोला का।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपने सुना अनुराग गोला के स्वर में भजन। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं मुकेश बिहारी शर्मा का सरोद वादन, निबद्ध है राग जोग में तबले पे संगत गुलाम सरबर साबरी की।

शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मुकेश बिहारी शर्मा का सरोद वादन, निबद्धता राग जोग में तबले पे संगत गुलाम सरवर साबरी की। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब

अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 ईवीएम का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।